सुप्रभात। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 29वीं तिथि, तद अनुसार 20 मई सन 2026 प्रातः के 5:58 और पूरे 40 सेकंड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की

0: आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा एआई संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है ज्ञान ज्योति।

भक्ति में अगर मन लग जाए तो जीवन की दिशा बदल जाती है। मन शांत, संतोष और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इंसान बाहरी सुखों के बजाय भीतर की खुशियों को महसूस करने लगता है। जब मन भक्ति में लग जाता है तो व्यक्ति के विचार शुद्ध होने लगते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ जैसी नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे कम हो जाती है और इसके स्थान पर प्रेम, दया, सहनशीलता और विनम्रता जैसे गुण विकसित होने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति का व्यवहार मधुर और सरल हो जाता है। भक्ति मन को स्थिरता देती है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, भक्ति से जुड़ा व्यक्ति टूटता नहीं है। उसे यह विश्वास रहता है कि ईश्वर हर परिस्थिति में उसके साथ है। यही विश्वास उसे अंदर से मजबूत बनाता है। वह हर मुश्किल का सामना धैर्य से कर पाता है। इसके अलावा भक्ति से मन को सच्चा आनंद मिलता है और यह आनंद किसी भी भौतिक वस्तु से बढ़कर होता है, क्योंकि यह भीतर से उत्पन्न होता है। भक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियां ढूंढ लेता है और जीवन को एक सुंदर उपहार की तरह जीता है।

प्रभु नाम का स्मरण मनुष्य के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लाता है। जब हम सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हैं तो हमारे भीतर एक अनोखी शांति और पवित्रता का अनुभव होता है। यह केवल एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और मन को स्थिर करने का सरल और प्रभावी माध्यम है।

आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना। सुबह के 6:21 हुए हैं।

प्रभु नाम का प्रभाव हमारे विचारों को शुद्ध कर देता है। जब हम बार बार प्रभु का नाम लेते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मकता कम हो जाती है और सकारात्मकताएं भावनाएं बढ़ जाती हैं। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ जैसे विकार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और प्रेम, करुणा और संतोष का भाव बढ़ जाता है। यही सच्ची पवित्रता है।

प्रभु नाम एक ऊर्जा है, प्रभु नाम एक शक्ति है जो हमारे जीवन को दिशा देती है, हमें भटकाव से बचाकर सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यदि हम इस नाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो हमारा जीवन शांत, संतुलित और आनंदमय बन जाएगा।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रही हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

ज्ञान तथा भक्ति में भेद संबंधी गरुड़ के प्रश्न का उत्तर देते हुए काकभुशुंडी कहते हैं, जीव ईश्वर का अंश होता है, अतः वो स्वभाव से ही अविनाशी, चैतन्य तथा निर्मल होता है। किंतु माया बड़ी बलवती होती है और जीव उसके प्रभाव से अपने को मुक्त नहीं रख पाता। वो माया के वशीभूत होकर अपने आप बंध जाता है। इस प्रकार जड़ और चेतन के बीच ग्रंथि आ जाती है और जीव आवागमन के भंवर में पड़ जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार में वो गांठ दिखाई नहीं पड़ती और जो दिखे ही नहीं उसे खोलें कैसे। हरि कृपा से मन में यदि श्रद्धा का आविर्भाव हो तो धर्माचार और आस्तिकता के अवलंबन से निवृत्ति और विश्वास उपजता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे कविता कृष्णामूर्ति और साथी कलाकार संगीत था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद यानी सुबह 6:55 पर आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे संस्कृत समाचार और 7 बजे सुनिएगा हिंदी समाचार। सुप्रभात हमीरपुर, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:05 पर। सुबह 8 बजे आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर सुनिएगा मॉर्निंग न्यूज। आठ बजकर 30 पर समय रहेगा हिमाचल डायरी का। आकाशवाणी शिमला से सुबह 9:20 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार और दिन में 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी समाचार। सुबह 10:05 पर समय रहेगा लघु वार्ता का, जिसका विषय है जल ही जीवन है। सुबह 10:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गल तुसांदी, जिसका विषय है आज का पशु पक्षियों का संरक्षण है हम सब की जिम्मेदारी। दिन में 12 बजे आप सुनेंगे महिला जगत और 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। दोपहर 2:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से सुनिएगा दोपहर समाचार और दिन में 3 बजे आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। शाम के कार्यक्रमों में शाम 5:07 पर आप सुनेंगे भजन संध्या और 5:30 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युवमंच। शाम 6 बजे आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

सफ़र सुहाने गाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। शाम 6:30 पर किसान व बागवान भाई बहन सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेतीबाड़ी। शाम 7:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत और शाम 7:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रौनका ग्राइंदियां। शाम 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या, रात्रि 9 न्यूज एट 9 और रात्रि 11 हिंदी समाचार। रात्रि 10 आप सुनेंगे विज्ञान जगत और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार और 7 सुनिएगा हिंदी समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे अथ वार्ताः भारतं तथा नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क फिनलैंड आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं हरित प्रौद्योगिकीं नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमन्त्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे स्वीडन आइसलैंड फिनलैंड डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विकव्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्त वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्नसदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73.8%

0: सर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघः परम्पराणि प्रवर्तयितुम् अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं सार्धसप्तवादने कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा समाप्त कर इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया।
2: ऑस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: रोम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में समझौता होने की संभावना है। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
3: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI संचालित होलोबॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी डोपिंग जांच में विफल रहे थे। अंकित ने 69वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान और पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। आरोपों को स्वीकार करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के प्रतिबंध की अवधि में 1 साल की कमी कर दी गई है। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स

0: ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बांदा में तापमान लगातार तीसरे दिन 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

सुप्रभात हमीरपुर, सभी सुनने वालों को नरेश चंदेल का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे। सुबह के 7:05 हो चुके हैं और मैं हाजिर हूँ लेकर के कार्यक्रम जिसका नाम है सुप्रभात हमीरपुर। दोस्तों, कहते हैं कि जीवन में सारा खेल जो है वो विचारों का होता है, इसलिए विचार अच्छे रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार बनता है और धीरे धीरे वही हमारे व्यक्तित्व का और जीवन की दिशा को तय करता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जीवन में सारा खेल विचारों का है। यदि हमारे विचार सकारात्मक होंगे, अच्छे होंगे, प्रेरणादायक होंगे, तो जीवन भी सुखद और सफल बनेगा। वहीं अगर नकारात्मक सोच होगी तो वो हमें निराशा, भय और असफलता की ओर ले जाएगी। विचार मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। एक अच्छा विचार व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, जबकि बुरा विचार उसे पतन की ओर ले जा सकता है। इसलिए जिन लोगों ने संसार में बड़ा परिवर्तन किया है उनके विचार ही असाधारण थे। दोस्तों, अच्छे विचारों का प्रभाव हमारे मन तक सीमित नहीं रहता बल्कि हमारे व्यवहार और संबंधों में भी दिखाई देता है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति अच्छा सोचता है वह विनम्र होता है, दयालु होता है और ऐसे लोगों का समाज में बहुत सम्मान होता है। उसके आसपास सकारात्मक वातावरण बना रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोचता है वह हर जगह कमी और बुराई ही देखता है। इसलिए अच्छे विचार रखने के लिए अच्छे वातावरण और अच्छी संगति का होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जीवन वास्तव में विचारों का खेल है। यदि हम अपने विचार अच्छे रखेंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहेंगे तो जीवन में सुख, शांति और सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और अच्छे विचार ही अच्छे जीवन की नींव है। तो ये तो विचार की बात थी और आइए अब चलते हैं, सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: Daily Law के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: दोस्तों, आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। और इन संदेशों से पहले आपने जो गीत सुना वो गीत था लता मंगेशकर की आवाज में शोर फिल्म से। और दोस्तों, अब चलते हैं कार्यक्रम में इतिहास की ओर और जानते हैं आज के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। दोस्तों, आज है 20 मई और आज के दिन 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा का जो बेड़ा था वो भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचा था, जिसने यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी।

आज के दिन 1293 में जापान के कामाकुरा में आए विनाशकारी भूकंप में लगभग 30,000 लोगों की मौत हुई थी। आज के दिन 1873 में लेवी स्ट्रॉस और जैकब डेविस को तांबे के रिवेट्स वाली दुनिया की पहली ब्लू जींस का पेटेंट मिला था।

दोस्तों 20 मई 1927 को चार्ल्स लिंडनबर्ग ने न्यूयॉर्क से पेरिस के लिए पहली बार अकेले बिना रुके हवाई उड़ान भरी थी।

आज के दिन 1918 में परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के जांबाज शहीद पीरू सिंह का जन्म हुआ था। आज के ही दिन 1923 में तेलुगु अभिनेता, निर्माता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव का भी जन्म हुआ था। 1977 में आज के दिन भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा का जन्म हुआ था।

आज के दिन 1766 में मराठा साम्राज्य के प्रसिद्ध सूबेदार मल्हार राव होलकर का निधन हुआ था। आज के दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी विपिन चंद्रपाल का निधन हुआ था। दोस्तों, आज हम मना रहे हैं विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व माप विज्ञान दिवस। इन दिवसों के बारे में हम बातचीत करेंगे इस गीत के बाद।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
4: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर AS ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
3: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
4: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
3: देवभूमि की सुरीली धड़कन आकाशवाणी हमीरपुर, इस समय आप सुन रहे हैं अपने रेडियो सेट पर और कार्यक्रम है सुप्रभात हमीरपुर। दोस्तों, आज है 20 मई और आज हम मना रहे हैं विश्व मधुमक्खी दिवस। हर साल आज के दिन विश्व भर में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मधुमक्खियों और अन्य परागण करने वाले जीवों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। मधुमक्खियां प्रकृति का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, क्योंकि वे फसलों, फूलों और पेड़ पौधों के परागण में अहम भूमिका निभाती है। इसके बिना पृथ्वी पर जैव विविधता और खाद्य उत्पादन दोनों पर गंभीर संकट आ सकता है। दोस्तों, मधुमक्खियां केवल शहद बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी

महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार विश्व की लगभग 75% खाद्य फसलें किसी न किसी रूप में परागकण पर निर्भर होती हैं। यदि मधुमक्खियां ना हों तो फलों, सब्जियां और अनाजों का उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। इससे खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है, इसलिए मधुमक्खियों को प्रकृति की मेहनती कर्मयोगी भी कहा जाता है। दोस्तों, आज के समय में मधुमक्खियों का अस्तित्व खतरे में है। बढ़ता प्रदूषण, जंगलों की कटाई, रासायनिक कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण इनके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। कई स्थानों पर मधुमक्खियों की संख्या तेजी से घट रही है। यह केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि मानव जीवन के लिए भी चिंता का विषय है।

दोस्तों, यदि समय रहते इनके संरक्षण के लिए कदम नहीं उठाए गए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस हमें यह भी संदेश देता है कि हमें प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, किसानों को जैविक खेती को अपनाना चाहिए, रासायनिक दवाओं का कम प्रयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक फूलदार पौधे और पेड़ लगाने चाहिए ताकि मधुमक्खियों को भोजन और सुरक्षित वातावरण मिल सकें।

दोस्तों, मधुमक्खी पालन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अच्छा साधन भी है और इससे शहद, मोम और अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं जो आर्थिक रूप से लाभकारी होते हैं। इससे किसानों की आय बढ़ती है। मधुमक्खियां प्रकृति का अनमोल उपहार है, उनका संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। विश्व मधुमक्खी दिवस केवल एक दिवस नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जीवन के संतुलन को बनाए रखने का संदेश है। यदि हम मधुमक्खियों की रक्षा करेंगे तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित और समृद्ध रहेगा।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: बड़ी बहू,
4: ये तुम्हारी ना,
3: इतनी भी क्या जल्दी थी?
4: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना,
3: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
5: पर दादी, आपके नाम?
6: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
4: शुभ शुभ बोलो।
5: क्या
6: RBI कहता है?
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: दोस्तों, आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। सुबह के 7:34 हो चुके हैं और इन संदेशों से पहले आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में शर्मीली फिल्म का वो गीत था, रचना नीरज की थी और संगीत था SD बर्मन का। और अब चलते हैं कार्यक्रम में ताज़ा तरीन खबरों की ओर।

दोस्तों, सबसे पहले खबरों में मौसम की बात करेंगे तो उत्तर भारत में आसमान से बहुत गर्मी बरस रही है। आमतौर पर 25 मई के आसपास शुरू होने वाले नौतपा से पहले ही भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। दिल्ली, NCR समेत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्से भीषण लू की चपेट में हैं। ज़्यादातर जगहों पर पारा 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। उधर हिमाचल प्रदेश के मैदानी ज़िले लू की चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश का बांदा मंगलवार को भी देश में सबसे गर्म रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया

हिमाचल में मौसम की बात करें तो हिमाचल में सबसे ज़्यादा गर्मी ऊना ज़िले में पड़ रही है। यहाँ पर मंगलवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। ज़िले में लोगों को झुलसने वाली गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भी तपिश बढ़ रही है। आज भी प्रदेश के कई मैदानी इलाकों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। शुक्रवार तक प्रदेश में बारिश और अंधड़ की संभावना जताई गई।

भारत और नॉर्डिक देशों ने अपने संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी व नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसका मकसद स्वच्छ और हरित बदलाव, व्यापार व निवेश तथा नीली अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। नॉर्वे के ओस्लो में मंगलवार को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और नॉर्डिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई वार्ता में यह सहमति बनी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सितंबर में भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने इसकी पुष्टि की है। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम फैसले में कहा है कि रेबीज से संक्रमित, ला इलाज बीमारी से ग्रसित या अत्यधिक आक्रामक व खतरनाक कुत्तों को कानून के तहत मृत्यु दी जा सकती है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि संविधान के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में कुत्ते के हमलों के डर या खतरे के बिना स्वतंत्र रूप से घूमने का हक भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश की खबरों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव से पहले 10,854 प्रत्याशी बिना मतदान निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। प्रदेश में 85 पंचायत समिति सदस्य, 176 प्रधान और 286 उप प्रधान निर्विरोध चुने गए हैं। सबसे ज़्यादा 10,307 वार्ड सदस्य चुने गए हैं। 131 पंचायतें जिसमें सदस्य से लेकर प्रधान तक सभी सम्मिलित हैं, निर्विरोध चुने गए हैं। इन पंचायतों को सरकार 25-25 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देगी।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी के फिर से आयोजन की तैयारी की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत इसके सुरक्षित, सुचारू और त्रुटि रहित आयोजन का निर्देश दिया।

मिलकर हनोई के साथ रक्षा सहयोग को और गहरा करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। उन्होंने एक्स पर कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से उनको शुभकामनाएं दी गई और उन्होंने कहा कि भारत वियतनाम रक्षा संबंध दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में बात एक रात की फिल्म का ये गीत था। और दोस्तों अब चलते हैं कार्यक्रम में खेल खबरों की ओर।

सबसे पहले क्रिकेट की बात करें तो प्ले ऑफ की होड़ से बाहर होने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स अब सुपर फॉर्म में खेल रही है। अपने पहले 8 मैच में महज एक बार 200 रन का स्कोर बनाने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने मंगलवार को पिछले 5 मैच में चौथी बार 200 से बड़ा स्कोर खड़ा किया। मिचेल मार्श की 57 गेंद में 96 रन की तूफानी पारी से लखनऊ ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए और राजस्थान ने 5 ओवर में बिना विकेट खोए 56 रन बना लिए थे। मार्श ने 4 पारी में तीसरी बार 90 प्लस का स्कोर पार किया था, लेकिन लगातार दूसरे मैच में शतक से वो चूक गए थे।

भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने सुपर चेस क्लासिक के पांचवें दौर में अमेरिका के वेस्ले सो के साथ 45 चालों में ड्रॉ खेला। यह उनका लगातार तीसरा और कुल चौथा ड्रॉ मैच रहा। वह 3 अंक के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर रहे। जर्मनी के विंसेंट कीमर ने 3.5 अंक के साथ बढ़त बरकरार रखी। अनीश गिरी और जॉर्डन वैन ने भी 3 अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं। टूर्नामेंट में 4 दौर अभी शेष हैं।

बैडमिंटन की बात करें तो भारतीय बैडमिंटन पुरुष युगल जोड़ी हरिहरन आमसा करुणन और एम आर अर्जुन ने मलेशिया मास्टर्स में सातवीं वरीयता फ्रांस के क्रिस्टो पॉपोव को और टोमा जूनियर पापोव को 21-19 21-15 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। मिश्रित युगल क्वालिफायर्स में सात्विक रेड्डी कनपुरम व राधिका शर्मा को जीत मिली।

दोस्तों, आज हम मना रहे हैं दो दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व माप विज्ञान दिवस। जी हाँ, हर साल 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस माप और तौल की वैज्ञानिक प्रणाली के महत्व को समझाने, लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विज्ञान, उद्योग, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और दैनिक जीवन में सही माप का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि माप सही ना हो तो किसी भी कार्य में सटीकता और विश्वसनीयता संभव नहीं हो सकती। विश्व माप विज्ञान दिवस मनाने की शुरुआत 20 मई 1875 को हुई। मीटर संधि की याद में ये दिवस मनाया जाता है। इस संधि पर कई देशों ने हस्ताक्षर किए थे ताकि पूरी दुनिया में माप की एक समान और मानकीकृत प्रणाली लागू की जा सके। दोस्तों, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माप की इकाइयों को निर्धारित करने का कार्य शुरू हुआ। आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली यानी SI यूनिट्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड आदि प्रमुख इकाइयां शामिल हैं। दोस्तों, माप विज्ञान को अंग्रेजी में मेट्रोलॉजी कहा जाता है। यह विज्ञान की वह शाखा है जो मापन से संबंधी होती है। किसी वस्तु की लंबाई, वजन, तापमान, समय, गति या विद्युत शक्ति आदि को सही तरीके से मापना माप विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। वैज्ञानिक अनुसंधान अस्पतालों में जांच, उद्योगों में उत्पादन तथा व्यापार में वस्तुओं की खरीद बिक्री के लिए सटीक माप अत्यंत आवश्यक है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में प्रेम कहानी फिल्म का ये गीत था। रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। दोस्तों, इसी गीत के साथ अब आज का सुप्रभात हमीरपुर यहीं पर संपन्न हो रहा है। अब नरेश चंदेल को दीजिए इजाज़त।

0: घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना पहली जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
3: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन

0: फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
2: India is accelerating towards universal health coverage.
3: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
2: Pandemic preparedness and emergency responses.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
3: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
6: हमें जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
7: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से

0: महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द। नवभारत टाइम्स में है, आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख। दैनिक जागरण में है, रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
0: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honour of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, FAO, and strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. A correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
5: Prime Minister Narendra Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, at the Quirinal Palace today, where he will be accorded a guard of honour. The day's engagements include delegation-level talks, press statements, exchange of memoranda of understanding, bilateral meetings, and a visit to the Food and Agriculture Organization. Prime Minister Modi will also plant a Morus nigra black mulberry tree, a species that symbolically connects Inaghatia from Rome.
4: Earlier yesterday, Indian Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in the Norwegian capital, Oslo.
6: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
4: Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
6: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
4: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. A correspondent covering the Prime Minister's visit to Norway has filed this report from Oslo.
7: A joint statement released after the third India-Nordic summit outlines the areas of shared goals and vision of India and the five Nordic countries. They decided to elevate their relations to a green technology.

प्रस्तुत है हिमाचल डायरी का आज का अंक। हिमाचल डायरी में आप सबका स्वागत है। आज के इस अंक में मैं हूं नरेश चंदेल। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। हमीरपुर जिले में मछली आखेट से आजीविका कमाने वाले मछुआरों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही उत्पादन भी बढ़ रहा है। इस वर्ष 25 नए मछुआरों ने अपना पंजीकरण करवाया है, जिससे जिले में पंजीकृत मछुआरों की संख्या 586 हो गई है। विभाग इसे मछली उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक पहल मान रहा है। जिले में गुजरती नदियों के अलावा कुनहा, मान, चाव, सीर और सलासी खड्डों में मछली पालन किया जा रहा है। इससे जुड़े मछुआरे इसी व्यवसाय से अपनी आजीविका चला रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के जिले में मछली उत्पादन में करीब 80 मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है।

तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने बहु तकनीकी प्रवेश परीक्षा और लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट के आवेदनकर्ताओं को राहत दी है। अभ्यर्थी आवेदन के दौरान हुई त्रुटियों में स्वयं भी सुधार कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि के अगले दिन आवेदन पोर्टल में त्रुटियों के सुधार का मौका दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को पहले की भांति तकनीकी शिक्षा बोर्ड को ईमेल भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले आवेदन के दौरान किसी प्रकार की गलती होने पर अभ्यर्थियों को तकनीकी शिक्षा बोर्ड को ईमेल भेजनी पड़ती थी। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने स्नातकोत्तर बीबीए और बीसीए प्रवेश परीक्षा की संशोधित तिथियां जारी की है। अब प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 मई निर्धारित की गई है। एडमिट कार्ड 26 मई को जारी किए जाएंगे। प्रवेश परीक्षाएं 1 जून से 5 जून तक होगी।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय से संबद्ध 18 बीएड कॉलेजों को लंबित निरीक्षण और संबद्धता शुल्क जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि संबंधित संस्थानों ने वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक का निरीक्षण और संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है। विश्वविद्यालय ने कहा है कि जिन कॉलेजों ने शुल्क जमा नहीं किए हैं उन कॉलेजों की डिग्री को HPU की मान्यता नहीं मिलेगी।

प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अवाह देवी माता मंदिर में श्रद्धालुओं को जल्द ही लिफ्ट की सुविधा मिलेगी। मंदिर परिसर के पास सुरक्षा दीवारें लगाने का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। मंदिर कमेटी ने बुजुर्गों, दिव्यांगों और अस्वस्थ श्रद्धालुओं को राहत देने के उद्देश्य से यह महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी। वर्ष 2025 में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कार्य प्रभावित हो गया था। अब लिफ्ट लगाने का कार्य रफ्तार पकड़ रहा है।

तो श्रोताओं, ये था हिमाचल डायरी का आज का अंक। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:35 हुए हैं। अब से लेकर 9:20 तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे।

हमारी अगली पेशकश अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपला की आवाज़ों में टू स्टेट्स फिल्म से, अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा इसे और संगीत से संवारा शंकर एहसान लॉय ने।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सुखविंदर सिंह की आवाज़ में लापता लेडीज फिल्म का गाना। दिव्यनिधि शर्मा ने लिखा है इसे और राम संपत ने संगीतबद्ध किया है।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए मीत ब्रदर्स जोनिता गांधी और जुबिन नौटियाल की आवाजों में ड्रीम गर्ल 2 फिल्म का गाना। कुमार के हैं बोल और सौरभ रॉय और मीत ब्रदर्स की है तर्ज़।

दोस्तों आज 20 मई है, आज है छायावाद के स्तंभ, सुविख्यात कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म दिवस। आज ही के दिन सन 1900 ईस्वी में आपका जन्म उत्तराखंड के कौसानी नामक स्थान में हुआ। बचपन पहाड़ों की प्राकृतिक सुषमा के बीच बीता, अतः उस सौंदर्य और कोमल भावनाओं का निदर्शन आपके काव्य में सहज रूप से विद्यमान है। सन 1968 में आपको हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके काव्य संग्रह चिदंबरा के लिए दिया गया। भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। तो दोस्तों, इतने बड़े कवि की बात हुई है तो उनकी कविता तो बनती है। छोटा सा अंश आपको सुना रहा हूँ और पूरी कविता आप ज़रूर पढ़ लेंगे, ऐसा विश्वास है। तो लीजिए सुनिए उनके काव्य संग्रह चिदंबरा में संग्रहित कविता झंझा में नीम का एक अंश। झंझा में नीम मूलतः युगवाणी में संकलित है, चिदंबरा युगवाणी ग्राम्या आदि कई ग्रंथों का संकलन है। तो झंझा में नीम और इस कविता का लालित्य देखिए और पुनरुक्ति अनुप्राश देखिए। झंझा में नीम सर सर मर मर रेशम केसे स्वर भर घने नीम दल लंबे पतले चंचल श्वसन स्पर्श से रोम हर्ष से हिल हिल उठते प्रतिपल वृक्ष शिखर से भू पर शतशत मिश्रित ध्वनि कर फूट परा लो निर्झर मरुत कंप्र अर झूम झूम झुक झुक कर भीम नीम तरु निर्भर सिहर सिहर थर थर थर करता सरमर चरमर। पंत जी की कविताओं में प्रकृति वर्णन और संगीतमय कोमल कांत पदावली सहज ही हमें मंत्रमुग्ध कर देती है। सुमित्रानंदन पंत जी को सादर नमन करते हुए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज़ में 102 नॉट आउट फिल्म का ये प्यारा सा गाना।

0: अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज़ में 102 नॉट आउट फिल्म का गाना, सौम्य जोशी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा सलीम सुलेमान ने। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में
1: जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताती है।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए कनिष्क सेठ और कविता सेठ की आवाजों में जुग जुग जियो फिल्म का गाना। ये एक पारंपरिक रचना है जिसे संगीतबद्ध किया है कनिष्क सेठ और कविता सेठ ने।

0: श्रोताओं, अभी तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:20 होने को हैं। आकाशवाणी शिमला से अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
2: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आसपास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
2: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल का युवाओं से खेलों को समर्पण और जुनून के साथ अपनाने का आह्वान। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्विरोध चुने गए 10,854 पदाधिकारी। पंचायत चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर, उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए कड़ी धूप में बह रहे हैं पसीना। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी कल। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने युवाओं से खेलों को समर्पण और जुनून के साथ अपनाने का आह्वान किया है। राज्यपाल जम्मू में इंडिया ओपन राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 2 युवा निशानबाजों को सम्मानित करने के मौके पर बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि कम आयु में इन खिलाड़ियों की उपलब्धियां उनकी असाधारण प्रतिभा, कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प का परिचायक है। उन्होंने कहा कि निरंतर अभ्यास और दृढ़ इच्छा शक्ति से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि हमारे युवा खिलाड़ी देश का भविष्य है और उनकी उपलब्धियां उन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कविंदर गुप्ता ने कहा कि हमें खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए होने जा रहे चुनाव में 10,854 पदाधिकारी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इनमें 85 पंचायत समिति सदस्य, 176 ग्राम पंचायत प्रधान, 286 उप प्रधान और 10,307 वार्ड सदस्य शामिल है। इसके अलावा 131 ग्राम पंचायतें पूरी तरह से निर्विरोध निर्वाचित हुई है। आयोग ने कहा कि निर्विरोध निर्वाचन के बाद अब इन पदों पर मतदान नहीं होगा और इससे चुनावी खर्च और प्रक्रिया का बोझ कम होगा। आयोग ने कहा कि शेष पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान होगा। पंचायतों के चुनाव परिणाम मतदान के तुरंत बाद घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि पंचायत समितियों, जिला परिषदों और 4 नगर निगमों के चुनाव परिणाम 31 मई को घोषित किए जाएंगे। इस बीच प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। उधर कांगड़ा जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले की करीब 850 पंचायतों के लिए होने वाले चुनाव में 12,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उपायुक्त ने कहा कि जिले में 330 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। इन केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाएंगे।
4: पूरा जो मतदान की पूरी प्रक्रिया है वो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और स्मूथ हो, इसकी दिशा में हमारे सभी SDMs, BDOs और तहसीलदार ये लोग इसमें लगे हैं। हमने सेक्टर ऑफिसर्स एंड सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी इसके अंदर डिप्लॉय किए हैं और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो हमारी पोलिंग हो वो स्मूथ तरीके से हो। उसके बाद जो काउंटिंग है वहाँ पर हम एंटायर प्रोसेस को वीडियोग्राफ करें या वेबकास्टिंग के माध्यम से कवर करें।
3: प्रदेश सरकार में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने दावा किया है कि नगर निकाय चुनाव में राज्य की जनता ने प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर भरोसा जताया है और सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर मुहर लगाई है। पठानिया ने शिमला में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश भर में 47 नगर निकायों में से 29 में जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को केवल 16 निकायों में ही जीत मिली है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय 21 और 22 मई को शाहपुर परिसर में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करेगा। ये संगोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में आयोजित की जा रही है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्य प्रकाश बंसल ने कहा कि इस संगोष्ठी में देश विदेश के वैज्ञानिक, शोधकर्ता और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगोष्ठी से प्राप्त शोध निष्कर्षों और सुझावों को उचित मंचों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाएगा, ताकि नीति निर्माताओं को पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से जुड़े मामलों में बेहतर और सुरक्षित निर्णय लेने में मदद मिल सके।
4: हमारा जो एनवायरनमेंट विभाग है मध्य प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का, एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने का किया है। दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शाहपुर में 21 और 22 मई को, क्योंकि हमारा 21 को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऐसा करके है, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है, तो हम इसके संदर्भ में ये इकट्ठी दो दिन की एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रहे हैं। इसका मुख्य रूप से जो थीम रहेगा वो सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेटिक एडॉप्शन और डिजास्टर मैनेजमेंट।
3: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश नशा निवारण के पूर्व संयोजक व सलाहकार ओपी शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में नशा रोकने में विफल रही है। ओपी शर्मा ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार राज्य में नशा खत्म करने में गंभीर नहीं है और प्रदेश में डार्क वेब जैसे खतरनाक टूल के माध्यम से नशे की आपूर्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि केवल पुलिस के भरोसे नशे को खत्म नहीं किया जा सकता, इसके लिए समाज का सहयोग और जागरूकता जरूरी है। ओपी शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने नियमों को दरकिनार कर नशा निवारण बोर्ड का गठन किया है और इसमें राजनीतिक व्यक्ति को संयोजक बनाया गया है।
5: नशा निवारण बोर्ड का आज तक एक बैठक नहीं हुई, क्या कारण है? इस प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है, जब लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो ऐसा क्या हुआ कि नशा निवारण बोर्ड की आज तक बैठक कन्वीनर कम एडवाइजर ने, सलाहकार महोदय ने, या जो सदस्य सचिव हैं एक्साइज एंड टैक्सेस के जो मेंबर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस नशा निवारण बोर्ड की बैठक को क्यों नहीं किया? मैंने यह विषय माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष भी उठाया है।
3: केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान कुल्लू जिला में भी शुरू हो गया है। ये टीका किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाएगा। इस अभियान के तहत 14 से 15 वर्ष तक की बालिकाओं को HPV का टीका लगाया जाएगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
6: महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। कुल्लू जिला में भी ये अभियान शुरू हो चुका है तथा जिला में इसके तहत 39,089 किशोरियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक इस अभियान के तहत 1,630 किशोरियों को टीका लगाया जा चुका है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 14 से 15 वर्ष तक की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाना है, परंतु बीते दिनों सोशल मीडिया में इस वैक्सीन संबंधी कुछ भ्रामक अफवाहें फैलाई गई, जिस पर चिकित्सा अधिकारी कुल्लू डॉक्टर रणजीत सिंह ने स्पष्ट किया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है तथा भविष्य में ये किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाएगी। उन्होंने 14 वर्ष पूर्ण कर रही किशोरियों के परिजनों से अपील की है कि वे अपनी बेटियों का HPV टीकाकरण

0: शुरू करवाएं तथा ये पूर्णतः निःशुल्क है। इस बारे में ज्यादा जानकारी अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर ली जा सकती है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
1: प्रदेश में मई की गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मंगलवार को प्रदेश में इस साल का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा और मैदानों से लेकर पहाड़ों तक लोगों को जबरदस्त गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार आने वाले दिनों में भी भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। विभाग ने आज भी प्रदेश में कुछ स्थानों पर लू चलने का अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया है। शिमला और मनाली जैसे ठंडे शहरों में भी लोगों को दिन भर गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज और कल भी 2 जिलों कांगड़ा और सोलन में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कल 21 मई को कुछ जिलों चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में आंधी व बिजली गिरने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 22 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अधड़ बारिश व बिजली चमकने की संभावना है। 23 व 24 मई को मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रह सकता है, जबकि मध्यम व ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। 25 मई को एक बार फिर से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलेगा और बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल में 176 प्रधान, 286 उप प्रधान समेत 10,854 पंचायत प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित। प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से पंजाब केसरी लिखता है, तबादले के खिलाफ याचिका दायर करने से रोकना न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप या बाधा डालने के समान। दैनिक जागरण की एक खबर है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में छठे स्थान पर पहुंचा हिमाचल। मुख्यमंत्री के हवाले से हिमाचल दस्तक लिखता है, महिलाओं को ब्यूटी पार्लर बुटीक के लिए मिलेगा 3 लाख का ऋण। हिमाचल के 4 जिलों में चली लू शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, ऊना में 43.4 डिग्री तक पहुंचा पारा, अगले 48 घंटों के लिए हीट वेव का अलर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल का युवाओं से खेलों को समर्पण और जुनून के साथ अपनाने का आह्वान। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्विरोध चुने गए 10,854 पदाधिकारी। पंचायत चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर, उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए कड़ी धूप में बाह रहे हैं पसीना। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी कल। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब से लेकर 10 बजे तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे।
4: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
5: कमाल साहब कह रहे थे, खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
4: संगीतकार खयाम।
5: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
4: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका कार्य उन्हें जीते जी अमर कर देता है। फिल्मों में गिरीश कर्नाड को हमने चरित्र अभिनेता के रूप में देखा, निशांत, स्वामी, मंथन, अपने पराए, मेरी जंग, सुर संगम के तो वे नायक थे, परंतु मूलतः गिरीश सच्चे साहित्यकार और रंगकर्मी थे। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल माथेरान में हुआ था, मगर उनकी माँ कृष्णाबाई और पिता डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड कन्नड़िगा थे, अर्थात कर्नाटक के रहने वाले थे। प्राथमिक शिक्षा मराठी में हुई। आगे जब वो परिवार कर्नाटक के सिरसी गांव में रहने लगा, तब गिरीश नाटक मंडलियों के संपर्क में आए। वहां के लोकनाट्य यक्षगान के तो वे जबरदस्त प्रशंसक थे। गिरीश जब 14 बरस के थे, तब उनका परिवार धारवाड़ में आ बसा, जहां उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की और फिर वे इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड के मैग्डलिन शहर में रहकर उन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स विषयों को लेकर एमए की डिग्री हासिल की।
1: सर,

1963 में भारत लौटने के बाद गिरीश कर्नाड चेन्नई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए काम करने लगे। अब भी नाटकों और लोक कलाओं के प्रति उनका आकर्षण कम नहीं हुआ था। चेन्नई में रहते हुए गिरीश कर्नाड द मद्रास प्लेयर्स नामक नाटक मंडली से जुड़ गए। विदेश जाने से पहले ही 1961 में गिरीश कर्नाड ने जब लिखना शुरू किया था, ये वो समय था जब कन्नड़ साहित्य पर यूरोपीय साहित्य की छाप देखने को मिलती थी। कमोबेश सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य की स्थिति यही थी। सी राजगोपालाचारी द्वारा रचित महाभारत का संस्करण गिरीश कर्नाड ने पढ़ा और उन्होंने अनुभव किया कि महाभारत के पात्र उनके मस्तिष्क में विचरण कर रहे हैं और उन पात्रों के संवाद कानों में गूंज रहे हैं। आगे एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मैं तो मात्र लेखनी हूं, एक एक कर सभी पात्र मेरे कानों में बोलते गए और मैं लिखता गया। नाटक तैयार हुआ ययाति। पांडवों के पूर्वज ययाति पर केंद्रित यह नाटक बहुत सफल हुआ और अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए। 1964 में गिरीश कर्नाड ने अपना अगला नाटक लिखा तुगलक। 14वीं सदी के दिल्ली के इस सुल्तान की कहानी के माध्यम से तत्कालीन प्रशासन के महत्वाकांक्षी आदर्शवाद का बुलबुला बड़ी सहजता से दर्शाया गया था इस नाटक में। गिरीश कर्नाड को एक नजरिया मिल गया था, कहानी के स्रोत इतिहास या पुराणों से लेना और समकालीन विषयों तथा आधुनिक मानव की अस्तित्व के लिए चल रही लड़ाई के साथ उसे जोड़ देना। मात्र 26 वर्ष की आयु में गिरीश कर्नाड एक उदीयमान प्रतिभाशाली

लेखक के रूप में स्थापित हो चुके थे। सन 1971, गिरीश कर्नाड के कला जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं, एक ओर 11वीं सदी के संस्कृत ग्रंथ कथा सरित सागर से ली गई एक कहानी पर आधारित नाटक हैवदन का निर्माण, और दूसरी ओर एस एल भैरप्पा के उपन्यास पर बनी फिल्म वंश वृक्ष का निर्देशन। लोकनाट्य यक्षगान के सांचे में ढलकर नाटक हैवदन का सफल मंचन हुआ और खूब सराहना मिली। ये नाटक जर्मन भाषा में भी अनुवादित हुआ। उसका निर्देशन किया जानी मानी निर्देशिका विजया मेहता ने। यूं तो 1970 में ही गिरीश कर्नाड का पदार्पण हो चुका था फिल्म संस्कार के पटकथा लेखक के रूप में। इस फिल्म को राष्ट्रपति के स्वर्ण कमल से सम्मानित किया गया था। निर्देशक के रूप में गिरीश कर्नाड की पहली फिल्म थी वंश वृक्ष, जिसके लिए राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्कृष्ट निर्देशक का पुरस्कार उन्होंने साझा किया बी.वी. कारंत के साथ। आगे कई कन्नड़ फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। जहां तक हिंदी फिल्मों की बात है, 1977 में गिरीश कर्नाड ने जिस फिल्म का निर्देशन किया वो फिल्म थी गोधूली, और 1984 में शशि कपूर निर्मित फिल्म उत्सव।

जी हाँ, क्यों न बजे मृदंग मन में और क्यों न खनके मंजीरा अंग अंग में, जब लेखन और निर्देशन के साथ साथ गिरीश कर्नाड के नाम का डंका अभिनय के क्षेत्र में भी बजने लगा। तब्बलियु नीनदे मगने, ओंदनंदु कलदल्ली, चेलुवी, काडू, कोन्नुरु हेगदित्ति, ये हैं कुछ प्रमुख कन्नड़ फिल्मों के नाम जिनमें गिरीश कर्नाड ने अभिनय किया है। उनके अभिनय से सजी हिंदी फिल्मों की तो एक लंबी फहरिस्त है। जादू का शंख, निशांत, मंथन, स्वामी, जीवन मुक्त, संपर्क, रत्नदीप, बेकसूर, आशा, मनपसंद, अपने पराए, क्षमा, तेरी कसम, आनंद भैरवी, एक बार चले आओ, तराना, जमाना, मेरी जंग, सुरसंगम, सूत्रधार, आकर्षण, मिल गई मंजिल मुझे, चैतन्य, ब्रह्म, अंतर्नाद, गुना, प्राणदाता, आतंक, चाइना गेट, AK-47, पुकार, इकबाल, डोर, 8x10 तस्वीर, आशाएं, लाइफ गोज ऑन, एक था टाइगर, शिवाय, चौक एंड डस्टर और टाइगर जिंदा है। फिल्म सुरसंगम, जो तेलुगु में शंकराभरणम के नाम से बनी थी, इसके नायक पंडित शिवशंकर शास्त्री की भूमिका में थे गिरीश कर्नाड। वो जानदार शानदार अभिनय कैसे भुलाया जा सकता है।

0: 1980 के दशक में कलाकारों के लिए एक और मार्ग प्रशस्त हुआ, दूरदर्शन का। नई नई श्रृंखलाएं बनने लगी। अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार आर के नारायण की कहानियों पर आधारित हिंदी सीरियल बना मालगुड़ी डेज, जिसका नायक था एक नन्हा सा नटखट बालक स्वामी। इस श्रृंखला में स्वामी के पिता की भूमिका की थी गिरीश कर्नाड ने।
1: पिताजी कॉफी, मुझे आपका कमरा चाहिए।
2: किस लिए?
1: मेरा एक दोस्त आ रहा है।
2: तो तुम्हारा अपना कमरा है, वही ले।
1: राजम को वहाँ कैसे ले जाऊं?
2: ये राजम है कौन, इतना बड़ा आदमी?
1: डीएसपी का बेटा है, बहुत बड़ा आदमी है वो।
2: अच्छा ठीक है, तुम ये कमरा ले सकते हो, लेकिन मेज पर रखी हुई चीजों को हिलाना नहीं।
1: बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं।
0: दूरदर्शन के ही एक कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका टर्निंग पॉइंट के सूत्रधार के रूप में भी हमने गिरीश कर्नाड को देखा है।

1971 से लेकर 1990 तक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नागमंडल, अग्निमट्टू माले और तालेदंड, इन नाटकों को अनुवादित रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार सफलता मिली। भाषा साहित्य की सेवा के लिए गिरीश कर्नाड को 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार, 1992 में पद्मभूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया। 1992 में ही उन्हें कन्नड़ साहित्य परिषद का पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1998 में कालिदास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से गिरीश कर्नाड को सम्मानित किया गया। फिल्मों में उनके योगदान को अनन्य पुरस्कारों से प्रतिष्ठा मिली। 1971 में बेस्ट डायरेक्टर फिल्म वंश वृक्ष के लिए, 1977 में बेस्ट फीचर फिल्म इन कन्नड़ा तब्बली यू नीनदे मगने के लिए, फिल्म भूमिका की पटकथा के लिए 1978 में बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार उन्होंने साझा किया श्याम बेनेगल और सत्यदेव दुबे के साथ।

चंदनंदू कलदल्ली। कन्नड़ भाषा में बनी इस फिल्म के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का उन्हें पुरस्कार मिला 1978 में। कन्नड़ भाषा के एक संत कवि कनक पुरंदर पर उन्होंने एक वृत्त चित्र का निर्माण किया था। इसके लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार उन्हें दिया गया 1989 में। साथ ही साथ कर्नाटक राज्य सरकार के कई सम्मान उन्हें मिले तथा कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी गिरीश कर्नाड को मिले साहित्य एवं फिल्मों

10 जून 2019 भारतीय रंगमंच और सिनेमा तथा कन्नड़ साहित्य जगत के आकाश से एक चमकता सितारा अस्त हुआ।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था लेखक निर्देशक एवं अभिनेता गिरीश कर्नाड पर।
1: आज के फनकार।

0: श्रोताओं, अभी तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 10 बजने को है। आकाशवाणी दिल्ली से अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी इस यात्रा का मुख्य ध्यान भारत और इटली के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर रहेगा। इस दौरान विशेष रूप से भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान वर्ष 2025 से 2029 के दौरान संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना की भी समीक्षा की जाएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
3: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान की ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान का संचालन रोक दिया गया था। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि 1947-48 के युद्ध में पीरू सिंह का अदम्य साहस, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान भारतीय सैन्य इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में सदा अमर रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लघु वार्ता।

लघु वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज की वार्ता का विषय है जल है तो कल है। जी हाँ, जल है तो कल है, मानव जीवन का सबसे बड़ा यह सत्य है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना जल के बिना संभव नहीं है। जल प्रकृति का अमूल्य उपहार है जो मनुष्य, पशु पक्षी, वनस्पति और समस्त जीव जगत के अस्तित्व का आधार है। जिस प्रकार शरीर के लिए रक्त आवश्यक है, उसी प्रकार पृथ्वी के लिए भी जल आवश्यक है। जल के बिना न भोजन संभव है, न कृषि, न उद्योग और न ही जीवन का कोई अन्य स्वरूप।

श्रोताओं, आज दुनिया विज्ञान और तकनीक में लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी ओर जल संकट भी तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, प्रदूषण और जल के अंधाधुंध उपयोग ने इस अमूल्य संसाधन को संकट में डाल दिया है। ऐसे समय में जल है तो कल है का संदेश और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

दोस्तों, जल जीवन का मूल आधार है। मानव शरीर का लगभग 2/3 भाग जल से बना होता है। हमारे दैनिक जीवन में पीने, भोजन बनाने, स्नान, सफाई, कृषि, उद्योग, बिजली उत्पादन और परिवहन

तक हर क्षेत्र में जल का उपयोग होता है। जल केवल मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि प्रकृति के संतुलन के लिए भी आवश्यक है। नदियाँ, झीलें, तालाब और समुद्र पृथ्वी के पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। वनस्पतियाँ जल के माध्यम से पोषण प्राप्त करती हैं और वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ती हैं।

श्रोताओं, यदि पृथ्वी पर जल ना हो तो जीवन समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी पर जल अनेक रूपों में उपलब्ध है। वर्षा जल मीठे जल का ये सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत होता है। पीने, सिंचाई और अन्य कार्यों में उपयोग होता है। नदियों का जल, झीलें और तालाब स्थानीय जल आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। भूजल, जिसमें कुएं, हैंडपंप और ट्यूबवेल से प्राप्त जल होता है। हिमनद और बर्फ भविष्य के लिए जल के भंडार हैं। हालांकि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसमें से बहुत कम जल पीने योग्य है। यही कारण है कि उपलब्ध मीठे जल का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।

श्रोताओं, आज विश्व के कई देशों में जल संकट गंभीर रूप ले चुका है। कई क्षेत्रों में लोग पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर तक यात्रा करते हैं। जल संकट के बहुत से कारण हैं। बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ने से जल की मांग लगातार बढ़ रही है और भूजल पर अत्यधिक दोहन हो रहा है। ट्यूबवेल और बोरवेल के अत्यधिक प्रयोग से भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है।

दोस्तों, कारखानों का रासायनिक कचरा, प्लास्टिक और गंदगी जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहे हैं। पेड़ों की कटाई से वर्षा प्रभावित होती है और जल संरक्षण कम होता है। घरों, खेतों और उद्योगों में अनावश्यक जल उपयोग भी संकट का बड़ा कारण है।

दोस्तों, जल संरक्षण का अर्थ है जल का विवेकपूर्ण उपयोग और भविष्य के लिए उसका सुरक्षित भंडारण। यदि हम आज जल को नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां गंभीर संकट का सामना करेंगी। जल संरक्षण आवश्यक है। दोस्तों, जल संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि पीने योग्य जल जो है वो सीमित है। कृषि पूरी तरह जल पर निर्भर है। जल संकट से आर्थिक और सामाजिक समस्याएं बढ़ती हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जल आवश्यक है। जल बचाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। इसलिए वर्षा के पानी को संग्रहित कर भूजल स्तर बढ़ाया जा सकता है। घरों, विद्यालयों और भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनानी चाहिए। अनावश्यक रूप से नल खुला ना छोड़ें, आवश्यकता अनुसार जल का प्रयोग करें।

कृषि में ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर जैसी तकनीकों का उपयोग करके जल बचाने में सहायता होती है, इसलिए खेतीबाड़ी में आधुनिक सिंचाई तकनीक का ज़रूर उपयोग करना चाहिए। लोगों को जल के महत्व के प्रति जागरूक करना अति आवश्यक है। दोस्तों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है, ऐसे में जल का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। भारत में कई क्षेत्रों में जल संरक्षण के सफल उदाहरण देखने को मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों का पुनर्निर्माण, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक प्रयासों ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन सरकारी प्रयास तभी सफल होंगे जब आम नागरिक भी इसमें भागीदार होंगे।

दोस्तों, जल और पर्यावरण का गहरा संबंध है। जल स्रोतों के सूखने से जैव विविधता प्रभावित होती है। नदियों का जल स्तर घटने से अनेक जीवों का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। जल की कमी से भूमि बंजर हो सकती है और तापमान में वृद्धि हो सकती है। इसलिए जल संरक्षण केवल मानव हित नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी की सुरक्षा का विषय है। दोस्तों, जल प्रकृति की अनमोल धरोहर है। इसके बिना जीवन, विकास और भविष्य तीनों अधूरे हैं। आज आवश्यकता केवल जल उपयोग की नहीं बल्कि जल संरक्षण की है। प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने स्तर पर थोड़ा सा प्रयास करे तो बड़े परिवर्तन संभव हैं। हमें ये भी समझना होगा कि जल का प्रत्येक बूंद मूल्यवान है। आज बचाया गया पानी ही आने वाली पीढ़ियों के जीवन की गारंटी होगा। इसलिए हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि जल का सम्मान करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए जल बचाइए, जीवन बचाइए। जल है तो कल है।

अभी आप सुन रहे थे लघु वार्ता, जल है तो कल है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:15 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गल तुसा दी।

गल तुसां दी कार्यक्रम सुनने आले सारे श्रोतियां जो राम राम। अज दे इस कार्यक्रम च मैं हूँ नरेश चंदेल। श्रोताओ, अज अहां एड़े विषय पर गल करनी जिसरा असर सिर्फ जंगलां पर, जानवरां पर या पक्षियां तक सीमित नहीं है, बल्कि अहां दे जीवन, अहां दी संस्कृति कने आने आली पीढ़ियां दे भविष्य ते भी जुड़ी रहा है। जी हाँ, अज दा विषय है पशु पक्षियों दा संरक्षण, अहां सारे दी जिम्मेवारी। दिखा, अज ते कुछ साल पहले अहे अपने बचपना जो याद करिए ता उस बेले अहां दिखदे थे सवेरे सवेरे कई तरह दे पक्षियों दी आवाज़ सुनने जो मिलती थी। जंगला च कई प्रकार दे पशु पक्षी होंदे थे। उस वेले प्रकृति दी अलग रौनक थी। अगर अज दे समय दी गल करिए ता ए रौनक दिखाई नहीं दिंदी। इसरा कारण है कटदे जंगल, बद्दा प्रदूषण कने प्रकृति ते दूरी। ता अहां सारे दा फर्ज है कि पशु पक्षियों दा संरक्षण करिए कने इस विषय पर अहां होर भी गलबात करनी, लेकिन पहले सुनी लेना इस कार्यक्रम दा ये पहला लोकगीत।

श्रोताओ, अजकल गर्मियां रा मौसम आ ता आहां सारियां जो अपने घरां दे नेड़े तेड़े पशु पक्षियां रे पानी पीने री व्यवस्था जरूर करनी चाहिंदी। घरां री छत्तां पर, अंगणा च, छोटे छोटे पांड्यां च पानी जरूर भरना चाहिंदा ताकि ए पंछी पंखेरू पी सको।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गल तो सांदी। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग।

पहाड़ी लोक गीतां पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग सुनने वाले सारे श्रोतियां दा स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पूनम कने संजीव दे स्वरा च इस पहाड़ी लोक गीत कने।

0: शादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: संजीव धीमान दे गाए इस लोकगीता कन्ने ही आज दा लोक रंग कार्यक्रम इथे लग रहा संपन्न होना।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 11 बजने को है, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने युवाओं से खेलों को समर्पण और जुनून के साथ अपनाने का आह्वान किया है। राज्यपाल जम्मू में इंडिया ओपन राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दो युवा निशानबाजों को सम्मानित करने के मौके पर बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि कम आयु में इन खिलाड़ियों की उपलब्धियां उनकी असाधारण प्रतिभा, कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प का परिचायक है। उन्होंने कहा कि निरंतर अभ्यास और दृढ़ इच्छा शक्ति से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए होने जा रहे चुनाव में 10,854 पदाधिकारी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इनमें 85 पंचायत समिति सदस्य, 176 ग्राम पंचायत प्रधान, 286 उप प्रधान और 10,307 वार्ड सदस्य शामिल है। इसके अलावा 131 ग्राम पंचायतें पूरी तरह से निर्विरोध निर्वाचित हुई है। आयोग ने कहा कि निर्विरोध निर्वाचन के बाद अब इन पदों पर मतदान नहीं होगा और इससे चुनावी खर्च और प्रशासन प्रक्रिया का बोझ भी कम होगा। आयोग ने कहा कि शेष पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान होगा। प्रदेश सरकार में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने दावा किया है कि नगर निकाय चुनाव में राज्य की जनता ने प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर भरोसा जताया है और सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर मुहर लगाई है। पठानिया ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश भर में 47 नगर निकायों में से 29 में जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को केवल 16 निकायों में ही जीत मिली है।
1: 2017 का सेमीफाइनल हमने जीता, विक्रमगढ़, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, इवन की ऊना, सोलन में रहे हैं। अब प्रदेश के अंदर वैल्यूट करके देखे तो हम जो जीता, कॉर्पोरेशन के चुनाव आने वाले हैं, चुनाव तीन पे चुनाव हुए, आपके सामने धनसाल का जंट भी आएगा, कानपुर का जंट भी आएगा, तो स्वाइन पे पूछना प्रश्न का जवाब सीधा मिल जाएगा।
0: उधर कांगड़ा जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
2: पूरा जो मतदान की पूरी प्रक्रिया है वो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और स्मूथ हो, इसकी दिशा में हमारे सभी SDMs, BDOs और तहसीलदार ये लोग इसमें लगे हैं। हमने सेक्टर ऑफिसर्स एंड सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी इसके अंदर डिप्लॉय किए हैं और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो हमारी पोलिंग हो वो स्मूथ तरीके से हो। उसके बाद जो काउंटिंग है वहाँ पर हम एंटायर प्रोसेस को वीडियोग्राफ करें या वेबकास्टिंग के माध्यम से कवर करें।
0: प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा है कि प्रदेश पुलिस राज्य के 75 मुख्य स्थानों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम संचालित कर रही है। इस हाईटेक प्रणाली के माध्यम से अभी तक लाखों मोटर वाहन नियम उल्लंघनों का पता लगाया गया है और बिना मानवीय हस्तक्षेप के करोड़ों रुपए के चालान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से ट्रैफिक प्रवर्तन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पुलिस महानिदेशक ने यह भी कहा कि प्रदेश पुलिस को एक आधुनिक तकनीक सक्षम, जनोन्मुखी और कल्याणकारी पुलिस बल बनाया जा रहा है। उन्होंने पुलिस कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति भी विभाग की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रदेश में मई की गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मंगलवार को प्रदेश में इस साल का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार आने वाले दिनों में भी भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। विभाग ने आज भी प्रदेश में कुछ स्थानों पर लू चलने का अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया है। शिमला और मनाली जैसे ठंडे शहरों में भी लोगों को दिन भर गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज और कल भी 2 जिलों कांगड़ा और सोलन में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कल 21 मई को कुछ जिलों चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में आंधी व बिजली गिरने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 22 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अधड़ बारिश व बिजली चमकने की संभावना है। 23 व 24 मई को मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रह सकता है, जबकि मध्यम व ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। 25 मई को एक बार फिर से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलेगा और बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11:05 हुए हैं, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

वक्ता पेश कर रहा हूँ, जनाब अमीर मिनाई की गजल है, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, और मैं कहूँ उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता। तो इस मक्ते में हुजूर और जनाब का जो इस्तेमाल किया शायर ने, जहाँ तक मेरी समझ में आया है तो मैंने उसको कोशिश की है कि आपको बताऊं कि शायर ने क्या सोचा था। हुजूर और जनाब में वही फ़र्क है जो पंजाब में और लखनऊ में फ़र्क है।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको, मैं हूं तेरा, तू नसीब अपना बना ले मुझको।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

इस कलाम के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बजे हैं, लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम महिला जगत सुनने वाली यहां सारिया सखियां जो मेरा यानी कि शिवाली दा प्यार भरा नमस्कार। देखा जी कार्यक्रम महिला जगत अहां लई कने हाजिर होई गई कने ये समय जड़ा आंदा जिस समय अहां दियां बहनी जो इस कार्यक्रम दा इंतजार रहिंदा क्योंकि इस कार्यक्रम च अहां देंदे तिना जो ढेरों सारी जानकारियां कने लोक गीतां सौगी भी तिना दा अहां मनोरंजन जरूर करदे हन। तो देखा अज जिहड़ा विषय अहां लई कने आयो अज जिहड़े विषय पर अहां गल करनी सै है कि अपने जीवन दी बैलेंस शीट जी असें आंदी महिलाएं जनसे कियां बना दियां। दिखा सखियों एक प्यारी जी कहानी छोटी जी कहानी कहाँ तो हम जो सुनानी है थी कि दिखा दो सहेलियां थियां कने से दोनों ही अलग अलग रास्ते पर निकलियां। इक्की सहेलियां जी असें बहुत बड़ी ज़्यादा मेहनत की आत्मनिर्भर बनी कने अपनी वित्तीय जागरूकता दा यानी कि जो स्टार्टअप शुरू कित्या कने दिखा इं भी आंदियां महिलाओं जो सशक्त बनाना तिना दी बचत कने निवेश वास्ते तिना जो मजबूत बनाना भविष्य तिना दा बनाना ये बड़ा जरूरी हुंदा। दूजी तरफ जिहड़ी जी दूजी सहेली थी ती है थोड़ी जी जल्दबाजी की थोड़ी जी फिजूल खर्ची की गलत फैसले ले ले कने अपनी वित्तीय योजना च होने वाले घाटे च सह फसी जाती है। अगे देखा अहे हूँ ही अपने इस करोना संकट से जी अंसर निकले अंता जी जी करोना संकट आया तो तिस जी जी पहले वाली थी तिहादा कारोबार जी असर थोड़ा टिकी गया लेकिन जी दूजी थी तिहसदा डुबी गया। तो देखा ये कहानी सिर्फ इन्हों दुई दी नहीं है बल्कि ये हर उस महिला दी है जड़ी जी अपने सपने जो सच करना चाहती कने आज जी दे दौर च जी अहां दी युवतियां सह नौकरी या स्टार्टअप दी दुनिया च कदम रखा दियां तिस जो समझा दियां अपनी जिंदगी दी बैलेंस सीट जी तिस जो सिर्फ रुपए कने पैसे ते नहीं संबंधी बल्कि इन्हां च भी तिना दी दो कॉलम जी असे हुंदे से हुंदी तिना दी संपत्ति कने तिना दियां देता है। दिखा आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है अजकल दी हाँ दी जिहड़ियां बहणियां ने क्योंकि आर्थिक आत्मनिर्भरता होंगी तो हाँ दा जीवन जी असै तिस जो संतुलन तिस च बनाए रखने वास्ते महिलाओं जो बचत कने निवेश दा सही योजना बनाना आना चाहिए है क्योंकि ये सिर्फ कमाना ही नहीं हुंदा बल्कि कमाए गया जिहड़ा हाँ दा पैसा है तिहा जो सही दिशा च खर्च करना भी उतना ही जरूरी आ क्योंकि महिलाएं जी होंदियां ना से स्वाभाविक रूप से हाँ दी परिवार का प्रबंधन जी से बेहतर रूप कने कर दियां कने वित्तीय निर्णय लेने दी तिना जो स्वतंत्रता मिलती ताई से अपने जीवन जो होर ज़्यादा बेहतर जी से बनाई सकदियां ताई हाँ दी महिलाओं दे निवेश च 10-20% नियम का पालन करी कने एक बेहतरीन शुरुआत से करी सकदियां कने हर महीने अपने आय का कुछ हिस्सा निकाली कने तिस जो निवेश करी सकदियां चाहे सह SIP हो म्यूचुअल फंड हो या कोई होर अन्य योजना च तिसदा इस्तेमाल कर सकदियां कने अच्छा जीवन व्यतीत करने वास्ते कुछ वित्तीय अनुशासन होना बड़े जरूरी हुंदे हन। दिखा दूजी इतना जो वित्तीय समझ भी होना चाहिए क्योंकि आत्मनिर्भरता एक हाँ दा बोलते ना एक सशक्त औजार है जिहड़ा महिलाओं जो अपने आप जो अपने तिना दे जीवन जो मजबूत कने स्वतंत्र बनांदा एड़ी कई सारी महिलाएं हैं तिना जो सही जानकारी होंदी सही समय पर फैसला लेना हिम्मत करने अपने सपना जो पूरा करना ये बड़ा जरूरी है क्योंकि अजकल दा जेड़ा दौर है ना ते इस दिखा अहां बेले बैठी करने जी अपने आप जो बिल्कुल खत्म करी देंदे हैं ता एड़ा बिल्कुल नहीं करना अगर तुहां च कोई ना कोई हुनर है तो थोड़े अपने तिस हुनर जो घर बैठी करने भी निखारी सकते हैं। देखा ये शक्ति तिना जो केवल आर्थिक रूप से सक्षम बनाती बल्कि तिना दे मानसिक कने सामाजिक रूप से भी तिना जो सशक्त बनाती जाली जी तो हाँ अपना निर्णय ले लेंदे तो अपना जीवन संतुलित कर लेंदे खुशहाल कर लेंदे तिस जो होर ज़्यादा समृद्ध बनाई लेंदे हैं यही रास्ता जी असें तिना दे आत्म सम्मान कने तिना जो सफलता दी ओर तिना जो बढ़ाता ही आ। देखा एक अच्छी नौकरी या एक अच्छा स्टार्टअप लेकिन अगर तुहां गए अच्छी वित्तीय समझ नहीं है ना तो तुहे अपने आप ही परेशानी का सामना करी लेंदे हैं कने वित्तीय समझ अगर तुहां जो होंगी तो तुहे अपने आप जो आत्मनिर्भर सशक्त कने सुरक्षित बनाई सकते हैं। दिखा तुहां जाली भी कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर दे तो उस वास्ते तुहां जो जी ऐसे कोई इड़ा फंड तुहां के जरूर होना चाहिए कि अगर तुहां जो कोई विपत्ति आँदी भी है तो उस समय तुहे अपने उस फंड का इस्तेमाल जी ऐसे करी लैन क्योंकि ये फंड जीवन की अनिश्चित परिस्थितियां च आर्थिक सुरक्षा जी असें प्रदान करता।
अचानक आने पर संकटा ते अहां की निपटना कनत की तेना ते अहें मदद कर सकते हैं। इसते हां दा मानसिक तनाव भी घट हुंदा कने वित्तीय स्थिरता भी बनी रहती है, क्योंकि देखा जल भी अहां कोई स्टार्टअप शुरू कर देना तो इस अप एंड डाउनस तो आते हैं, लेकिन तेना ते घबराना नहीं है। अगर तो छोटी छोटी बचत कर गए छोटे छोटे जगह पर, हाँ तो हाँ अपनियाँ बचत करना सीखी होंगी की होंगी तो जाली तुम तो जरूरत होगी तो तिना फंडा जो तुम तो निकाल ही सकते हैं, कहना उस समय तो तिना जो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होंगे कि मानसिक तनाव भी नहीं होंगे कने हाँ जो होर परेशानी का सामना भी नहीं करना पाँगा। या देखा निवेश करना भी बड़ा जरूरी है, तो निवेश कितने करना, देखा म्यूचुअल फंड तो निवेश कर सकते, कोई होर एडी कोई फिक्स डिपोजिट तो करवाई सकते हैं। तो निवेश करने दी दिशा च थोड़ी छोटी शुरुआत होंगी, लेकिन एक बहुत वड्डा फैसला होंगे। या नियमित निवेश से हाँ का धन जैसा भी बढ़ता कने तिसते हाँ जो वित्तीय सुरक्षा भी मिलती है। अपने बच्चों की शिक्षा पर भविष्य की जरूरत जो ध्यान च रखी कने सही निवेश करना बड़ा जरूरी आ। इसते हाँ जो आर्थिक मजबूती जी सह भी मिलती है। देखा इस मामले च हाँ दी बहनी दे क्या ही अहाँ गल करिए, स निवेश करना तो बड़े अच्छे तरीके कने जानती है, क्योंकि तिना जो पता होंदा कि जल कोई भी पत्ती आवै तो एक जिहड़ी हाँ दी घर दी महिला आउंदी ती है कि छोटी छोटी बचत करी करना की है छोटे छोटे पैसा बचाई करने जी असें उस समय उस जरूरत का जो पूरा जी असें करी लैंदी है। देखा अगर तुहे टैक्स के दायरे च भी आउंदे तां ईमानदारी करने अपना टैक्स जी आ सै भी जरूर भरना, क्योंकि जीवन की बैलेंस शीट च सिर्फ पैसा जोड़ने की होड़ च नहीं अहां लगना, क्योंकि महिलाएं सिर्फ घर चलाने वाली नहीं है अलगी आधी आर्थिक कने आज़ादी वाली महिला जी है सै हूँ हाँ जो देखने च मिला दी है। कने अगर तुह मेहनत कर दे ईमानदारी कने वित्तीय समझ दे रास्ते पर चल गए तो तुहांदी बैलेंस शीट हमेशा जी असें हरी भरी रहनी कने तुहें अपना जीवन जी असें व्यवसाय च संतुलित दिशो बनाई सकते हैं। तो देखा यही छोटी छोटी गल्लां होंदियां हैं जाली जी तुहां कोई कम शुरू करना चाहते तो तुहें कियां निवेश कर सकते कियां तुहें अपनी बचत कर सकते ताकि तुहांदा जिहड़ा कारोबार जी आ सब बिल्कुल नियमित रूप से चलीदा रहे कर तो हाँ जो कोई दिश परेशानी नहीं आवे, क्योंकि देखा छोटी मोटी परेशानियां तो हाँ जो आदियाँ रहनियाँ लेकिन तिना तो घबराना नहीं होंगे अहाँ जो तिना का हंसी करने जिया तिना मुश्किलों जो पार करना ताकि अहाँ जरा सोचिए अपने सपना जो अहाँ एक उड़ान भरी सकन तिना जो बड़े अच्छे तरीके अहाँ करना ही है पूरा जी। तो देखा आगे अहाँ होर गल्लां बातें करनियाँ लेकिन इतनी हो ही आवे एक प्यारा जिहा लोक गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी, इस छोटे जे ब्रेक के बाद एक बारी तुहांदा फिर ते स्वागत करदे हन कार्यक्रम महिला जगत च। कन्हा इससे पहले सुनाया तुहां जो ये प्यारा जिहा लोक गीत कदेखा उन्हां गल करनी कि जियां गर्मियां जी अनसह बहुत ज़्यादा हुई गई, कने इन्हां गर्मियां दे चलदे जी अनसह अहां जो हांदे बच्चियां दा ध्यान रखना जी असह बड़ा जरूरी आ, क्योंकि देखा गर्मी जी अनसह बिल्कुल पीक पर हैं, कने जड़े छोटे बच्चे जी अस स्कूल ते आउंदे तां कियां तिन्हां दी देखभाल करनी, कने कियां तो तिन्हां दा ध्यान रखना, क्योंकि छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कने एकदम नाजुक बच्चे हैं, तो गर्मिया का चपेट च एकदम जल्दी आते जी छोटे बच्चे हो गए बुजुर्ग हो गए। तो अजकल जी देखा तो हाँ दे बच्चे स्कूल से आवा दे तो तुहे छत ले करने जा सकते हैं ताकि तुहे अपने बच्चों जो गर्मी से बचान कैप तेना जो लगा सकते हैं, जल्दी जे स्कूल की बस से उतर दे छत जरूर ले करने जाना ताकि बच्चे जन से गर्मी ते बचन, कने जियां जी घरे पहुँच दे तियां तिना दे कपड़े वगैरह अच्छे करने उतारी करने हाथ पैर तिना दे ढंगे नाल तुआई करने, फिर तिना जो आराम करने बिठाई करने कोई ठंडे पेय पदार्थ तिना जो दे सकते हैं, क्योंकि गर्मियां बहुत हैं, कने इन्हां गर्मियों के चलते अगर अहां इन्हां दा ध्यान नहीं रखे तो यह जीअन से बीमारी दे चपेट च आई सकते हैं। कने ये भी जरूर ध्यान रखना कि थोड़ा बच्चा जी ऐसे पानी खूब सारा पीए, तिस जो जी ऐसे कोई डिहाइड्रेशन नहीं हो, कने तुझे खान पान का भी ध्यान रखना जरूर रखना, अगर बच्चा जी से पानी घट पी जाता खाना पाना खाना जी ऐसा भी घट खाता तो भी ये ध्यान जरूर रखना कि थोड़ा बच्चा जी ऐसा बीमार ना हो, कने प्रॉपर हल्के फुलके कॉटन के कपड़े जिनसे तिना जो बनाने हैं। देखा वो रहा गर्मियों की गल, देखा इतनी एक जरूर होर करनी कि गर्मियों जी असें तो अपने बच्चों जो अगर स्विमिंग सिखाना चाहते तो कुछ जड़िया चीज़ों का ध्यान जी असें जरूर रखना, क्योंकि गर्मी का मौसम आते ही जी जी दिनों छुट्टियां हुई आदियाँ या गर्मी का मौसम जी है हूँ तो माता पिता जी हैं सह बच्चों की एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटी तिना जो सिखाने जुटी आते हैं, कने ये एक्टिविटी बच्चों जो तिना दे पूरे साल की ख्वाहिश भी पूरी करता, कने तिना दे सौगी सौगी बड़ियां दी भी जिहड़ी एक सीखने की आँदी सह जरूर द्वारा जागी आँदी है। तो अपने बच्चों जो जी असें एक नई हॉबी बनाना, कने बड़िया वास्ते एक फिटनेस का फंडा हो जाता, क्योंकि स्विमिंग अपने आप ची पूरे शरीर की एक एक्सरसाइज होंगी, इस जो सीखने ते गर्मियों का मौसम सबसे बेहतरीन मनिया जाता, कने सारे ते खास गल है कि बचपन से सीखी हुई चीज़ा जी अंसे हाँ जो हमेशा हाँ दे सौगी रही, इसते सौगी सौगी जानना भी जरूरी आ कि देखा कितने सालाना डुबने की खबर जी अह सुनते हैं, तो अगर तुम जो तैराकी आँदी होगी तो तुहे जी ऐसे अपने आप जो अगर तुम पानी से जाते भी हैं तो डुबने तो रोकी सकते हैं बचाई सकते हैं, कने देखा बच्चों जो तैराकी सिखाने से पहले कुछ

जी इसे समझना बड़ा जरूरी है तिस्ते ताकि बच्चे जन से बीमार नहीं होना। सारे ते पहले देखा तो है डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी, क्योंकि अजकल का जोड़ा दौर है ना सह जोखिम भरा है, कनिश्च रिस्क लेना थोड़ा जहा कठिन हो जाता है। तो बच्चे का वजन तिसदा सेहत भले ही बिल्कुल ठीक हो, मगर फिर भी तो ये डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी, क्योंकि तैराकी के दौरान सांस लेने पर ध्यान देना होंगे। कने कई बार बच्चों जो सांस लेने च दिक्कत आती, सांस जो रोकना छोड़ना थोड़ा जहा मुश्किल होंगे, तो आ जरूरी है कि इसकी तुहे अपने डॉक्टर से सलाह जी इसे जरूर करनी है। दूजा देखा स्विमिंग किट जरूर लेनी, अगर तुहे तैराकी वास्ते अपने बच्चे जो तैयार करा दे तेना जो सिखाना चाहते तो स्विमिंग किट होना तुहांगे बहुत जरूरी आ। इस किट च तुहां जो स्विमिंग ड्रेस कैप चश्मा नोज़ ईयर प्लग जरूरी है। कई बार बच्चे जी हैं सह बिना स्विमिंग ड्रेस या कैप के पूल च चली आते, तो इड़ा खुद भी नहीं करना कने बच्चों जो भी नहीं करना देना, क्योंकि सामान्य कपड़िया च कई बार जम लगी आते, डिटर्जेंट कने बैक्टीरिया जी हैं सह रही आते, तो स्विमिंग पूल च पानी जो गंदा सह कर दे तो जो इसते थोड़ी त्वचा संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो जरूर ध्यान रखना कि अगर तुम अपने बच्चों जो तैराकी सिखाना चाहते हैं तो स्विमिंग किट तिना वास्ते सारे ते पहले जरूर लेनी है। दूजा देखा पानी की सफाई की जानकारी जी ऐसा भी जरूर लेनी, क्योंकि अजकल जरा स्पोर्ट्स क्लब च अलावा सोसाइटियों च भी लोग स्विमिंग टीचर जो बुलाई करने बच्चों जो तैराकी सिखाते, तो एड़े च स्पोर्ट्स क्लब च जाई करने पूल की सफाई कराना, क्लोरीन की मात्रा का जरूर पता करना, सोसाइटी की कमेटी ते पूल की साफ सफाई कने कीटाणु रहित होने की जानकारी जी सर तो हाँ जरूर हासिल करनी है। स्विमिंग की क्लास 15 से 20 दिनों तक चलती, कने एड़े च तो हाँ गर्मी की छुट्टियां वास्ते कोई बीच या झील पर जा दे तो बच्चों जो तिथि तैरने की अनुमति जी असर नहीं देनी है, क्योंकि समुद्रां दी जिहड़ी लहरां स नदी का बहाव स्विमिंग पूल ते कहीं ज़्यादा अलग हुंदा, तां इसते जे असें सावधानी जरूर बरतनी कने एड़े च अपने बच्चे का ध्यान भी असें भी जरूर रखना ही आ। देखा कुछ गल्लां होंदियां असें बड़े कम्मे दी होंदियां, जियां पूल पर जाने ते पहले ते बच्चन जो स्विमिंग ड्रेस बनाना, पूल ड्रेसिंग च शावर लेने जो बोलना, तैराकी च जाने ते पहले तुहें पूरे शरीर पर नारियल तेल जरूर लगाना ताकि क्लोरीन का असर जैसा है घट हो। पानी च रहने के बावजूद डिहाइड्रेशन जी तो भी हो जाती, तो बच्चों जो बोलना कि तैराकी दौरान सह पानी जी तेना जरूर पीना जी या तेना जो निकलते जी पानी साफ पानी जी तेना जो जरूर पी लाना या बालों जो बंदी करने रखना, लड़कियों के बालों से अच्छी तरह से तेल मालिश करना कने दिनों के बाल जिनसे भी बंदी देने हैं, खुले बालों से पूल च नहीं जाने देना, ये पूल के पानी जो और भी गंदा करते हैं। कने देखा अपने बच्चे जो कैप जरूर लगाना ताकि क्लोरीन का पानी जी ऐसे बालों जो कमजोर नहीं करे, कने सौगी सौगी पूल की सफाई का ध्यान भी जरूर रखना है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तिना जो पता नहीं हों, लेकिन तिना सौगी सौगी तिना का ध्यान रखना सह तो हाँ जो ही रखना पौना ही आ। तो देखा गर्मी का मौसम आ कहना, अगर तुम्हारे तो बच्चे स्विमिंग सीखना चाहते तो तुम इन्ह सारे गलों का ध्यान जी असर रखी सकते कने अपने बच्चों जो जी असर स्विमिंग सिखाई सकते हैं। तो चलिए एक होर लोक गीत इतनी इंतजार करा दा तो सुनाई देंदे तो हाँ जो ही प्यारा जहा लोक गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी, इससे छोटे जे ब्रेक के बाद एक बारी तो हम फिर से स्वागत करते कार्यक्रम महिला जगत जे। कने देखा गर्मी का मौसम हो, कने ठंडी ठंडी आइसक्रीम हो, ता कीड़ा लगता देखा। आज हाँ तो जो दसनी बनाना बादाम कुल्लड़ कुल्फी, ता देखा इस वास्ते तो है 1.5 लीटर दूध ले लेना, 1 कप चीनी कने 150 ग्राम खोया ले लेना, या 1 बड़ा चम्मच तो है कॉर्नफ्लोर ले लेना, कने 1/2 कप बादाम बारीक कटे आया, कने 1/2 कट तो बादाम सजाने वास्ते ले सकते हैं। देखा सारे ते पहले तो हाँ दूध जो उबाली लेना, कने तीस जो ठंडा होने वास्ते रख देना, या जाली जी सह थोड़ा जहा ठंडा हो जाएगा तो दुध च तो हाँ कॉर्नफ्लोर घोली कने उबलते दुध च तीस जो पाई देना, कने तीस जो लगातार चलाते रहना जाले तक जो सह गाढ़ा नहीं हो जाए। जाली दुध अद्धा रही आना ता तो हाँ ते हाँ चीनी कने खोया जी ऐसे पाई देना, कने इस सारे मिश्रण जो तो हाँ अच्छी तरह मिलाई कने एक बार मिक्सी च इस जो चलाई देना, या जड़े जी बादाम होने तेना जो कटी कने इस च मिलाई देना, कने कुल्लड़ा च तो हाँ इस जो इस बैटर जो पाई देना, कने बादाम कने पिस्ते कने उपरा ते इसकी कोटिंग जी ऐसे करी देनी, कने इस जो जमने वास्ते थोड़ी फ्रीजर च जी ऐसे रखी देना, या तो देखा ठंडी ठंडी बादाम वाली कुल्फी जी थोड़ी तैयार हो जानी। कने अजकल गर्मी के मौसम च ये ठंडी ठंडी बादाम की कुल्फी अपने घर की बनाई हाँ जो मिली आँगी तो और हाँ जो क्या चाहता या तो देखा घर बैठे कने तो हाँ भी अपने बच्चों जो जल्दी स्कूल आँदे तो ये बादाम कुल्हड़ कुल्फी बनाई कने तेना जो खिलाई सकते हैं। तो देखा कार्यक्रम महिला जगत होने इतों ही खत्म हों, अपनी रेडियो हम सफर शिवाली जो इतों ही दिया इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

कार्यक्रम सैनिकों के लिए लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो हमसफर शिवाली। सैनिक भाइयों जय हिंद। और कार्यक्रम में हम सुनवाते हैं आपको ढेर सारे गीत और इन गीतों के साथ करते हैं आपका मनोरंजन। तो चलिए कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं AR रहमान की आवाज़ में। देखिए अगर देश के अंदर हम चैन से रह पाते हैं तो इसका कारण है सरहद पार हमारे तैनात हमारे वीर जवान, जो देश के दुश्मनों को देश के अंदर आने नहीं देते हैं, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते और ये सारे देश को अपना परिवार मानते हैं। परिवार के एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते इसकी रक्षा करते हैं और ऐसे में सलाम करते हैं हम उन वीर जवानों को जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और इस देश की रक्षा करते हैं।

दुनिया से आगे देश मेरा है ज्ञान में, गाई जाती है महिमा सारे जहान में। जो आंख उठाए दुश्मन की औकात कहां, सैनिक सरहद पर तैनात है हिंदुस्तान में। ए रहमान की आवाज में अभी हमने आपको ये गीत सुनवाया। कार्यक्रम सैनिकों के लिए इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से।

हरिहरन, उदित नारायण और मधुश्री की आवाजों में अभी हमने आपको गीत सुनवाया लकीर फिल्म से। आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप कार्यक्रम सुन रहे हैं सैनिकों के लिए।

0: हर्ट्ज पर। दिन के एक बजने को है, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
2: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। विविध भारती पर हमने सुरीला सफर की पोस्ट अब से 2 घंटे पहले ही जारी कर दी थी और उस पोस्ट में आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का टेक्स्ट जारी किया गया है। इस इबारत को पढ़कर आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज के गाने कौन कौन से हो सकते हैं। जब कमेंट बॉक्स देखा तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं जिसमें आप सभी ने लगाया है गानों का अंदाजा। एक बार मैं टेक्स्ट आपको पढ़कर सुना देता हूं। इतनी गर्मी पर गुलमोहर का देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, मन करता है इसे गले लगा लें। पर्वतों के पेड़ों को कभी गले लगाएं, कभी उनसे अपने जिया की पीर कहें। जब शाम हो तो निकलें बाहर किसी नदी किसी सागर के किनारे, पंछियों की चहक फूलों की महक महसूस करें, आसमान को निहारें। कभी कभी ऐसा भी तो करें, कितना खूबसूरत होगा तब जीवन। यह है आज की इबारत और इस इबारत में जैसे बहुत सारे अलग अलग शब्द अलग अलग गानों की तरफ इशारा कर रहे हैं, पर एक शब्द ऐसा है जो केवल एक ही गाने की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल गुलमोहर शब्द पर फिल्म उद्योग में कम से कम 2 गाने तो जरूरी तौर पर बने हैं, लेकिन एक गाना है जो आप सभी के जहन में आया, उसी से कार्यक्रम का आगाज करेंगे और इस गाने के बाद आप सभी के कमेंट्स शामिल करने की कोशिश करेंगे। फिर एक झलक गुलमोहर शब्द से दूसरे गाने की भी सुनाएंगे।

गुलजार साहब के बोल, गुल मुहर गर तुम्हारा नाम होता, क्या तो गाना है देवता फिल्म का। और अमूमन लोगों को गुलमोहर शब्द से यही एक गाना याद आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक और गाना है गुलमोहर शब्द से। पहले वो सुनवाते हैं, फिर आपके कमेंट्स की बातें।

ये आशा भोसले की आवाज नीरज के बोल, और ये जो गाना है ये बहुत ही कम चर्चित गाना है। फिल्म का नाम मैं आपको फिलहाल नहीं बताऊंगा। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं और वो कमेंट्स जो हैं अब आप तक पहुंचाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गुलमोहर शब्द के दूसरे गाने का इंतजार रहेगा क्योंकि हमें तो याद नहीं है, हमारे फिल्मी ज्ञान में वृद्धि होगी। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने आज का टेक्स्ट पढ़ के ये अंदाजा लगाया है कि कौन कौन से गाने हो सकते हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि गुलमोहर के लाल लाल फूल खिल गए, ये दूसरा गीत गुलमोहर शब्द पर आधारित है। ये किसी श्रोता के पिताजी ने उनको ये सजेशन दिया है। इसके अलावा कई श्रोता हैं जो अपनी बातें कह रहे हैं। जैसे एक श्रोता कहते हैं कि आज पंछी नदिया पवन के झोंके ये गाना जरूर सुनाई देगा। एक श्रोता लिखती हैं कि मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक नहीं दो गुलमोहर के पेड़ हैं, एक बगीचे में और एक सड़क के किनारे, सच मानो जैसे गले लगने के लिए तैयार हैं। आज सुबह देखा एक छोटा सा पंछी गुलमोहर पर अटखेलियां कर रहा था। जरा सोचिए कि गर्मी जैसे जैसे अपने शबाब पर होती है, दो ऐसे पौधे या पेड़ हैं जो ज्यादा ही खिल उठते हैं, एक तो गुलमोहर और दूसरा गुलाबी रंग का जो बोगनविलिया होता है। यूं लगता है जैसे कड़ी धूप का इन पर कोई असर नहीं है, मानो जिंदगी में हमें ये सबक सिखा रहे हो कि धूप कितनी भी तेज हो आपको अपनी चमक नहीं छोड़ना चाहिए, आपको अपनी मुस्कान नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ते हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये गाना आज के इस कार्यक्रम में आ सकता है। उसके अलावा मन क्यों बहका आधी रात को, ये भी आ सकता है। एक श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल लंबी सी रिसर्च कर डाली है, फूलों की महक ये जो जुमला था ये हमारे आज के टेक्स्ट में शामिल था। कई सारे गाने उन्होंने लिखे हैं, ए गुलबदन फूलों की महक, उसके अलावा इन्होंने फूलों के रंग से, और फिर और भी, अरे बाप रे इतने सारे गाने लिखे हैं। बहुत लंबा ये कमेंट है जिसमें फूलों पर पूरी जैसे रिसर्च कर दी गई है, सुंदर बात। इसके अलावा एक श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने शानदार तरीके से कुछ ऐसे गानों का जिक्र किया है जो आज के इस कार्यक्रम में बज सकते हैं, तो ये कमाल की बात है। और उसके अलावा अभी एक श्रोता लिखती है कि यूनुस जी गर्मी वाकई इतनी तेज हो गई है, इस समय हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं बड़ौदा से अजमेर की तरफ, कोच में तो एसी की ठंडक है लेकिन बाहर आग बरस रही है। ट्रेन जब साबरमती नदी के ऊपर से गुजर रही थी तो हमने देखा नदी लगभग सूखने की कगार पर पहुंच गई है। अहमदाबाद की शान साबरमती नदी इतनी ज्यादा सूख गई है पर किनारे पर पेड़ पौधे मुस्कुरा रहे हैं, गजब। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि आज का जो आपने पैराग्राफ पोस्ट किया है उसमें पेड़ पहाड़ नदी पंछी सागर फूलों की महक जैसे दिख रहे हैं, इन सब पर गाने सुनाई दे सकते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने जिया की पीर पर अपनी बात लिखी है। जाहिर है टेक्स्ट में जब जिया की पीर शब्द हो तो आप पूरी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो गाना कौन सा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये गाना सुनवाते हैं, साथ में ये सवाल कि फिल्म दस्तक के निर्देशक कौन थे, एक तो ये बात, और फिल्म दस्तक के लिए किस किस को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था।

गाना जब खत्म हो जाता है तो लगता है अरे ये तो खत्म हो गया। इतना दिल की गहराई तक पहुंचने वाला गाना, मदन मोहन जी की ये आवाज और इस गाने को ज्यादा ऊंचाई पर ले जाती है ये आवाज। एक श्रोता लिखते हैं कि दस्तक राजेंद्र सिंह बेदी ने निर्देशित की थी और ये उन्हीं के लिखे एक नाटक पर आधारित फिल्म थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1 मई को सुरीला सफर कार्यक्रम का पहला एपिसोड आपने किया था और अब आप इस कार्यक्रम में दूसरी बार आ रहे हैं। इसके अलावा

गुलमोहर शब्द का जो दूसरा गाना आपने सुनाया वो मैं पहली बार सुन रही हूँ। जी हाँ, बहुत ज़्यादा चर्चित गाना नहीं है। इसके अलावा सही उत्तर कई श्रोताओं ने दिए हैं, नेशनल अवार्ड वाले जो दस्तक फिल्म से जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि जिस भी शहर, जिस भी इलाके, जिस भी मोहल्ले में आप रहते हैं, किस किस के इलाके में गुलमोहर और उसके अलावा अमलतास इस समय बहुत खिल रहा है, बहुत ज्यादा खिल रहा है। अमलतास की झालरें कितनी खूबसूरत होती हैं। अगर कमेंट बॉक्स में आप फूल अमलतास की तस्वीर भी अगर आपके आसपास है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकें तो भी बड़ा अच्छा लगेगा। और गुलमोहर और अमलतास से आपको कितना लगाव है? इसके अलावा चंपा, इन तमाम फूलों पौधों के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और आपने अपने घर में, अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं या अगर आप ज़मीन पर आपका घर है, तो अपने बगीचे में कौन कौन से पौधे और फूल लगा रखे हैं, इसका भी जिक्र ज़रूर कीजिएगा। कुछ और कमेंट पढ़ते हैं। एक श्रोता है कि व्यस्त होने के कारण मैं देर से इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि आज गाने पर्वत, सागर, किनारा, गुलमोहर, नदी, पंछी जैसे शब्दों पर आएंगे। बिल्कुल सही है। एक श्रोता लिखते हैं कि गुलमोहर की टहनियों पे ख्वाब सा बिछ गया है, दिल हमारा आज फिर से इश्क में गिर गया है। और इसके अलावा एक श्रोता और हैं जो ये लिख रहे हैं कि गुलमोहर शब्द वाला जो गुलजार साहब का गाना है उसका अंदाज़ा तो लगभग सभी श्रोताओं ने लगा लिया था। और भी तमाम श्रोताओं के कमेंट्स हैं जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, क्योंकि अब हो गए हैं 1 बजकर तकरीबन 17 मिनट और विविध भारती पर गूंज रहा है ये गाना। तब तक आप बताइए कि आपने अपने घर में कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं और आपके गमलों में कौन से फूल खिल रहे हैं।

इतना इंटेंस गाना है कि दिल की गहराइयों में उतर जाता है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि आपने गुलमोहर और अमलतास की तस्वीर तो मंगा ली, लेकिन विविध भारती के फेसबुक पेज पर जो कमेंट हम करते हैं उसमें तस्वीर पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मैं इस बात से वाकिफ नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ तस्वीर पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं। कोई बात नहीं, अपने कोशिश की, आप सभी का धन्यवाद। एक श्रोता लिखती है कि हमारे घर में बोगनविलिया बहुत रंग के खिले हैं और इसके अलावा गुलाब के बहुत सारे फूल हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने तुलसी का पौधा लगा रखा है और उनका फेवरेट फूल गुलाब है। वो कहती हैं कि हमारे शहर में गुलमोहर नहीं दिखता, लेकिन यात्रा करते समय रास्ते में जब गुलमोहर दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक करते हुए मोहल्ले में गुलमोहर, अमलतास, पलाश और कचनार के बड़े बड़े पेड़ जब दिखते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि गुलमोहर और अमलतास के बहुत खूबसूरत पेड़ हमारे घर के आसपास हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने गुलाब, जूही, रात की रानी और शेवंती लगा रखा है। एक श्रोता हैं जिनका कहना है कि गर्मी होने पर भी इनके यहाँ गुड़हल और गुलाब में बहुत फूल आ रहे हैं। और इसके अलावा अमलतास के पेड़ बहुत सारे श्रोताओं के शहरों में और उनके मोहल्लों में हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि मेरे घर पर आसो पालव, जासूद, बारामासी, गिलोय, तुलसी और ग्रीन टी लगे हुए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ गुलमोहर बहुत ज़्यादा खिला हुआ है। एक और श्रोता छत्रपति संभाजी नगर से लिख रहे हैं कि हमारे शहर में बहुत गुलमोहर हैं। एक और श्रोता हैं जिनके आसपास गुलमोहर और अमलतास के बहुत सारे पेड़ हैं और अमलतास के पीले पीले फूल और गुलमोहर के लाल लाल फूल बहुत सुंदर दिख रहे हैं। एक और श्रोता है जो कहती है मेरा पूरा पटना शहर अमलतास, गुलमोहर के पेड़ों से भरा हुआ है और पार्क में चंपा भी खिले हुए हैं जिन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जिन्होंने मनी प्लांट लगा रखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त के घर में बहुत सारे गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे यहाँ सड़क के दोनों तरफ अमलतास के वृक्ष लगे हैं और इनके पत्ते इस ऋतु में झड़ जाते हैं और उसके पीले वृक्षों से पीले फूलों से वृक्ष सज जाता है, बड़ा ही सुंदर दिखता है। कितने श्रोताओं ने गुलमोहर, अमलतास, सेवंती, चंपा, इन तमाम फूलों की बातें लिखी हैं। ये फूल कितने दिल के हमारे करीब होते हैं। अब आगे एक गाना आएगा जो फौरन नहीं आएगा, बल्कि इसके बाद दूसरे या तीसरे नंबर पर हम जो गाना बजाएंगे उसमें नदी की बात करेंगे। आपके आसपास कौन सी नदी है और उस नदी के किनारे कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है? किस नदी के किनारे वक्त बिताना आपको बहुत ज्यादा पसंद है, ये बात लिखिएगा। शगुन फिल्म की हीरोइन कौन थी ये भी बता सकते हैं आप।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। भाई सृजन भारती के इस आयोजन के बारे में हमने आपको सूचना दी। मुंबई के जो श्रोता हैं वो जरूर आएं कल शाम 6:00। एक बेहतरीन आयोजन और विविध भारती के सभी साथियों से मिलने का और सेल्फी लेने का मौका तो होगा ही होगा इस आयोजन में। तो जो मुंबई और आसपास के श्रोता हैं अगर संभव है आपके लिए तो जरूर आइएगा। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ गए। मैं तो नर्मदा जी के किनारे महेश्वर घाट पर समय बिताना चाहूंगी देवी अहिल्या की राजधानी में। ये एक श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता राजस्थान से हैं, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतनी भीषण गर्मी में भी जो पेड़ हरा सघन छोटी पत्तियों से आच्छादित रहता है और मरुभूमि के सभी जीव जंतुओं को घनी छाया और भोजन देता है, इसकी फलियों से सुप्रसिद्ध और स्वादिष्ट सांगरी की सब्जी बनाई जाती है, वो है खेजड़ी, संस्कृत में से शमी वृक्ष कहते हैं। एक श्रोता है जो कहते हैं गोमती माँ बहती है हमारे शहर में और रिवर फ्रंट पर बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो बनारस के हैं और 80 घाट के किनारे बैठकर गंगा नदी की लहरों को देखना बड़ा सुकून देह होता है। शगुन फिल्म की जो हीरोइन है उनके बारे में हमारे श्रोताओं ने लिख दिया है भाई कि वो वहीदा रहमान हैं। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखती हैं कि फ्लैट में रहती हूँ और सोसाइटी में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, लोगों की बालकनी में भी बहुत सारे पौधे हैं, मैंने बहुत से अपने फ्लैट में गमले में पौधे लगाने की कोशिश की है। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो सूरत से हैं और कहते हैं कि तापी नदी है लेकिन अफसोस है कि उस नदी में थोड़ी गंदगी हो गई है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि अहिल्या नगर में रहते हैं और यहाँ बहुत गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता के शहर के पास गक्कर नदी बहती है। एक श्रोता ऐसी हैं जो गंगा नदी के किनारे रहती हैं और मायके गई तो सोन नदी के किनारे और पटना शहर में गंगा नदी के किनारे घूमना बड़ा सुखद होता है, ये कह रही हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं नागपुर में रहता हूं और कन्हान नदी चूंकि 15 किलोमीटर दूर है इसलिए बहुत दूर लगती है और वहां जाना मुश्किल होता है। एक श्रोता ऐसे हैं जिनकी घर से 100 मीटर की दूरी पर महानदी है और बैराज से शाम का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। एक और श्रोता हैं माधुमालती गुड़हल और बारामसी के पेड़ इन्होंने लगा रखे हैं। एक श्रोता ऐसे हैं जो कहते हैं कि अमलतास का पेड़ उनके घर के सामने वाले गार्डन में है और चाहे कितनी भी धूप हो इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो बहुत ही ठंडी हवा मिलती है और राहगीर अक्सर इस पेड़ के नीचे गर्मी से राह पाने के लिए निजात पा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि गुलमोहर को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है और शानदार है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और बहुत इतने कमेंट्स हैं कि मुझे लग रहा है कि ये सारे कमेंट्स पढ़ने में तो बहुत देर लग जाएगी। बात नदी के गाने की हो रही थी, कितने सारे श्रोताओं ने नदी के गानों की बात की, तो मैंने सोचा कि एक मोंटाज कर लेते हैं।

लेकिन लेकिन नदी का ये गाना भी क्या है, प्यारा है। और नदी के गानों का सरताज ये भी तो है, लेकिन इन तमाम गानों के बावजूद आज इस कार्यक्रम के लिए मैंने चुना है ये गाना जो नदी के किनारे की बात करता है। किसी नदी के किनारे सबसे यादगार पिकनिक आपका कौन सा था ये जरूर बताइएगा, हमें पढ़कर अच्छा लगेगा और कमेंट शामिल किया जाएगा।

0: प्यार कर ये समा मिलेगा फिर न दोबारा, ये हवा ये नदी का किनारा।
1: क्या शानदार गाना है, नदी के किनारे पिकनिक की जो यादें हैं उसे ताज़ा कर देता है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और कोशिश के सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल किए जाएं। एक श्रोता लिखती हैं कि जीवन कभी बहुत धीरे धीरे अपने उत्साह वापस ले लेता है, तब उन धीमे दिनों में चटकती गर्मी में गुलमोहर को देखना और ऊँचे पहाड़ों को भी, और एक कदम बढ़ाकर उनको गले लगाकर अपने जिया की पीर कह देना, ये पर्वत ये पहाड़ ये पेड़ आपका सारा दर्द सोख लेंगे, कभी ये करें तो जीवन महक उठेगा। शानदार बात आपने लिखी है। बस यही तो आज हमारे इस कार्यक्रम के लिए टेक्स्ट पोस्ट करने का मकसद था, कुदरत से जुड़ें और उसके साथ अपने दुख दर्द साझा करें। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि डबरा के पास धूमेश्वर महादेव का मंदिर, सिंध नदी अपने रौद्र रूप में थी, हम लोग गए थे पिकनिक पर, बेटा बैठा था, अचानक पानी बढ़ गया, तब पुलिस ने एकदम अलर्ट किया और हम लोग एकदम हड़बड़ा के वहां से भागे थे। एक और श्रोता लिखती हैं कि इतनी भीषण गर्मी में नदी के गानों का जो मोंटाज आपने प्रस्तुत किया उससे बहुत ही ठंडक महसूस हुई, शुक्रिया आपका, मकसद यही था। हरिद्वार और वाराणसी में गंगा नदी के किनारे वक्त गुजारने का मौका मिला था, बड़ा सुकून मिला था, ये एक श्रोता की बात है। एक और श्रोता है जो अमर प्रेम फिल्म के गाने को याद कर रहे हैं। एक श्रोता ऐसे हैं जो गुड़हल के बारे में अपनी बातें लिख रहे हैं कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है और इसके तमाम तरह के फ़ायदे के बारे में उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि नागपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर पींच नदी है, वहाँ हम पिकनिक मनाने गए थे, खाना पकाया था और बहुत मौज मस्ती की थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि बहुत ही यादगार पिकनिक हमने ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर मनाई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रही हैं कि अभी थोड़े दिन पहले अयोध्या में सरयू नदी के किनारे, बनारस में गंगा और प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे जाने का मौका मिला था, बहुत अच्छा लगा। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आपका अंदाज निराला है, बहुत ही प्यारा मोंटाज और नदी शब्द पर आपने एक साथ 5 गाने सुनाए, कितना अच्छा लगा, शायद ऐसा पहली बार हुआ है। एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि हमारे विशाखापट्टनम में नदी तो नहीं है लेकिन सागर का किनारा है, जहाँ जाकर अच्छा लगता है। आप में से कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जिन्हें समंदर का किनारा बहुत पसंद है? अगर समंदर नहीं देखा तो वो भी बताइए। कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो जिंदगी में अभी समंदर देखने का इंतजार कर रहे हैं? कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो समंदर के किनारे जा चुके हैं या रहते हैं?

0: बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंबई में जुहू बीच और अक्सा बीच बहुत बार देखने का मौका मिला है और चेन्नई में मरीना बीच भी देखा है और लहरों के बीच जाकर आनंद लिया है। एक और श्रोता है जिन्होंने मुंबई में जुहू चौपाटी कई बार देखी है और शाम के समय डूबते सूरज को देखना दिल खुश कर देता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने पुरी, गोपालपुर, चांदीपुर और पारादीप के समुद्र तट देखे हैं और बंगाल की खाड़ी के पास के इलाके में वो रहते हैं। एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है कि मुंबई, पणजी, रामेश्वरम और कन्याकुमारी, इन तमाम जगहों पर जाकर देखा है समुंदर का किनारा। एक और श्रोता कहते हैं कि 2003 के आसपास वो मुंबई में रहते थे और जुहू और हाजी अली के किनारों पर जाने का मौका उन्हें मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए कई राज्य हैं और कुछ इलाका अरब सागर से जुड़ा है, कुछ हिंद महासागर से जुड़ा हुआ इलाका भी है। फूलों के बारे में भी लगातार कमेंट आ रहे हैं। लाल गुलमोहर के अलावा जामुनी रंग के गुलमोहर, जिसे जकरांडा एवं नीला गुलमोहर कहते हैं, वसंत ऋतु में मार्च अप्रैल के महीने में इस पेड़ में बहुत फूल आते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती के मेलघाट में तो बहुत ही आकर्षक गुलमोहर होते हैं। एक श्रोता है जो कहते हैं कि कन्हान नदी हमारे शहर के पास बहती है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो भोपाल के हैं, चारों तरफ तालाब, जंगल और पहाड़ हैं, गुलमोहर के गोल्डन शावर की बहार है। और दिल्ली के एक श्रोता कहते हैं कि यमुना नदी है तो सही, लेकिन प्रयागराज जाते हैं और संगम में स्नान करते हैं। एक और श्रोता भेड़ाघाट को याद कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से आप नदियों को, सागर को, सबको याद कर रहे हैं। और अब चूंकि टेक्स्ट में हमने बहुत अलग अलग तरह के गानों का जिक्र किया था, तो अब ये गाना,
1: ओ अपने,
0: इस गायिका का नाम बताइए, ये कौन है।

मुबारक बेगम की आवाज सभी श्रोताओं ने पहचान ली। एक श्रोता का बड़ा प्यारा कमेंट आया है जिन्होंने लिखा है कि उन्होंने जिंदगी में अभी तक समंदर नहीं देखा और उन्हें समंदर देखने का इंतजार है। इसके अलावा कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने समंदर देखा। जरा सोचिए कि ये पेड़ पौधे, ये नदियाँ, ये समंदर, ये खाड़ियाँ, ये गुलमोहर, ये अमलतास, ये तमाम फूल पौधे नहीं होते, कुदरत के ये नज़ारे नहीं होते तो ये दुनिया कितनी सूनी होती और हम कितने उदास होते। और अब जगजीत सिंह की आवाज में ये गाना बज रहा है, इसे लिखा किसने है ये बताइएगा। और साथ में ये भी बताइए कि अब तक इस कार्यक्रम में जो भी गाने बजे उसमें सबसे सबसे सबसे ज्यादा प्रिय गाना आपका कौन सा था।

अर्थ फिल्म का ये गीत कैफी आसमी का लिखा हुआ था। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया। कई ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी के सारे सुख दुख ईश्वर से साझा करते हैं। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो विविध भारती से अपने सुख दुख साझा करते हैं। कुछ श्रोता अपनी शरीक की हयात से अपने सुख दुख साझा करते हैं। एक श्रोता ऐसी हैं जिन्होंने लिखा कि बहनें होती हैं जिससे अपना सारा सुख दुख बांटा जा सकता है। बहुत ही कमाल के जवाब आप सभी ने दिए हैं। सुख दुख बांटने के लिए कभी विविध भारती, कभी बहन, कभी परिवार, सुंदर बात। और इसके अलावा नदी और समुद्र से जुड़ी आपकी यादों की तो इतनी बौछार है कि स्टूडियो में एक अलग ही ठंडक महसूस हो रही है।

बहुत ही प्यारा और बहुत पसंदीदा गाना इस वक्त आ रहा है। इस फिल्म की हीरोइन कौन थी ये बताइएगा।

आपको पता है विविध भारती का जो कंपाउंड है वहाँ सबसे ज्यादा आते हैं पैराकीट्स यानी तोते। आपके इलाके में कौन से पंछी ज्यादा नजर आते हैं?

क्या बात है, इतना सुंदर ये पंछी का गाना, बंदिनी फिल्म का गीत, और इस फिल्म में नूतन ने क्या गजब अभिनय किया था। इतने सारे श्रोताओं के समंदर और नदी पर कमेंट आ रहे हैं कि आज मुझे अलग से बैठकर ये सारे कमेंट्स पढ़ने होंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि उड़ीसा में जो कटक शहर है, दो नदियों के बीच बसा है, महानदी, और महानदी से एक शाखा निकलती है जिसे काठजोड़ी नदी कहते हैं। इन दोनों नदियों के बीच में कटक बसा है। शहर के चारों तरफ पुल हैं और कटक को पानी का शहर भी कहा जाता है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स, सोमनाथ, मुंबई, गोवा, तिरुवनंतपुरम, रामेश्वरम, विशाखापट्टनम और बंगाल का समुद्र देखा। कितने सौभाग्यशाली हैं हमारे ये श्रोता कि उन्होंने चारों तरफ जो भारत में समुद्र हैं वो सभी देख रखे हैं। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि विविध भारती परिवार है और हम अपना सुख दुख यहीं से साझा करते हैं। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो कहती हैं मैं अपने पति से, एक श्रोता हैं जो अपने बेटियों से अपने सुख दुख साझा करती हैं। बहुत शुक्रिया इन तमाम बातों के लिए। और इतनी सारी बातें हुई फूलों की, पंछियों की। मैंने बताया कि विविध भारती के कंपाउंड में बहुत सारे तोते आते हैं। आपके आसपास, आपके घर, आपकी खिड़कियों पर कौन से पंछी आते हैं ज़रूर बताइए। और अब आ रहा है फूलों का गाना, वो गाना जिससे सभी को बहुत प्यार है, पर आपको ये बताना है कि आपको किस फूल से सबसे ज्यादा प्यार है। किसी एक फूल का नाम लो।

कितनी सुंदर बात है, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की। कितने सारे श्रोता हैं जिन्होंने अपने पसंदीदा फूलों के नाम लिए हैं। किसी को गुलाब पसंद है, किसी को हरसिंगार बहुत पसंद आते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हरसिंगार के फूल जब झड़ते हैं तो लगता है मानो जमीन पर तारे निकल आए हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर के आसपास गोरैया बहुत नजर आती है, और इसके अलावा बहुत सारे तोते और चिड़ियाएं आती हैं, कबूतर बहुत ज़्यादा आते हैं, आजकल हम दाना पानी रखते हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि एक बहुत छोटी सी प्यारी सी चिड़िया इनके घर में बहुत बार आती है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि तोते, काबर, कोयल, कबूतर और कुछ अज्ञात पंछी नज़र आते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रही हैं कि इतने सारे पंछी नज़र आते हैं, सबको नाम से नहीं जानती पर मैना को पहचानती हूँ। सभी श्रोताओं ने बहुत सारे अलग अलग पंछियों के नाम लिए हैं। और अब चूंकि कार्यक्रम से जाने का वक्त आ गया है, लेकिन एक गाने का सुराग मैंने अपनी आज की इबारत में रख छोड़ा था, वो आज का आखिरी गाना है। आज का सुरीला सफर कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।

0: दोस्तों, ये आज का सुरीला सफर कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम आज हमने कुदरत और अपने दिल की बहुत प्यारी और नाजुक बातों से सजाया था। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। चलते चलते एक दरखास्त है। जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2 बजने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज। 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद

0: केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास डीआरडीओ की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से

0: किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
2: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है, और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य है अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
4: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज पेइचिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से पेइचिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। DRDO ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर दोपहर 3 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
6: फिल्म के गाने के साथ बोल हैं हसरत जयपुरी के और तर्ज शंकर जयकिशन की।

0: हमारी अगली पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीतकार हैं एस एच बिहारी और संगीतकार हैं ओ पी नैयर, फिल्म का नाम कश्मीर की कली।
1: यूं से

अगला गाना हमने लिया है वक्त फिल्म से। इसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं रवि।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली तनिया,
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत,
5: तुम्हारी याद सताती है,
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में भावी फिल्म का गाना। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए शकील बदायनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज़ है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम कोहिनूर।

अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश की आवाज़ में कटी पतंग फिल्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आरडी बर्मन। श्रोताओं, आप सुनिए ये गीत और अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3 बजने को है। आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 1 जून से शुरू हो रहा है, जो 15 जुलाई तक चलेगा। पहली से 15 जून तक लोग स्वगणना के जरिए ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी भर सकेंगे। जनगणना के सफल कार्यान्वयन को लेकर आज जनगणना कार्यालय निदेशालय शिमला में एक बैठक हुई, जिसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन, सीबीसी और पत्र सूचना ब्यूरो के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान जनगणना को लेकर लोगों को जागरूक करने को लेकर रणनीति बनाई गई। जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक दीप शिखा शर्मा ने बताया कि 16 जून से 15 जुलाई तक मकानों की गणना और सूचीकरण कार्य किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से जनगणना कार्य में सहयोग की अपील की है।
1: हिमाचल प्रदेश में जो जनगणना 2027 उसका प्रथम चरण जो कि मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण है, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर कंडक्ट हो रहा है। और इस बार हमारा जो सेंसस है वो डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए जनगणना में स्वगणना का जो प्रावधान है उसे भी रखा गया है। जो हमारे हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं वो स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी 1 जून से 15 जून के भीतर उसको दर्ज कर सकते हैं। प्लीज आप स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करें। जनगणना की जानकारी जो है वो कॉन्फिडेंशियल है। यदि कोई स्वगणना के विकल्प को भी नहीं चुनता है तो भी जो हमारा प्रगणक है वो हर जगह जाएगा, हर कोने में जाएगा, प्रदेश के हर एक घर को जो है वो कवर किया जाएगा।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की महत्वाकांक्षी पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शुरू किए गए युवा संगम कार्यक्रम के तहत हिमाचल और पुडुचेरी के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान की एक अनूठी पहल चलाई जा रही है। इसी सिलसिले में एनआईटी पुडुचेरी के 48 छात्रों और फैकल्टी समन्वयकों का एक दल केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला पहुंचा है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से देश की एकता व अखंडता को मजबूती मिलेगी और इसके माध्यम से युवाओं को देश के सभी राज्यों की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिल रहा है।
2: मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम रहते हैं वो देश की एकता और अखंडता को उसको मजबूत बनाते हैं। पुडुचेरी से जो छात्र आए हैं एनआईटी के माध्यम से, वो इस कार्यक्रम के दौरान पूरे हिमाचल को जानेंगे, यहाँ की सभ्यता संस्कृति, यहाँ का जो देवत्व है उसको अभी जानेंगे। प्रधानमंत्री जी की ये जो पहल है ये निश्चय ही भारत को मजबूत करने में एक नया मील पत्थर साबित है। विविधता में एकता, ये भारत की खूबसूरती है। उसी के आधार पर भारत हजारों वर्षों से दुनिया में एक अलग तरह से है।
0: सांसद सुरेश कश्यप ने डीएपी और एनपीके खाद पर दी जा रही 50 रुपए प्रति बोरी सब्सिडी बंद करने पर राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के इस निर्णय से एक बार फिर साबित हो गया है कि उसे किसानों, बागवानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कोई चिंता नहीं है। सुरेश कश्यप ने इस कदम को किसानों के साथ विश्वासघात करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 9 लाख से अधिक किसान परिवार खेती व बागवानी से जुड़े हैं और खाद पर सब्सिडी बंद करने से उन पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। सुरेश कश्यप ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और वित्तीय कुप्रबंधन और गलत नीतियों के कारण सरकार प्रदेश को भारी कर्ज में धकेल चुकी है। ई फार्मेसी के विरोध में दवा विक्रेताओं के राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान का आज प्रदेश में भी असर देखने को मिला। सोलन जिले की लगभग 1500 दवा दुकानें आज पूरी तरह बंद रहीं। दवा व्यापारियों ने सरकार से ऑनलाइन दवा की खरीद पर रोक लगाने की मांग की है। सोलन जिला केमिस्ट एसोसिएशन के सह सचिव विपुल शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन दवा खरीद से दवा व्यापारियों का व्यापार खत्म हो रहा है और लोगों को नकली दवाएं ही मिल रही हैं। इस दौरान एसोसिएशन ने उपायुक्त के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा।
3: हमारे इस बंद में सभी प्रकार की दवाई की दुकानें, सभी प्रकार की होलसेल की एजेंसियां सभी आज पूर्ण रूप से बंद है। हमारी स्ट्राइक 19 तारीख रात 12 बजे से 20 तारीख रात 12 बजे तक जारी रहेगी। ई फार्मेसी जो है वो ऑनलाइन दवाइयों का जो व्यापार है उसके विरोध में हमने काफी टाइम से सरकार से हमारी बातचीत चल रही थी, मगर वो कोई अभी तक संज्ञान नहीं निकला। और दूसरा हमारा है जो हमारी स्पूरियस मेडिसिन भी ऑनलाइन फार्मेसी से आती है, नकली दवाएं जो ऑनलाइन में मिलती है उसका भी विरोध हम करते हैं।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। आज का विषय है बांध पुनर्वास, नीति और प्रौद्योगिकी के जरिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का है। भारत के बांध, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति और समग्र जल सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दशकों से बांधों ने देश भर में कृषि विकास, औद्योगिक विकास और सामाजिक आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे जैसे बड़ी संख्या में बांध पुराने पड़ जाते हैं और जलवायु परिवर्तनशीलता बढ़ती है, उनके पुनर्वास, परिचालन, सुरक्षा और दीर्घकालिक सुदृढ़ता का मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत सरकार संरचनात्मक पुनर्वास, संस्थागत सुधारों, डिजिटल निगरानी प्रणालियों और जोखिम आधारित सुरक्षा प्रबंधन के संयोजन के माध्यम से इस मुद्दे पर काम करती है। भारत आज विश्व स्तर पर सबसे बड़े बांध श्रेणियों में से एक का प्रबंधन करता है। ये 6628 निर्दिष्ट बांधों के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर है, जिनमें से 6545 चालू हैं और 83 बांध निर्माणाधीन हैं। इन बांधों की सकल जल भंडारण क्षमता लगभग 330 अरब क्यूबिक मीटर है। वे राष्ट्रीय खाद्य ऊर्जा और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन बांधों में से लगभग 26% 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं। इसमें 291 वैसे बांध शामिल हैं जो 100 साल से भी अधिक पुराने हैं। लगभग 42% बांध 25 से 50 वर्ष पुराने हैं। भारत का सबसे पुराना बांध तमिलनाडु में कलनई लगभग 2000 वर्षों से काम कर रहा है, जो स्थायी इंजीनियरिंग और रखरखाव का मिसाल है। इनमें से लगभग 98.5% यानी 6448 बांध हैं जो राज्य सरकारों के स्वामित्व में हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 49 बांध या 0.7% हैं। निजी संस्थाओं के पास 0.6% या 36 बांध हैं और केंद्र सरकार के पास 0.2% या 12 बांध हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक निर्दिष्ट बांध हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और ओडिशा का स्थान आता है। पुराने बुनियादी ढांचे, अवसादन, बदलते हाइड्रोलॉजिकल पैटर्न और बढ़ती जलवायु परिवर्तनशीलता को देखते हुए व्यवस्थित पुनर्वास और सुरक्षा प्रबंधन की आवश्यकता है। भारत में 439 जलाशयों के विश्लेषण से पता चलता है कि औसतन 42 वर्ष पुराने जलाशय के साथ सकल भंडारण क्षमता का औसतन 19% नुकसान होता है। भंडारण की औसत वार्षिक हानि 0.74% अनुमानित है, जो प्रतिवर्ष लगभग 1.81 MCM प्रति जलाशय के बराबर है। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना जैसी प्रमुख पहल को संरचनात्मक मरम्मत, स्पिलवे और गेटों के आधुनिकीकरण और उन्नत निगरानी प्रणालियों की स्थापना के माध्यम से मौजूदा बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार करने के लिए 3 चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है। DRIP विश्व स्तर पर सबसे बड़े बांध पुनर्वास कार्यक्रमों में से एक है, जो बांध सुरक्षा प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित और जोखिम आधारित दृष्टिकोण की ओर भारत के बदलाव को दर्शाता है। बांध पुनर्वास व सुधार कार्यक्रम चरण एक को विश्व बैंक की मदद से अप्रैल 2012 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में 7 राज्यों, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड के 223 बांधों को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम ने इसमें शामिल राज्यों और एजेंसियों में बांध सुरक्षा प्रथाओं और संस्थागत क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें 144 बांधों के पुनर्वास कार्यों के साथ 223 बांधों के लिए बाढ़ की समीक्षा की डिजाइन, बांध स्वास्थ्य निरीक्षण और पुनर्वास प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया और 223 बांधों के लिए इसका कार्यान्वयन पूरा किया गया है। ये कार्यक्रम केंद्रित था जिसमें बांध संरचनाओं का पुनर्वास और आधुनिकीकरण, बांध सुरक्षा निरीक्षण और मूल्यांकन, आपातकालीन कार्य योजनाओं का विकास, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम, बांध स्वास्थ्य और पुनर्वास निगरानी अनुप्रयोग का परिचय शामिल है। बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम चरण 2 और 3 अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ। सामयिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम,
5: जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे लिए मधुमक्खियां।
6: बिल्कुल।
5: और हम बात करेंगे,
6: पर काटती बहुत बुरा है।
5: अरे काट चुकी है मुझे, इसलिए मुझे पूरा उसका एहसास है, पूरा एक्सपीरियंस है उसका। और हम बात करेंगे भाषाओं से किस तरह से जुड़ा हुआ है संस्कार।
6: अच्छा,
5: तो इसके बारे में तो चर्चा करेंगे, साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो जितने भी श्रोता है वो सब अपने अपने विचार, अपने अपने जो भी वो सोचते हैं उसके बारे में वो लिख के भेजा, ये बताएं कि वो उनको कितनी भाषाएं आती हैं बोलनी।
6: अच्छा ठीक है, यानी शब्द हमारा विचार आपके जो आप सेगमेंट लाई हैं
5: उसके अंदर हम बात करेंगे सद्भावना।
6: सद्भावना, अच्छा भाषाओं से जुड़े संस्कार में आप बताना चाहती हैं कि भी अपनी अपनी भाषाओं के बारे में हमारे श्रोता हमसे बात करें कि वो किस भाषा को जानते हैं या कितनी भाषाओं के ज्ञाता हैं। तो फटाफट लिखिए, हमारे सखा और सखियों से हम अनुरोध करते हैं कि जो भाषाओं से जुड़ा संस्कार है इस पर लिखने के साथ साथ ये भी बताइए आपने अब तक कितनी भाषाएं सीखी हैं।
5: जी बिल्कुल,
6: है ना।
5: और हम बात करेंगे आज साड़ियों का संसार, जो साड़ियों का जो विषय है उसमें हम आज हम लेकर आए हैं तनचोई साड़ी।
6: क्या बात है, क्या बात है। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप मेरे लिए तनचोई साड़ी लेकर आई हैं।
5: साड़ी तो मैं खैर नहीं लेकर आ पाई हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सारी मिठाइयां मैं लेकर आई हूँ।
6: बिल्कुल, वो हमें मिल भी गए हैं, है ना जी। और शब्द हमारा विचार आपके में आज सद्भावना पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सद्भावना कहने को एक बहुत सामान्य शब्द लगता है, सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन इसके गहरे अर्थ है। बहुत गहराई में जाकर आप इस पर अपने विचार लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके भीतर कितनी सद्भावना है दूसरों के प्रति, है ना। हम लिख तो देते हैं आरती बड़ी बड़ी बातें कि सद्भावना होनी चाहिए, बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन जब हमारा मौका मिलता है तो पता चलता है कि हमारे अंदर तो सद्भावना है ही नहीं, वो भावना ही नहीं।
5: अपने विचार लिखे, जो चीजें लिखी हुई पहले से उसमें
6: उस पर मत जाइए कि सद्भावना के विषय में क्या लिखा गया, ये बताइएगा कि आप सद्भावना को लेकर क्या सोचते हैं, आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में कितनी सद्भावना है, या सामने जो आपके लोग आते हैं उनसे आपको क्या सद्भावना रूपी विचार मिलते हैं।
5: बिल्कुल, तो हम बात एक चीज और भूल रहे हैं,
6: व्यंजन, आपका बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट
5: जो मुझे बहुत पसंद है। आज हम बात करेंगे ठेकुआ की और दाल पीठा की। दाल पीठा मेरा इतना फेवरेट है ना, मैं बनाती भी हूँ, मैं खाती भी हूँ बहुत।
6: चलिए, तो अगली बार जब आप आएंगी तो लेकर भी आएंगी दाल पीठा, हमें खिलाएंगी भी, ठीक है। तो भाई, हम बात कर रहे थे विश्व मधुमक्खी दिवस की, जिसका हमें डर भी लगता है जब मधुमक्खी पास में छत्ता बना लेती है हमारे घर के आजू बाजू में कहीं, तो हम बड़े डर जाते हैं। एक आध मधुमक्खी उड़ती हुई नजर आती है तो बड़ा डर लगता है कि कब काट खाएगी।
5: अरे भगाओ भगाओ जल्दी।
6: लेकिन देखिए, कितनी बड़ी बात है कि ये दुनिया में अगर मधुमक्खी नहीं रही तो दुनिया के लोग सिर्फ 4 साल तक जीवित रह सकते हैं, और अनाज होगा कि नहीं इस पर काफी मतलब शोध भी किए गए हैं।
5: बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है अपने हमारे इकोसिस्टम, इस जो हमारे सिस्टम है पूरा पृथ्वी का, उसको चलाने के लिए।
6: बिल्कुल।
5: और हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस और मधुमक्खियों के बारे में खास बातें कुछ बता रहे हैं वो, कि दुनिया की 1/3 खाद्य फसलें पूरी तरह से मधुमक्खियों जैसे पराग जो परागणकों पर निर्भर है, यानी कि वो जो मधुमक्खियां हैं वो उसको पराग को जब लेती हैं और बिखेरती हैं उस पर ही निर्भर करता है।
6: बिल्कुल।
5: यदि ये ना हो तो हमारे भोजन की प्लेट से अधिकांश फल सब्जियां और मेवे गायब हो जाएंगे। मधुमक्खियां आपस में बात करने या भोजन के स्रोत का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का वेगल डांस यानी कि नृत्य करती हैं। 1 पाउंड लगभग 1/2 किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों के पूरे झुंड को लगभग 20 लाख फूलों का दौरा करना पड़ता है, और अंत में मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी मुख्य आंखें और सिर के ठीक बीच में 3 छोटी आंखें। सच में 20 लाख,
6: बताइए तब जाके हमें शुद्ध जो शहद है वो मिलता है।
5: एक बूंद भी नहीं गिराना चाहिए।
6: बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए। और हम सभी को ये भी पता होना चाहिए आरती कि मधुमक्खियां उन पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिन पर हम भोजन के लिए निर्भर हैं। जैसे कि सदियों से मधुमक्खियां जो पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीवों में गिनी जाती है, और वो मनुष्य को, पौधों को, जैसा कि अभी तुमने बताया हमारे श्रोता ने लिखा, पर्यावरण को लाभ भी पहुंचाती रही है, और एक फूल से दूसरे फूल तक वो पराग को ले जाती है, और प्रचुर मात्रा में फल, मेवा और बीज भी वो पैदा करती हैं।
5: जी, हमारी ये श्रोता जो है कितने जानकार हैं, मतलब कितने अच्छी तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा हुआ है।
6: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, और बल्कि उनकी जो विविधता है और गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान होता है, वो पृथ्वी पर जीवन चलते रहने के लिए जरूरी भी होता है। और शहद के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो शहद तो उत्पादक होने के अलावा मधुमक्खियां पौधों के निषेचन में मदद करती हैं और अनगिनत प्रजातियों के प्रजनन को वो सुनिश्चित भी करती हैं। फलों की और सब्जियों से लेकर फूलों और पेड़ों तक हमारे द्वारा जो खाए जाने वाले कितने ही खाद्य पदार्थ हैं वो परागण के लिए मधुमक्खियों पर ही निर्भर हैं, जैसा भी तुमने शुरू में बताया भी था
5: जी। और मधुमक्खियों के बिना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा, जिससे जैव विविधता में कमी आएगी और मनुष्यों और वन्य जीवों दोनों के लिए खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और विश्व मधुमक्खी दिवस की स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में मधुमक्खियों और परागकर्ताओं के महत्व के बारे में

0: पैदा करना था और उनके संरक्षण को उनके महत्व पर जोर देना भी था।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है हमारे जो लिखते हैं कि 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 33% खाद्य फसलें और 90% जंगली फूलों वाले पौधे पूरी तरह या आंशिक रूप से परागणकों पर निर्भर करते हैं। मधुमक्खियाँ इस पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा जरिया है।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए बहुत सारी जानकारी जो हम जुटा के लाए थे वही हमारे श्रोता भी बता रहे हैं, काफी अच्छा मधुमक्खियों के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज दिवस हम मना रहे हैं ना आरती,
1: जी
0: ये मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार अवसर है।
1: जी
0: और मधुमक्खियों को प्रचुर मात्रा में पराग उपलब्ध कराने के लिए मधुमक्खी अनुकूल फूल और जड़ी बूटियां हमें लगानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपना कार्य कर सकें। अपने बगीचों की अगर हम बात करें, उन पर पौधों पर कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग करने से हमें बचना भी चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी और अन्य जो लाभकारी कीड़े हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और साथ ही मधुमक्खी उत्पाद खरीदकर स्थानीय मधुमक्खी पालकों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और इस बार का जो मुख्य विषय रखा गया है वो है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियाँ हम सभी का पोषण करती हैं।
1: बिल्कुल। हर बार एक नया विषय के साथ में आते हैं, तो इस बार का विषय ये है। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि फूल और फलों के फलीकरण के लिए मधुमक्खी वाहक का काम करती है, इसलिए मधुमक्खी का अस्तित्व बना रहना इस सृष्टि के लिए बेहद जरूरी है। पेड़ों की डाली के अलावा किसी घर की छत के नीचे छत्ता बना रही मधुमक्खियों से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल, जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं तब तक
0: हाँ,
1: वो
0: वो नहीं
1: काटेगी
0: करेगी,
1: नहीं,
0: बिल्कुल।
1: और कि वो आपको डस ना लें, हम मतलब उसको डंक ना लगा दें आपको। हम भी यही कह रहे हैं, अगर उसे आप छेड़ेंगे नहीं तो वो अगर आप उसे छेड़ेंगे तो हमें छोड़ेगी नहीं। इसलिए जिस पेड़ की डाली पर तेरा छता हो उस डाली के पास से गुजरना नहीं। उन्होंने बड़े मजाकिये तरीके से इस चीज को लिखा है
0: बिल्कुल सही कहा है।
1: और कहते हैं कि 3 साल पहले हमारे घर के ओटीएस के सालियों पर छाता बनाया था, अब इस साल हमारे घर अमरूद के पेड़ के नीचे कपड़े सुखाने के तार पर एक कोने में एक महीन पहले छत्ता बनाना शुरू किया, जो आज काफी बड़ा हो गया है और कुछ दिनों बाद बरसात की ऋतु में अपने आप उड़ जाएंगी। ना हम उसे छेड़ते ना वो हमें छेड़ती है।
0: बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमारी स्कूल बिल्डिंग में अभी अप्रैल में काफी बड़ा सा छत्ता है जिसे बुलवाकर हटवाया गया था। पहले तो हमको बहुत स्थानों पर दिखाई देती थी मधुमक्खियां, आप कम दिखती हैं। बचपन में माँ बताती थी कि उस पर बिल्कुल भी पत्थर नहीं फेंकना है, नहीं तो पानी के अंदर जाकर भी वो डंक मार देती है। वो हमेशा बात हमें याद रहती है। और मधुमक्खी शहद सी मिठास देती है, ऐसे ही सभी के जीवन में मधुरता बनी रहे।
1: बिल्कुल
0: तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: जारी ना बताऊं मैं तो नाम चित चोर का जारी ना बताऊं मैं तो।
1: तो आरती
2: नाम नहीं बताने वाले हो चित चोर का।
1: भाई नाम तो हमारे पता ही है हमारे श्रोताओं को।
2: बिल्कुल।
1: तो हम बात कर रहे थे आज की, भाई विश्व मधुमक्खी दिवस है और हमने बात की उनकी मिठास पर और मधुमक्खियों को किस तरह से हमें बचाना है इस पर। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे देश में, हमारी संस्कृतियों से जुड़ी चीज़ें हैं जहां पर हम बहुत सारी बातों से, बहुत सारी चीज़ों से, गुणों से जुड़ पाते हैं और उनमें एक है हमारा साड़ियों का संसार।
2: अरे बहुत
1: है ना। और हम महिलाओं को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं ये साड़ियाँ, और आज हम बात करने वाले हैं तंचोई साड़ी के बारे में।
2: तो तंचोई के बारे में बात करते हैं। तो तंचोई की कहानी 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से शुरू होती है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1856 ईस्वी में पारसी व्यापारी सर जमशेद जी जेजी भाई ने सूरत के जोशी परिवार के 3 बुनकरों को चीन भेजा ताकि वो इस विशेष ब्रोकेट रेशम की बुनाई की कला को सीख सकें।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आरती। और वापस लौटने पर भाइयों ने अपने चीनी शिक्षक छोई का नाम अपना लिया और उन्होंने रेशम बुनाई की कला जो सिखाई थी। तन शब्द गुजराती शब्द त्रान से मिलता जुलता है जिसका अर्थ 3 होता है और इसी से तीनों भाइयों का नाम लिया जाता है। इस प्रकार जिस रेशम को उन्होंने बनाना सीखा उसे तंचोई के नाम से जाना जाने लगा है।
2: जी, तो उनके शिक्षक का नाम और उनका जो नाम भाई थे। और बम्बई में 1950 के दशक तक तंचोई साड़ियों का उत्पादन जारी रहा और जब बनारस के बुनकरों ने इन ब्रोकेट को बनाने की कला सीख ली तो उसी कपड़े का उत्पादन बहुत कम कीमत पर शुरू कर दिया गया और इसी तरह कुछ जटिल बनारसी डिजाइन तंचोई रेशम पर भी दिखाई देने लगे।
1: बिल्कुल सही कहा। और तंचोई बुनाई की एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक या दो ताने और बाने में 2 से 5 रंग के होते हैं, मतलब जो अक्सर एक ही रंग के होते हैं। और तंचोई साड़ियों की एक और खास बात यह है आरती कि इनके कपड़े की सतह साटन जैसी होती है और एक जटिल और तकनीकी बुनाई तकनीक है। बहुत मतलब थोड़ा जटिल है ये तकनीक
2: जी, इसको टाइम लगता है सीखने में, बनाने में
1: बहुत मुश्किल है।
2: तो इसमें 1 या 2 ताने और 2 से 5 बाने के रंगों का उपयोग होता है। ये साड़ियाँ बेहद हल्की और पहनने में मुलायम होती हैं। तंचोई की कई अलग अलग किस्में होती हैं जैसे कि सैटन तंचोई जो कि एक ही रंग के सैटन कपड़े पर, जो साटन का कपड़ा होता है उस पर आधारित होती है और इसमें 1 या अधिक रंगों के ताने के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं।
1: हाँ, और अतिरिक्त ताने के रंगों को भी मुख्य ताने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सैटिन जरी तंचोई, सैटिन तंचोई का ही एक विस्तारित रूप है जिसमें ताना या तो एक रेशम और एक सोने के धागे का या 2 रेशम के धागे और एक सोने के धागे का, इस तरह से इसको बनाया जाता है।
2: जी, और इसके साथ एटलस या गिल्ट कपड़े की सतह शुद्ध साटन की होती है। अन्य कपड़ों की तुलना में एटलस या गिल्ट भारी होता है और जरी के अतिरिक्त उपयोग के कारण इसमें अधिक चमक भी होती है। और मुशब्बर का डिज़ाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण, ये डिज़ाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण थोड़ा अलग सा दिखता है।
1: हाँ बिल्कुल अलग लगती है तंचोई साड़ी, और ये झाड़ियों या पेड़ की शाखाओं जैसा भी प्रतीत होता है। मुशब्बर डिज़ाइन जो है अक्सर जंगल या प्रकृति की हरियाली से जुड़ी है। तो तंचोई जो वस्त्र है वो चटक रंगों से बुने जाते हैं और बुनाई की तकनीक में कई रेशमी धागों का उपयोग होता है। ब्रोकेट की साड़ियां होती है ना, उसी तरह ब्रोकेट की तरह तंचोई भी साटन बेस को ढकने वाले रंगीन बाने के रेशमी धागों के एक अतिरिक्त सेट का उपयोग करके बनाया जाता है जिससे विशिष्ट और अनूठे पैटर्न भी बनते हैं।
2: बिल्कुल। और तंचोई साड़ियों में डिजाइन हमेशा उड़ते हुए पक्षियों, फूलों की मालाओं के बीच बैठे मुर्गों की आकृतियों से सजे होते हैं जो पूरी साड़ी पर फूलों और फूलों से भरी टोकरियों से घिरे रहते हैं। कभी कभी पल्लू पर मोर, टोकरियां, फूलों के गुच्छे या शिकार के दृश्य अधिक सघनता से बनाए जाते हैं। तंचोई रेशमी साड़ियों को कुछ मोहक मनमोहक पुष्प, ज्यामिति और पैसले डिजाइन से भी सजाया जाता है।
1: हाँ, बहुत ही अजीब सी

0: क्लासिक डिजाइन होती है तांचुई
1: जी
0: साड़ियों में,
1: जी
0: और अधिकतर डिजाइन जो है चीनी मूल की होती है, लेकिन बुनकर जो है अनूठी कलाकृतियां बनाने के लिए भारतीय रूपांकनों को इसमें शामिल कर लेते हैं। और तांचुई साड़ियों पूरे देश में औपचारिक अवसर जो है या विवाह समारोह के अवसर है या त्योहार है हमारे, उसमें बहुत ही प्यार से बहुत ही खुशियों के साथ पहनी जाती है, शौक के साथ पहनी जाती है। और तंचोई रेशम की साड़ियाँ अपने कपड़े की वजह से शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में और सर्दियों के ठंडे महीनों में पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी हो सकती है। तो आरती, मैं तो अपनी सखियों से भी कहना चाहूंगी, अगर उनके पास तंचोई साड़ी है तो हमें बताइए किस रंग की तंचोई है और उन्होंने इसे कब और कहाँ पहना, और नहीं तो उनके पति देव बता दे कि उनकी पत्नी ने तंचोई साड़ी खरीदने के लिए कितना दिमाग खराब किया होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना। तो लिखिए हमें फटाफट और बताइए तंचोई साड़ी से जुड़ा कोई आपका अनुभव है हमारी सखियों और सखाओं का। हाँ, तो हमसे शामिल करें।
1: बिल्कुल, तब तक हम गीत सुनते हैं।
0: गीत सुनते ही

0: तो इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: स्वागत है
0: हार्दी
1: जी। और अब हम क्या बात करने जा रहे हैं?
0: अब भाई बात तो हम करने वाले हैं कि भाषाओं से जुड़े संस्कार क्या हैं।
1: जी
0: है ना। तो सबसे पहले हमें जानना होगा आरती कि भाषा क्या है।
1: भाषा क्या है?
0: तो भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये समाज में एक दूसरे की बात समझने और समझाने का सबसे मुख्य माध्यम है भाषा।
1: बिल्कुल। और हम लोगों ने कहा था कि अपने श्रोताओं से कि आप बताइए कितनी भाषाएं जानते हैं। तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मुझे कम से कम 25 भाषाएं आती हैं। इससे मैं इससे अधिक भाषाओं को भी जानता हूं। मुझे 25 भाषा आती है, लेकिन सबसे जो भाषा अच्छी लगती है, जो सबसे खूबसूरत है, तो वो प्यारी भाषा है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के बराबर उनको, मतलब वो उनको बहुत अच्छी लगती है हिंदी बोलना। वैसे वो 25 भाषाओं को जानते हैं।
0: हाँ, लेकिन आपने 25 भाषाओं के नाम नहीं लिखे। आप बताइए हमें कि आपको कौन सी 25 भाषाएं आती हैं, और उसके थोड़ा सा बताइए कैसे आपने सीखी। इतनी भाषाएं सीखना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जब अपने विचार हम तक भेजेंगे, अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे, तो हो सकता है हम भी आज भी कोई भाषा सीखने के लिए चाहत हमारे मन में आ जाए, जिसका हमें डर होता है कि अरे भाई।

0: आज भी कोई भाषा सीखने के लिए चाहत हमारे मन में आ जाए, जिसका हमें एक
1: बिल्कुल,
0: डर होता है कि अरे भाई
1: और कोई आसान तरीका भी हो
0: हमें
1: उसका।
0: मिल जाए। तो
1: जी
0: आप थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन कौन सी 25 भाषाएं सीखी हैं और किस तरह से सीखी हैं, और उनका आपके जीवन में कहाँ कैसे उपयोग हो रहा है, इस पर थोड़ा सा बताइए।
1: बिल्कुल।
0: तो सबसे बड़ी बात थी आज हम बात करने वाले हैं कि भी भाषाओं से जो जुड़े संस्कार हैं वो क्या हैं। तो
1: जी
0: आरती, क्या कभी हमने सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाली जो भाषाएं, हजारों भाषाएं, एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों हैं, है
1: जी
0: ना? देखने और सुनने में भले ही बिल्कुल अलग लगे, लेकिन हाल ही में एक अध्ययन हुआ, शोध हुआ, उसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि चाहे भाषा कोई भी हो, उनकी बुनियादी संरचना और उन्हें गढ़ने वाले जो नियम हैं वो आश्चर्यजनक रूप से एक समान है।
1: जी बिल्कुल। और साथ ही ये समानता इसलिए है क्योंकि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क की एक ही प्राकृतिक कार्यप्रणाली से हुई है। और यानी हम मनुष्य चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न रहें, हमारे सोचने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मूल तरीका एक ही गहरे सांचे में ढला हुआ है। यानी अगर हमें दुख होगा तो हम रोएंगे, हमारे आंसू निकलेंगे, चाहे वो कोई अमरीका में
0: बिल्कुल,
1: रहने वाला हो, चाहे वो
0: हाँ
1: हिंदुस्तान में रहने वाला
0: बिल्कुल,
1: हो। ये खोज साबित करती है कि हमारी बोलियां भले ही अलग हो, लेकिन हम सभी भीतर से एक ही मानवीय सूत्र से जुड़े हुए
0: जुड़े
1: हैं।
0: हैं। बहुत गहरी बात है आरती ये, अगर हम इसे समझ पाए तो
1: जी
0: कितनी बड़ी बात है कि हम भीतर से एक मानवीय सूत्र से जुड़े हुए हैं, है
1: जी
0: ना?
1: बिल्कुल।
0: और भाषा का जो सीधा संबंध है वो संस्कार और सभ्यता से होता है। हम अपनी भाषा के संस्कार भूलते अगर जा रहे हैं तो गलत बात है। इसी संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के शब्दों का अगर हम यहाँ उल्लेख करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।
1: बिल्कुल, जो वो भाषा जानते थे उसमें
0: हाँ
1: समझ में आता है ना, जिस तरीके से जिस भाषा को हम
0: हाँ
1: जानते हैं।
0: कितनी

0: बड़ी बात है। और
1: जी
0: हमारे मन में क्या रहता है कि अगर हमने अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा,
1: हाँ जी
0: है ना।
1: अक्सर
0: हम
1: होता।
0: मॉडर्न नहीं कहलाएंगे, हमें सम्मान नहीं मिलेगा, या
1: जी
0: हम विकास नहीं कर पाएंगे।
1: जी
0: लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने अपनी मातृभाषा में गणित और विज्ञान की
1: बिल्कुल,
0: शिक्षा ली।
1: सीखिए आप जितनी भाषाएं हो सकते हैं उतनी
0: हाँ
1: सीखिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब हम सीखना शुरू करते हैं भाषाओं को अलग अलग, तो हमारा जो मस्तिष्क का वो हिस्सा है ना, एकदम से वो एक्टिव हो जाता है,
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद ना वो हमारा जो दिमाग है बहुत शार्प हो जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से और भाषाओं को सीख पाते हैं, हम और चीज़ों को अपने अच्छे तरीके से कर पाते हैं।
0: बिल्कुल, आपने
1: तो
0: देखा होगा
1: सीखना कभी
0: कई
1: मत
0: लोग
1: बंद करिए।
0: शौक या फ्रेंच भाषा सीखते हैं, उनका
1: हाँ
0: जीवन में उपयोग नहीं होता है, लेकिन शौक होता है कि मैं भाषा सीखता हूँ।
1: बिल्कुल
0: तो आप किसी भी भाषा के ज्ञाता हो, किसी भी भाषा को सीखते हो, लेकिन मन में हीन भावना नहीं रखनी
1: बिल्कुल।
0: चाहिए कि मुझे वो भाषा नहीं आती है तो मुझे कुछ नहीं आता
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल। और भाषाएं केवल संवाद का माध्यम ही नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कारों, जीवन मूल्यों और पहचान की सच्ची संवाहक हैं। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और अगली पीढ़ी तक पारंपरिक ज्ञान और संस्कार पहुंचाने का काम करती है।
0: बिल्कुल। और आज के दौर की अगर हम बात करें, हमारी युवा पीढ़ी की बात करें, तो सोशल मीडिया के प्रचलन के कारण भाषा का प्रयोग थोड़ा शॉर्टकट में
1: बिल्कुल
0: होने लगा है,
1: जी
0: जो कि गलत भी है ना, बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि शुद्ध भाषा ही समाज के संस्कार के विकास की रीढ़ होती है, और ऐसे में युवा पीढ़ी को भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि शॉर्टकट भाषा की आदत जो है सोशल मीडिया में काम तो आ जाती है, लेकिन जब ये आदत जीवन में आ जाती है आरती, तो इसका नुकसान परीक्षाओं से लेकर कई मंचों पर आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि वहां आपके पास अच्छे शब्द और व्याकरण का अकाल पड़ जाता है।
1: बिल्कुल। और एक शोध बताता है कि जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी सीखने की जो क्षमता होती है वो जीवन भर बनी रहती है, जरूरी नहीं कि हम इस साल इतने साल के हो गए अब हम क्या सीखेंगे, ये कभी
0: हाँ
1: मत मन में
0: बिल्कुल।
1: लेकर आइए।
0: आप जब तक आपकी अंतिम सांस है आप सीख सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: चाहत आपके अंदर होनी चाहिए।
1: जी। और साथ ही जो वयस्क सीखना जारी रखते हैं उनमें डेमेंशिया जो होता है, मनोभ्रंश, वो उसका जोखिम जो होता है वो 46% तक कम होता है। और सीखना केवल शिक्षा नहीं है, ये मन की औषधि है, यानी पढ़ना सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, पढ़ना जिंदगी को जीवित जिंदा रहने के लिए जरूरी
0: क्या
1: है।
0: बात है, कितनी बड़ी बात है कि केवल
1: जी
0: डिग्रियां हम धारण कर लेते हैं, मैं डबल एमए हूँ, ट्रिपल एमए हूँ, मैं
1: जी
0: पीएचडी हूँ, है ना,
1: जी
0: मैं एमफिल हूँ, ये अच्छी बात है।
1: जी
0: डिग्रियां लेते हैं, आप पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, बड़ी बड़ी
1: बिल्कुल
0: नौकरियों पर हम जाते हैं, वो तो है ही जिंदगी का, लेकिन इसके अलावा पढ़ना जो है वो जिंदगी को जीवित रखने के लिए कितना जरूरी। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जो साहित्यकार है ना, वो लिखते रहते हैं अंत तक। उनके लिए कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, कविता लिखना जिंदा रहने का माध्यम होता है।
1: बिल्कुल। आप कुछ नहीं तो डायरी लिखना शुरू कर दीजिए, आप
0: हाँ,
1: खुद ही अपने आप को, आपको लगेगा कि यार कितना अच्छा लिखने लगा हूं मैं।
0: जो भीतर बदलाव
1: जी
0: आता है वो कितना सुंदर होता है ना,
1: बिल्कुल
0: ये सबसे
1: बिल्कुल
0: बड़ी बात है। तो देखते तो हम सभी चीजें हैं आरती,
1: जी
0: प्रकृति को आप भी देखती हैं, मैं भी देखती हूँ, लेकिन आप प्रकृति को किस अंदाज में देखकर क्या
1: जी
0: लिखती हैं
1: सबका नजरिया
0: ये
1: अलग होता
0: मायना
1: है।
0: रखता
1: जी
0: है ना। तो भाषाओं को सीखना जारी रखना चाहिए, एक ऐसा निर्णय हमें लेना चाहिए कि हम भाषाएं सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे संवाद कौशल को भी बढ़ाता है और मानसिक क्षमता में वृद्धि भी करता है। और एक से अधिक भाषाएं जानना रोमांचक यात्रा अवसरों के द्वारा द्वार आपको खोल सकता है। आप कहीं भी जाएंगे, अगर आपको वहां की भाषा आती है तो आपको उस यात्रा के मजे दोगुने हो जाएंगे।
1: बिल्कुल, वहां से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं आराम से, जैसे
0: हाँ
1: कि हम गए थे तो हमने बात करी वहां पे ब्रिज भाषा में
0: हाँ
1: क्योंकि
0: कितना अच्छा
1: हाँ
0: लगा
1: बिल्कुल
0: होगा।
1: बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर आप जब उनसे उनकी भाषा में बात करते हैं ना, तो और जुड़ जाते हैं आपसे कि अच्छा ये तो हमारी भाषा बोल रहा है,
0: हाँ, तो
1: तो
0: वो
1: उस वजह
0: अपने
1: से
0: करीब पाते हैं ना आपको
1: बिल्कुल
0: कि

0: और परंपराओं के बारे में ज्ञान और समझ गहरी होती है। भाषा सीखने से लोगों को अन्य संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। इससे किसी संस्कृति के अनूठे दृष्टिकोण, बारीकियों और इतिहास उनके जो इतिहास की जो समझ है वो बढ़ती है और हम विभिन्न संस्कृतियों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करना सीखते हैं।
1: क्या बात है। तो यानी कि भाषा हर कीमत पर हमें सीखनी चाहिए, अपनी
0: जी
1: मातृभाषा के अलावा हमें जितनी भाषाएं हम सीख सकते हो
0: बिल्कुल
1: हमें सीखनी चाहिए। इसके लिए प्रेशराइज नहीं होना, प्रेशर नहीं पालना।
0: बिल्कुल।

0: हाँ तो मंदाकिनी जी, जब हम जब बात कर रहे थे मधुमक्खियों की, तो उस पर एक शोधा जो है उन्होंने हमें लिख कर भेजा है, अपने उनके साथ में जो घटना हुई वो लिख के भेजी है उन्होंने। तो वो लिखती हैं कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, तब मेरा छोटा भाई जो मुझे लगभग 6 साल छोटा है, मेरे साथ स्कूल में खेल रहा था। हमारे गाँव के स्कूल में पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों पर मधुमक्खियों के विशाल छत्ते लगे रहते थे। खेलते समय किसी ने शरारत में एक छत्ते पर पत्थर मार दिया, इसके बाद मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और मेरे छोटे भाई को कई मधुमक्खियों ने काट लिया और उसके बाद उसके पूरे चेहरे, हाथ पैर में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई। हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसे उल्टियाँ भी होने लगी। उस दिन का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं अंदर से डर जाती हूँ।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और क्योंकि आपने उनको छेड़ दिया ना, जब आप किसी को छेड़ोगे तो वो भी तो अपना कुछ ना
0: वो
1: कुछ
0: तो उनको तो लगेगा ना कि हम पे हमला हो रहा है, तो
1: वो भी तो सुरक्षा महसूस करती है ना। इस बात को हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है मधुमक्खी तो भी काट लेती है, लेकिन वो क्यों काट रही है
0: जी,
1: उसके पीछे का लॉजिक समझ आया ना, आपने पत्थर मारा और उसने पलट कर बदला ले लिया।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें इस बात का बचाव करना है कि पत्थर नहीं,
0: पानी पे भी अगर आप पत्थर मारेंगे तो उछल के आप पर आएगा,
1: आप पर आएगा। आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो उछल कर आप पर आएगा। तो ये कहने का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी तरह की कोई शरारत जब करते हैं, प्यारी शरारत करिए, मीठी शरारत जैसे हम करते हैं, लेकिन गलत तरीके से जब हम काम करते हैं तो उसके थोड़े से दुष्परिणाम
0: और ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा काट लिया तो बहुत ज्यादा अगर जहर फैल जाता है ना तो जान भी बनाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ततैया होता है, मधुमक्खी होती है, सांप है, इन सब अपना रास्ते जा रहे हैं। अगर आपने इनको छेड़ दिया,
0: बिल्कुल
1: ऐसे ही ततैया भी बहुत बुरा काटता है, जो पीले रंग का होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं बैठ जाता है और अचानक आकर आप पर हमला कर देता है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो चलिए भाषा पर हम बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, जीवन मूल्यों और संस्कारों की संवाहक है। हम जिस परिवेश और भाषा में बड़े होते हैं उसी से हमारे आचरण, शिष्टाचार और सोच का निर्माण होता है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जुड़े रखती है, सिखाती है कि बड़ों से बात करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है।
0: जी, और एक श्रोता जैसे हमने पूछा था ना कि कितनी भाषा आती है, तो एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे इंग्लिश, हिंदी और प्यार की भाषा बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है, और सिंधी भाषा सिर्फ बोलनी आती है, संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है, और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी मेरे से एक कदम आगे हैं, उन्हें इंग्लिश, हिंदी, सिंधी और प्यार की भाषा पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है, और संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है। बहुत बहुत ही ज्यादा भाई ज्ञानी है फिर आपकी पत्नी तो।
1: चलिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने कहा प्यार की भाषा, जो मोहब्बत है ना,
0: बहुत बड़ी भाषा है,
1: सबसे बड़ी बात है। भाषाएं तो आपने सीख ली, लेकिन अगर आपके भीतर प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो सब भाषाएं भी रूखी हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति और आचरण का आईना है। यह हमारे विचारों को आकार देती है, हमारे परिवेश और जीवन मूल्यों को दर्शाती है। एक सभ्य और मर्यादित भाषा का प्रयोग ही वास्तव में भाषा से जुड़े संस्कार को दर्शाता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
0: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे हिंदी के अलावा गुजराती और इंग्लिश आती है और गुजराती सीखना आसान रहा। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी और सिंधी आती है, वैसे 2-3 और भाषा थोड़ी थोड़ी समझ भी सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कितने देखिए तभी कहे ना श्रोताओं के जो विचार है ना, वो विचार इस वजह से भी है कि उनको तरह तरह की भाषाओं का, शब्दों का, व्याकरण का ज्ञान है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो जो उनके अंदर चीजें ना, वो विचार सामने आते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए यही हम जानना भी तो चाहते हैं कि हमारे श्रोता क्या विचार अपने रखते हैं अपनी भाषाओं को लेकर, अपने विचारों को, जो उनके विचार हैं जिंदगी में। वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाषाओं का संसार अत्यंत विशाल है, विविधतापूर्ण और जीवंत है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 7,000 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती हैं और ये न केवल संवाद का साधन है बल्कि संस्कृतियों, इतिहास और मानव पहचान को जीवित भी रखती हैं। और बाकी जैसा आपने लिखा कि वो लिखते हैं गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, 2-3 भाषाएं थोड़ी थोड़ी समझती भी हैं और बोलती भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, और
0: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि भाषा किसी भी समाज की संस्कृति का दर्पण होती है, हमारी मातृभाषा ही हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, जैसे कि आप

0: कर बुलाना, छोटों को प्यार देना और अतिथि देवो भव जैसे सामाजिक मूल्य सिखाती है, और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा में जो अपनापन और आत्मीयता होती है वो किसी अन्य विदेशी भाषा में संभव नहीं है। यही जुड़ाव हमें अपनी पारिवारिक जड़ों से बांध कर रखता है और हमारी भाषाएं विशेष रूप से संस्कृत और हिंदी वेदों उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान समेटे हुए हैं। ये ग्रंथ हमें जीवन जीने की सही कला, नैतिकता और कर्म के सिद्धांत भी सिखाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें किसी भी भाषा के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी
0: बिल्कुल
1: नहीं करनी है कि
0: भाषा भाषा
1: विदेशी
0: जी
1: भाषा ऐसी
0: बिल्कुल।
1: है या देशी भाषा
0: अगर
1: है।
0: आपको वो भाषा नहीं आएंगी तो अगर आपको कहीं बाहर जाना है या कोई बाहर से कोई हमारे अतिथि आता है तो हम उससे बात कैसे कर पाएंगे,
1: हाँ चलिए,
0: बहुत जरूरी
1: आपको
0: है
1: भाषा नहीं भी आती, आप नहीं भी सीख पाए,
0: जी।
1: लेकिन भाषा भाषा है, हमें
0: बिल्कुल
1: हर भाषा का
0: भाषा
1: विश्व
0: कभी बुरी नहीं हो
1: हमें
0: सकती
1: वैश्विक भाषाएं
0: जी,
1: जितनी भी
0: बिल्कुल
1: हैं उन सभी का सम्मान करना चाहिए।
0: जी
1: एक गाना सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो आरती भाई, हमारे श्रोताओं ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कही कि किस तरह
1: जी
0: से भाषाओं से जुड़े संस्कार हमारे काम आते हैं,
1: जी
0: और इसी के साथ हमने एक और सेगमेंट रखा उनके लिए कि शब्द हमारा और विचार आपके, और आज का विषय था
1: सद्भावना,
0: सद्भावना।
1: तो उस पर भी बहुत सारे हमें कमेंट्स में आए हैं। तो एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, शुभ विचार या भलाई की चाह, और इसका मतलब किसी व्यक्ति या समाज के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और निष्पक्ष रहने का सच्चा इरादा रखना है जिसमें कोई द्वेष या स्वार्थ ना हो।
0: बिल्कुल सही लिखा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सद्भावना यानी अच्छी नीयत, दूसरों के प्रति शुभ भावना और परोपकार। जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए प्रेम, दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है तो वो किसी का बुरा नहीं सोचकर उसकी भलाई चाहता है, तो उसे सद्भावना कहते हैं। और साधारण बोलचाल में किसी के साथ निष्पक्ष और निष्पक्ष

0: और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना, जिसमें कोई छल कपट या द्वेष न हो, सच्चाई और ईमानदारी का इरादा, बिना किसी को धोखा देने के भाव से कोई कार्य करना इसमें आता है।
1: बिल्कुल। और श्रोताएं जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, अच्छे और उच्च विचार, मन में बसने वाली वो सुंदर भावना है जो प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ाती है। जहां सद्भावना होती है वहां रिश्तों में मिठास, समाज में शांति और जीवन में खुशी बनी रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के समय में जहां समाज में विभाजन और असहिष्णुता बढ़ रही है, वहां सद्भावना की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। ये विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही परिवार है, इस भारतीय सोच सद्भावना पर ही टिकी है। ये जो भारतीय सोच है इसी सद्भावना पर टिकी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और विवादों को सुलझाने के लिए देशों के बीच में भी सद्भावना का होना अनिवार्य है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ से मुक्त होती है और मानवता, प्रेम, करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देती है। सद्भावना केवल एक नैतिक गुण नहीं है, बल्कि एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण की बुनियादी जरूरत है। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तभी समाज का कल्याण संभव है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तो हमने ये भी जानना चाहा था कि आपके अंदर सद्भावना कितनी है, ये भी बताइएगा। लिखा है हमारे श्रोताओं ने कुछ आरती, ऐसा कोई विचार आया है किसी का?
1: अभी तो सबने यही चीज लिखी है कि सद्भावना के जो अर्थ है
0: वो क्या है। हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना अच्छे विचार, दूसरों के प्रति भलाई की भावना, प्रेमपूर्ण व्यवहार, और ये किसी के मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष या बैर का भाव नहीं रखकर आपसी भाईचारा और सहयोग बनाए रखने की एक स्थिति है। और सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय गुण है।
1: बिल्कुल। एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि जहाँ सद्भावना होती है वहाँ झगड़े कम और प्रेम अधिक होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सद्भावना अपनानी चाहिए। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यदि हमारे पड़ोसी पर कठिन समय आए तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।
0: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपने ये नहीं लिखा कि क्या ऐसे कोई कठिन समय आपके पड़ोसी पर आया था और आपने कोई उनकी सेवा की थी, है ना, ध्यान दिया था उनका।
1: बिल्कुल,
0: ये भी लिखते तो हमें अच्छा लगता। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दूसरों के प्रति मन में स्नेह, आदर और सहानुभूति रखना ही सद्भावना है। इसमें जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के बिना सभी के कल्याण की कामना होती है और समाज में आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखने के लिए ये बहुत मूल्यवान है।
1: जी बिल्कुल। और आप हमें गीत सुन लेते हैं?
0: अब मूल्यवान तो ये गीत ही है
1: जी।

0: हाँ तो आरती, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं और अब हमारे श्रोता या क्या कर रहे हैं, व्यंजन की
1: बिल्कुल।
0: प्रतीक्षा।
1: और हम बता देते हैं उनको दाल पीठा की रेसिपी क्या है। तो वो दाल पीठा बिहार और उत्तर प्रदेश का व्यंजन है, जिसमें जो चावल के आटे और दाल आमतौर पर चना, मूंग और उड़द से बनाया जाता है। भाप में पके होने के कारण ये बेहद स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है, उन्होंने बताया इसके बारे में। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसे भाप में पकाया जाता है, जिसमें तेल या घी का उपयोग ना के बराबर होता है। सर्दियों के मौसम में, विशेषकर पौष के महीने में, बिहार के घरों में बड़े चाव से बनाया जाता है। पुजही पीठा सिर्फ दाल से ही नहीं, तरह तरह के भरावन, भूनी मूंगफली, तिल, मावा, गुड़, नारियल, इन सब चीज़ों से बनाया जाता है। और इन्होंने जो ठेकुआ है उसकी भेजी है रेसिपी। तो उसमें गेहूं का आटा चाहिए 2 कप, गुड़ 1 कप, और बारीक कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए गुड़। घी मोयन के लिए 3-4 बड़े चम्मच सूखी नारियल, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए, और सौंफ 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर छोटा चम्मच एक होना चाहिए, आधा छोटा चम्मच, और पानी और आधा कप गुड़ पिघलाने के लिए, और फिर तेल या घी तलने के लिए, और आवश्यकता अनुसार बनाने की विधि है। एक गुड़ पहले आप गुड़ का पानी तैयार करें। एक बर्तन में गुड़ और आधा कप पानी डालकर धीमी आंच पर पिघला लीजिए उसको, गुड़ को, और चाशनी नहीं बननी चाहिए उसकी, सिर्फ
0: ठीक
1: गुड़ को पानी में घुलने देना है
0: है।
1: और इसे ठंडा होने दीजिए, और फिर छलनी में से छान लीजिए, जो भी गंदा होगा वो निकल जाएगा। आटे का मिश्रण बनाएं। एक बड़े कटोरे में गेहूं का आटा लें, उसमें सूजी कुरकुरेपन के लिए सौंफ, इलायची पाउडर और कसा हुआ नारियल डालें, मोयन डालें। अब आटे में 3-4 चम्मच पिघला हुआ घी डालें, आटे को दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ें। जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे तो समझ लीजिए मोयन जो है वो एकदम सही है। अब आटा गूंद लीजिए और छने हुए गुड़ के पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर सख्त आटा गूंदना है, इसका मुलायम नहीं होना चाहिए, इसे ज्यादा मुलायम नहीं करना है। और आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए और सांचे पर थोड़ा सा तेल लगाकर लोई को दबाएं और मनचाहा डिजाइन बना लीजिए। अगर सांचा ना हो तो हाथ से भी आप कांटे की मदद से भी बना सकते हैं, और धीमी आंच पर तल लीजिए आपका जो तेल में या घी में, तो सुनहरा होने तक तल लीजिए, फिर आराम से निकाल के खाइए।
0: तो आपने इतनी जल्दी में बताया है, मुझे तो भाई आरती बनाना आया ही नहीं है। मुझे लगता है हमारे श्रोता जिनको ठेकू और दाल पीठा बनाना आता है वो आराम से बनाएंगे
1: बिल्कुल, और रेसिपी आपको वहाँ फेसबुक पेज पे मिली जाएगी,
0: मिल जाएगी, तो बनाने की मैं भी
1: समय
0: कोशिश
1: की कमी
0: करूंगी।
1: की वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी है
0: बताना पड़ा। तो चलिए अब सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं आज लीजिए सुनिए जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर

0: खड़ा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद, 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
0: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
1: जी, वो बहुत प्यारा जमाना था। और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताज़ा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी, खुश हुआ जी।
0: क्या बात है सर, बातें हो रही हैं जयपुर के जमाने की और आपने बताया कि न केवल आपने नाटक किए बल्कि वहाँ एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही, तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर था। जयपुर के बाद आप यात्रा जीवन की आपको कहाँ ले गई?
1: जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद
0: जी
1: अल्मोड़ा हुआ।
0: अरे गजब, पहाड़ों पर।
1: पहाड़ों पर। और मेरे जीवन का वो सबसे कष्टप्रद, मतलब यूं नहीं
0: जी,
1: मतलब मुझे अल्मोड़ा स्टेशन शुरू होने वाला था उस वक्त।
0: अच्छा।
1: तब तक शुरू नहीं हुआ था
0: जी।
1: जो शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना, तो उनमें से मैं प्रोग्राम की तरफ से मैं था, फिर इंजीनियर्स थे, तो सेंटर तब तक शुरू नहीं हुआ था, हमको जाना था। तो लेकिन मैं मैदान पे रह इतना आदि था और होमसिक तो मैंने बताया था शुरू से था
0: जी, जी।
1: तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी, मतलब और परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब, तो अब लगता है कि यार मूर्खता की, तुम जल्दी चले आए वहां से। अच्छा था वो
0: जी,
1: वो एक अलग अनुभव था
0: जी।
1: तो एक तो यह कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, आपको सिर्फ जाना है और प्लानिंग करनी है और कब होगा ये सब तय होना है सारा कुछ। लेकिन वो वहां चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। घूमने जाओ तो अलग बात है
0: जी,
1: लेकिन आपको रहना हो और जो कभी रहा ना हो, कभी रहा ना हो, तो वो उसके लिए तो वो कठिन दौर था। लेकिन वो गुजरा और मैं एक साल के बाद ही वापस आ गया वहां से, और उसके बाद फिर बॉम्बे आया।
0: अच्छा,
1: 86 में।
0: क्या बात है। तो ये तो पंत जी का शहर था, पंत जी का इलाका था, तो वो तमाम चीजें
1: और वो भी सब भी देखा हमने। वो पंत जी, अज्ञे जी वहां पर रहे और रविशंकर जी का वहां पे वो था,
0: बिल्कुल
1: है ना? तो ये सब भी
0: उदय शंकर जी का।
1: तो वो सब भी देखा, घुमा फिरा भी, सब अच्छा भी लगा वो सब
0: जी।
1: कि ये सब, लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे
0: रहते कैसे।
1: उस वक्त वाकई हैरान होता था मैं, जो लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है,
0: पहाड़ों में कैसे। बिल्कुल।
1: तो ये था
0: मुंबई, 80 के दशक की मुंबई बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे क्योंकि वहां के पले बढ़े हैं, पैदाइश नागपुर के, तो मुंबई आपके लिए एक बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षितिज था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का?
1: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये

0: तो ये सपनों की नगरी थी,
1: जी
0: फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था। आज तो खैर हालत ही ख़राब है। उस वक्त ये 86 में जब हम आए थे तो अच्छी खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है,
1: बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल
0: भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो हर सपना देखने वाला यहाँ आता है और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है। तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफ़र, लोकल ट्रेनों का सफ़र, एक
1: जी
0: अलग ही दुनिया थी। लेकिन था कि कुछ लगा था कि बॉम्बे में कुछ होगा और अच्छा लगेगा, और वो धीरे धीरे जिंदगी ढलती चली गई उस हिसाब से। हम शुरू में एंटॉपिल में रहे, गवर्नमेंट कॉलोनी वहाँ पे थे, तो 11 11 महीने का जो किराया होता है उस
1: हाँ
0: पर वो उस पैटर्न पे रहे, और अलॉट होने का तो सॉल्यूट था, हम तो फ्रेश थे एकदम, है
1: बिल्कुल।
0: ना।
1: और तब तो लंबी लाइनें
0: हाँ,
1: हुआ
0: वो
1: करती
0: लंबी
1: थी।
0: लाइनें हुआ करती थी। तो जीजस कॉलोनी जो एंटॉपिल की थी वहाँ रहे, और फिर वहाँ से बस पकड़ना, फिर इधर आना एंटॉपिल से किंग सर्कल आना, वहाँ से पैदल
1: जी
0: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन थोड़ा उस सब शुरुआत में लगा, लेकिन फिर औरों की तरह से फिर हमको भी वो जिस दिशा में उतरना उस दिशा में खड़े होने की आदत हो गई ट्रेन
1: हाँ,
0: में।
1: मुंबई शहर आपको अपने हिसाब से
0: हाँ,
1: ढाल लेता
0: तो फिर
1: है।
0: वो लोग अपने आप आपको उतार
1: जी
0: देते
1: जी
0: हैं। तो ट्रेन में ये हुआ कि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ,
1: जी
0: उतार देंगे लोग,
1: लोग उतार
0: तो ये
1: देंगे।
0: उतार ठीक
1: जी, तो मुंबई शहर में एक बड़ा आकाश आपको मिला, और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहाँ लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
0: यहाँ जो जिंदगी बदली वो मेरी उस वक्त गजल गायकी पीक
1: चरम
0: पर
1: पर
0: थी,
1: थी।
0: चरम
1: जी
0: पर। फिल्म संगीत जितनी पॉपुलर थी, मतलब
1: जी
0: जगजीत सिंह, पंकज दास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे। मतलब अनूप जलोटा, इनके कैसेट जो है घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में भी ये उस वक्त ये
1: बजाया करते थे
0: बजाया
1: उसको।
0: करते थे लोग। तो इतनी पॉपुलर नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए। तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था, और नेचुरली जो गज़ल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुंचो और
1: बिल्कुल
0: वो उन तक मेरे शब्द भी पहुंचे। तो यहाँ आने के बाद तो ये सिलसिला चलता रहा, और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई।
1: अच्छा। अरे वाह वाह, मुझे ये पता है क्योंकि अब हमने साथ में काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूं, कि भूपिंदर सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है,
0: बहुत प्यार है,
1: बल्कि
0: बहुत
1: हमने
0: प्यार।
1: उनको बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी। आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं,
0: जी,
1: तब मैं
0: सही
1: था
0: सही
1: नहीं
0: सही।
1: शहर में।
0: तो भूपी जी मतलब पहले थे जिन्होंने मेरी एल्बम में जो कोई चीज, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में, युवाणी में जो अपनी आवाज पहली बार मैंने रिकॉर्ड की,
1: जी
0: तो घर में जिस ढंग से मैंने खुशी का इजहार किया था और अपने आप की आवाज को आकाशवाणी में सुनकर जो
1: जी
0: खुशी हुई थी, तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह की आवाज में अपनी गजल सुन के हुई थी,
1: क्या
0: है ना।
1: बात है,
0: तो वो
1: क्या
0: किसी गजल सिंगर ने, और मेरे फेवरेट गजल सिंगर ने या गायक ने जो इतना बड़ा सिंगर है, तो ये हुआ। नहीं, उसके बाद फिर जगजीत जी से बात हुई तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ। वो
1: पेडर रोड।
0: हाँ, पुष्प मिलन 25 उनका एड्रेस था, तो
1: जी
0: मैं गया, और उस समय का वक्त था। तो मैं बताना चाहूँगा अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को, कि बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है।
1: जी
0: जगजीत सिंह साहब रोज सुबह उनका वो रियाज का वक्त होता था, इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे वो ऐसे ही नहीं थे,
1: जी
0: रोज रियाज करना उनका काम था। जब बॉम्बे में होते थे
1: जी
0: तो वो तानपुरा चल रहा है और वो सब कुछ, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है, और वो उनका सिलसिला फिर रियाज पे। तो ये
1: जी
0: तो मैं पहली बार गया तो वो तानपुरा चल ही रहा था, वो अपने बैठे हुए थे, और फिर उन्होंने वो गजल देखी। मेरी खुशकिस्मती कि वरना अक्सर होता है कि इतने बड़े लोग, आपका मिलना ही बड़ी बात है उनसे, हाँ,
1: जी
0: वो उनका मिल जाना। फिर उन्होंने कहा कि गजल देखे, तो सरसरी निगाह से जब उन्होंने देखी तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने पहली ही उसमें कहा ये मैं कर रहा हूँ।
1: वाह
0: वरना
1: वाह
0: अक्सर होता है
1: वाह।
0: कि रख के जाओ, देखता हूँ, मैं करता हूँ, सोचता हूँ, बताता
1: जी
0: हूँ,
1: जी
0: है
1: जी
0: ना।
1: जी
0: लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूँ।
1: वो कौन सी गजल थी? घर से निकले थे,
0: नहीं, ये जो जिंदगी की
1: ये
0: किताब
1: जो
0: है,
1: जिंदगी की किताब है। वाह
0: हाँ,
1: वाह वाह
0: तो ये वो
1: वाह।
0: पहली गजल थी जो जगजीत जी ने गाई थी।
1: और भूपी जी ने क्या गाया था?
0: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंकज जी वगैरह सब ये शराब और हल्की फुल्की गजलों का दौर था। भूपी जी ने कहा कि यार मुझे गजलें बहुत हैं, मुझे एक हल्की फुल्की गजल चाहिए।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: हाँ
0: तो मैंने पहली गजल जो डिमांड पे लिखी, डिमांड पे,
1: हाँ हाँ
0: वो ये गजल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ता हूँ न सुनाता हूँ, और
1: जी
0: वो गजल जो मैंने कभी आज तक छू ही नहीं,
1: अच्छा
0: बहुत ज्यादा शराब पड़ती
1: ओ हो,
0: तो वो गजल लेकिन उनको पसंद आई, उन्होंने गाई और चलिए।
1: जी जी जी, ये जो जिंदगी की किताब है ये भी आपकी पहचान के साथ पूरी तरह से जुड़ गई है, और ये कहना चाहिए कि एक तरह से आपकी प्रतिनिधि गजल है। तो जगजीत साहब ने तो सुनाई, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं इसको।
0: ये गजल है जिसकी धुन मैंने खुद ने नहीं बनाई
1: जी,
0: तो मैं जगजीत जी की आवाज में जो धुन है कंपोज है
1: वो
0: उसको, हाँ वो पढ़ देता हूँ।
1: जरूर जरूर।

0: क्या बात है। जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात
1: बिल्कुल
0: थी
1: सही,
0: और
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही।
0: बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सच होना जैसा तो वही बात है। और फिर जिस ढंग से इन्होंने गाया,
0: जी
1: और
0: जी
1: ये कंसर्ट्स में भी अक्सर गाया करते थे,
0: खूब
1: और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूँ और लोग बताते हैं इस गज़ल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब खूब है।
0: बिल्कुल
1: और उसमें जो
0: बिल्कुल
1: कमेंट्स हैं लोगों के, ये गज़ल वो गज़ल, और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई है, और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, और पूरे दुनिया से, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहाँ यहाँ ऐसे कमेंट्स हैं उस गज़ल पे। तो ये गज़ल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुँचा दिया, यूँ कह लीजिए मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो आपकी
1: जी
0: रिंगटोन में भी ये गजल
1: जी जी
0: बजती
1: जी
0: है।
1: जी
0: जगजीत जी ने गा लिया, भूपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया था
1: पंकज जी उसके बाद
0: जी।
1: ये गज़ल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं, पंकज जी पहले ये गज़ल थी, वो जो यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होना सर, तो पंकज जी से भी जब मिला तो खुश हुए। और ये गज़ल पहली नज़र में सबको ही अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है ना। तो इस गज़ल से जुड़ा एक और भी किस्सा कि ये गज़ल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गज़ल थी, लोगों ने बहुत पसंद की सब
0: नबील
1: जगह।
0: था,
1: हाँ,
0: नबील था
1: नबील, नबील,
0: जी।
1: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं। तो
0: जी
1: एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पर भी, जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था, तो बड़ा अच्छा सुबह कार्यक्रम आता था वो गज़ल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था, दूरदर्शन पर आता था गज़ल का, आरोही। हाँ,
0: आरोही
1: तो ये गज़ल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में।
0: जी।
1: अच्छा, उन दिनों पता नहीं क्यों या नहीं हुआ, तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था,
0: अरे
1: नीचे
0: बाप रे,
1: नहीं था, तो उन्होंने गा दी गज़ल। तो ये गज़ल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन ही था।
0: तो आपके संपर्क से गाई या उन्हें यह गजल कहीं मिली?
1: नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने के बात है,
0: अच्छा है, ओके,
1: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद
0: आरोही में
1: दुकानदार,
0: गाया।
1: हाँ, तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ, तो ये दूरदर्शन पे ये गज़ल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी। और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरोही बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है, तो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनता है, तो ये जब गज़ल आई तो उसने कहा, यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गज़ल लिखते हैं।
0: आपके अपने दोस्त ने
1: हाँ,
0: ये बात
1: ये मेरे
0: कही
1: उस, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में वो, लेकिन हम
0: जी
1: बहुत अरसे से नहीं मिले थे। तो
0: जी जी
1: ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गज़ल लिखते हैं, है ना।
0: ओहो
1: तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है और
0: जी
1: ये यही की गज़ल है। तो बोल, ये उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था।

0: हाँ,
1: सीरियल है
0: बिल्कुल
1: ना,
0: बिल्कुल,
1: और
0: बड़ा
1: मतलब
0: नाम है अजय
1: हाँ,
0: कार्तिक जी।
1: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गजल तो हम सुन रहे थे और हमने मेरा ये कमेंट था। अच्छा,
0: जी
1: दूसरी बात ये कि ये गजल पंकज उदास साहब ने सूरत, उनमें एक शेख अबू आदम आदम वाला को एक शायर रहे हैं गुजराती के, बड़े
0: जी
1: शायर रहे हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। हाँ, तो वो पंकज जी वहाँ पे उन्होंने कंसर्ट किया, वहाँ गाने गए। मजरू सुल्तानपुरी वहाँ पे चीफ गेस्ट थे, तो मजरू साहब बैठे थे सामने, तो पंकज जी ने ये गज़ल सुनाई, तो फिर ये जब शेर सुनाया तो फिर मजरू साहब ऑडियंस में बोलते हैं हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो कहते हैं ना फिर सुनाओ फिर सुनाओ, तो शायद मुशायरा हो या म्यूजिक का हो, तो ये लगता है कुछ गलत तो नहीं हो गया,
0: हाँ बिल्कुल,
1: कुछ तलफ़ुज़ गलत हो गया या कुछ मिसरा गलत हो गया है, कुछ मैंने कुछ कमजारा तो नहीं कर बोल दिया है सुना दिया, हाँ ये सुर का इधर उधर नहीं, फिर सुनाओ फिर एक बार फिर। उन्होंने 3 बार ये सुना और हाँ वाह, तो ये होगा। फिर जब ग्रीन रूम में आए बजरू साहब उनसे मिले, तो बोले कि ये किसकी गजल थी ये, तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था,
0: जी
1: तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी, तो ये बहुत अच्छी गजल है, अलग गजल है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
0: वाह वाह वाह
1: तो ये
0: वाह,
1: मजरूह
0: मजरूह जैसे
1: सुल्तानपुरी साहब का
0: बड़े
1: आशीर्वाद था,
0: शायर की बात
1: है
0: है
1: ना,
0: ये,
1: तो इस गजल से जुड़ी एक दो बातें हैं, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था।
0: क्या बात है,
1: जी
0: पंकज जी की आवाज में ये
1: जी
0: गजल
1: जी
0: सुनते हैं
1: जी
0: हम।
1: जी

0: मुंबई के अपने सफर के बारे में कुछ और बातें बताइए।
1: मुंबई में फिर सफर तो मेरा ज़्यादातर तो शायरी का ही रहा,
0: जी
1: और जगजीत जी वाला मैं सिलसिला एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो सुनाता हूँ। उससे
0: बिल्कुल
1: पहले एक मेरी शायरी और मुशायरों में कैसी वो एक सिलसिला शुरू हुआ, बड़ा सिलसिला जो है।
0: जी
1: तो नेहरू सेंटर का एक ऑल इंडिया मुशायरा होता है सालाना,
0: बिल्कुल, बहुत ही मशहूर।
1: मशहूर।
0: जी
1: आज तो वो दौर नहीं है,
0: जी
1: लेकिन एक ज़माना था मतलब उसके सुनने वालों में। और जब मैंने ये पहला मुशायरा पढ़ा तो उस वक्त स्टेज पे अली सरदार जाफरी,
0: जी
1: मजरू सुल्तानपुरी,
0: कैफी आजमी,
1: कैफी आजमी, मुमताज राशिद और ये सब बड़े बड़े नाम है ना,
0: जी
1: बशीर
0: जी
1: बद्र, निदा साहब, निदा साहब उसके संचालन कर
0: सदर,
1: रहे थे,
0: हाँ जी
1: अली सरदार जाफरी उसके वो थे सदारत कर रहे थे। और सुनने वालों में दिलीप कुमार,
0: बाप रे
1: अजित एक्टर,
0: जी
1: और भी और कई थे फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी लोग थे। तो वो दौर था जब बिहार जो नेहरू
0: अलग
1: सेंटर
0: ही
1: के
0: होता
1: मुशायरे अलग
0: था।
1: ही हुआ करता था,
0: जी
1: हॉल खचाखच भरा हुआ। तो और मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
0: क्या बात है,
1: मेरा पहला मुशायरा तो बड़ा मुशायरा। तो निदा साहब ने मुझे उसकी ओपनिंग के लिए, बल्कि यूँ कह लीजिए
0: अरे
1: तो
0: बाप रे।
1: शुरुआत के एक दो मुशायरों में।
0: और निदा साहब की अपनी अदा थी, वो बहुत रेफरेंसेस के साथ बुलाया करते थे।
1: तो उन्होंने मुझे माइक पे बुला, मेरा पहला मुशायरा और ये ऑडियंस, ये लोग है
0: जी
1: ना, भरपूर ऑडियंस, पूरा हॉल। तो मैंने गज़ल पढ़ी, तो वो गज़ल जब पढ़ता गया तो सब हर शेर को दोबारा पढ़ना पड़ रहा, ये सब कुछ हुआ। और जब मैं पढ़ के आया हूँ तो मुमताज़ राशिद और जफ़र गोरखपुरी,
0: हाँ
1: तो उस वक्त दाद देने का एक ये भी होता था, ये बड़े लोग जो दाद देते थे, जफ़र गोरखपुरी साहब मेरे बराबर में बैठे थे मैं होता, तो मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा लगा, ये प्यार हुआ ना, तो मुशायरा तो हो गया
0: अरे अब
1: मतलब
0: तो
1: ये।
0: शुरुआत कर रहे थे जबकि।
1: हाँ
0: जी
1: मुशायरा तो हो गया
0: अरे
1: मतलब
0: बाप रे,
1: ये,
0: बहुत बड़ी बात
1: हाँ
0: है।
1: तो ये बड़ी बात थी। तो
0: जी
1: ये मैंने कहा था कि उधर नीरज जी का वो हार पहनाना, माला पहनाना,
0: जी
1: तो ये तो हो गया, मुशायरा तो हो गया। और ये ऐसे सुने, फिर अजीत साहब ने मुझे हैदराबाद बुलाया अपने
0: गजब
1: घर पर, फिर
0: जी
1: उनसे वहाँ से मिलना हुआ, सुनना सुनाना हुआ। तो ये हुआ, ये गज़ल मैं सुन जो बता रहा हूँ जिसके बारे में,
0: जी
1: ये गज़ल जगजीत सिंह साहब को भी बहुत पसंद थी,
0: हाँ
1: और जगजीत सिंह साहब ने इसको धुन भी बनाई, रिकॉर्ड भी किया, उनका
0: हाँ
1: आखिरी एल्बम था ये।
0: ओहो
1: और वो एल्बम रिलीज होने से पहले वो नहीं रहे
0: चले
1: दुनिया
0: गए।
1: में,
0: जी
1: वो
0: जी
1: चले गए,
0: जी
1: वो एल्बम रिलीज नहीं हुआ। चित्रा जी पता नहीं कब करेंगी नहीं करेंगी।
0: जी
1: तो ये गज़ल उन्होंने गाई भी और सुनाई भी। लेकिन इस गज़ल से मैं एक और जो जगजीत जी के साथ जुड़ा, मैं बता रहा हूँ कि मेरी दूसरी किताब पहली उड़ान
0: जी
1: और दूसरी आसमान से आगे,
0: बिल्कुल
1: तो जब आसमान से आगे की किताब के लोकार्पण की बात हुई और मैं चाह रहा था, तो मैं उनको अपने चाह रहा था कि जगजीत जी इसका वो करें। हाँ तो मैं
0: बिल्कुल
1: उनको इनवाइट करने गया और बोला कि मैं चाह रहा हूँ कि आप करें, तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो, मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर में, तो उसमें कर देते हैं, तुम उसको किताब लेके आ जाना फिर अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा।
0: जी।
1: तो किताब लेके रैपर वैपर सबके रिबन में सब लेके भी चला गया। तो मैं मिला वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑडियंस में बैठो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहाँ उसको कर देंगे उसमें सब ठीक है। तो मैं बैठ गया, फिर उन्होंने वो गज़ल गाई, दूसरी गज़ल, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो जगजीत जी ने ये गज़ल गाई और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गज़ल जो मैंने अभी गाई ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है, और आज इत्तेफाक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर आए और आज उनकी किताब का भी वो है, वो लेके आए किताब। तो फिर मैं ऊपर गया और वो नमस्ते और तक क्लैपिंग वगैरह सब कुछ हुआ, फिर जगजीत जी ने वो उसका
0: रिबन
1: वो कर दिया,
0: खोला,
1: रिबन खोला, ऑडियंस के सामने ये सब हो गया और तालियाँ वालियाँ सब हो गई, और मैं स्टेज से उतरने लगा।
0: जी
1: तो बोले नहीं राजेश रुकिए, तो मैं आया तो उनका कंसर्ट है, देखिए स्टेज है
0: हाँ
1: पूरा,
0: बाकायदा, और पूरा
1: हाँ
0: हॉल
1: पूरा
0: भरा हुआ
1: हॉल
0: है।
1: है, म्यूजिक का पूरा सेटिंग है, वो गा रहे हैं, वो बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए,
0: अरे
1: स्टैंडिंग
0: बाप रे।
1: माइक दीजिए। हाँ तो ये इसकी म्यूजिक कोई उम्मीद नहीं, कल्पना नहीं, और तो वो दिया उन्होंने कि तो अब वो गज़ल पढ़िए, जाने कितनी उड़ान बाकी है।
0: अरे बाप रे।
1: वो उससे पहले महफिलों में गा चुके थे, मतलब उनको
0: जी
1: पसंद थी गज़ल, तो सारे तो वो गज़ल पढ़ी, जाने कितनी उड़ान बाकी। तो बात वहीं ख़त्म हुई, मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी।
0: जी
1: हो ये रहा है कि मैं मतलब मैंने पढ़ा शुरुआत की, और जगजीत जी म्यूज़िक के साथ शुरू हो गए,
0: अरे गजब,
1: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
0: जी जी
1: आज
0: जी
1: तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ
0: गजब गजब।
1: ऐसा विमोचन और ऐसी ऐसा सम्मान, ऐसा प्यार। तो मैं पढ़ रहा हूं और वो उसे गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं वो उसे गा रहे हैं,
0: अद्भुत
1: ये
0: अद्भुत।
1: अद्भुत अद्भुत। और जब घर पे मैंने श्रीमती जी को बताया कि ऐसा हुआ, तो वो मुझे क्यों नहीं लगे आप, मुझे
0: अरे
1: क्यों नहीं
0: बाप
1: लगे,
0: रे यार, ये तो
1: और
0: बड़ा
1: आपको
0: मिस
1: मालूम
0: हुआ।
1: था कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, तो मुझे बता दी। तो ये था उनका प्यार,
0: वाह
1: ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका। तो इस गजल के साथ ये जुड़ाव है, इसलिए मैंने बताया
0: क्या
1: था।
0: बात है, ये आपसे सुनेंगे।
1: हाँ जो

0: जाने कितनी उड़ान। और ये शेर खास तौर से यूनुस,
1: स्वागत है।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
1: वाह वाह,
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस

0: रिजल्ट का एक और शेर खास मैं सुनाना चाह रहा हूं।
1: स्वागत है।
0: सर कलम होंगे कल यहाँ उनके,
1: वाह
0: सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके

0: क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। विविध भारती के आपके इस दौर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा वक्त आपने विविध भारती में 2 बार गुजारा है। और मुझे याद है कि आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए, उसमें सरगम के सितारे उजाले,
1: उनकी
0: उनकी
1: यादों पे।
0: यादों के मंथन जैसे कार्यक्रम थे। मुझे लगता है कुछ और भी कार्यक्रम, गुलदस्ता एक कार्यक्रम था जो आपने शुरू किया है, सखी
1: सखी
0: सहेली आपके
1: सहेली।
0: दौर में शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं, इस दौर को याद कीजिए।
1: नहीं, वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और स्वर्णिम दौर था हर तरह से।
0: जी
1: मतलब ये नहीं कि मेरी आखिरी वो पोस्टिंग थी कहना चाहिए, या मेरा करियर का आखिरी पीरियड था, उस लिहाज से नहीं। मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी वो बेस्ट पीरियड था। और उस टीम का जवाब नहीं जिसने
0: बिल्कुल
1: मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीज़ों को संवारने और उसको साकार करने का अवसर दिया, जिसमें मैं बार बार नाम लूँगा। तो सबसे पहले यूनुस,
0: अरे राकेश जोशी जी,
1: राकेश जोशी, उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे, लोकेंद्र जी, महेंद्र मोदी, ममता, कांचन प्रकाश संगीत, कमलेश और शेट्टी जी, जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे एक तरह
0: सब
1: से।
0: चीजों को
1: हाँ,
0: संभालते
1: सबको सब संभालते थे।
0: थे
1: तो एक अच्छी टीम थी
0: जी,
1: जो हर तरह से, जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट था वो था, और
0: बिल्कुल
1: वो अपने को भरपूर सहयोग के साथ, भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ, भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ, मतलब
0: जी
1: हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया।
0: बिल्कुल। और हर
1: ऐसा कम
0: रोज आप
1: होता
0: एक
1: है,
0: नई चुनौती
1: ऐसा
0: सामने
1: कम
0: रखते
1: होता
0: थे
1: है।
0: जी।
1: तो मैं हमने तो ऐसे ऐसे वो दौर देखा और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है जिसके
0: नौशाद
1: साथ
0: साहब आ
1: कहीं।
0: रहे,
1: हाँ,
0: खयाम साहब आ रहे
1: खयाम साहब आ गए, लक्ष्मीकांत के प्यारेलाल जी आए,
0: जी,
1: आनंद जी आए, है
0: बिल्कुल
1: ना, अनु मलिक भी आए, कौन कौन नहीं आए यहाँ पे, तो
0: बिल्कुल,
1: सारे, और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग, है
0: रवि जी
1: ना।
0: आए,
1: हाँ,
0: बिल्कुल
1: खयाम साहब,
0: खयाम साहब आए, और
1: हाँ
0: बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो
1: हाँ हाँ तो
0: रहा
1: बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यूज,
0: है। मुझे याद है कि
1: हमारे
0: खयाम
1: मेहमान।
0: साहब, नौशाद साहब आए हैं,
1: हाँ
0: और हम उनको छोड़ने नीचे गाड़ी तक गए हैं,
1: हाँ
0: और वहीं 1 घंटे बात हो
1: हाँ उनको
0: रही
1: वो नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो, उनको बोलने का बहुत वो था,
0: जी
1: वो अच्छा भी बोलते थे और इतना था उनके पास बोलने का,
0: बिल्कुल
1: और उनको शौक भी था, तो बहुत अच्छी बातें करते थे और देर तक बातें करते थे। कैफी आजमी साहब, तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के भी हमने ये भी किया कि इनको हमको ज़ाया नहीं करना है कि 1 घंटे में बांध लिया, 2 घंटे में बांध लिया उनको, कभी सरगम के सितारे, कभी मैं हमारे मेहमान, कभी इसमें उसमें, जितना हम
0: ज्यादा
1: उनके
0: कर
1: ले
0: सकते
1: सकते हैं
0: थे
1: उनका श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं, ये लोग
0: जी,
1: अब कहाँ आएंगे अब इस दुनिया
0: बिल्कुल
1: में। तो इनका जो है वो है, जो विविध भारती के पास है वो किसी के पास नहीं
0: किसी
1: है,
0: के पास नहीं
1: किसी के पास नहीं है। वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशन पे है,
0: जी,
1: लेकिन इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स जो हैं, इतनी लाइवली रिकॉर्डिंग्स जो हैं, वो संस्मरणात्मक रिकॉर्डिंग है सारी की सारी, या
0: बिल्कुल
1: गानों पे बातें हो रही हैं, या गाने कैसे बने उस पर बातें हो रही हैं, है
0: जी।
1: ना, आपका फेवरेट क्या है, आप वो सारा कुछ, मतलब पूरी उनकी यात्रा,
0: एक से बढ़ के एक
1: एक से
0: चीजें
1: बढ़कर
0: हैं,
1: एक
0: एक से
1: प्रोग्राम जो
0: बढ़ के
1: है
0: एक हैं
1: वो हुए, प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक, तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर
0: और
1: और
0: ट्रिब्यूट
1: पूरा
0: हो रहा है
1: प्रोग्राम शुरू हो गया। तो ये
0: जी
1: सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ और कहीं नहीं
0: जी
1: हो सका।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा, कि चाहे मौजूदा कलाकार हों, चाहे ट्रिब्यूट्स हों, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा, एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था, और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन देना
1: नहीं, क्रिकेट का शौक बहुत अरसे से रहा और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है,
0: जी
1: तो थोड़ा बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, वो दीवानगी का वो आलम था कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए,
0: जी,
1: तो ये भी हुआ है। और ख़ासतौर से जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में, तो
0: बिल्कुल
1: उसके बाद तो कोई कमाल ही हो गया मतलब। और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव था, स्पोर्ट्स भी था, देखता था,
0: जी
1: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद आया।
0: बिल्कुल। विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए आपके दौर में, और मंथन किया जब पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम, और ऐतिहासिक दौरा था, दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में, और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को, तो एक जुनून, उससे मैं वाकिफ हूं।

0: एक जरूरी बात रह गई है, और वो है रेखा जी से आपकी मुलाकात की बात।
1: रेखा से, रेखा का यूं है कि वो हम लोग एमए में साथ थे,
0: जी,
1: एमए हिंदी लिटरेचर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो एक ही क्लास में थे और हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं जैसे मैंने बताया, हमारे पिताजी पीएनटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सरकारी मुलाजिम के बेटे बेटा, वो इस तरह से परिवार में पला बड़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की जी फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवानी रहे हैं
0: जी
1: मतलब, तो वो बिजनेस में थे जापान में, हमारे फादर इन लॉ, दोनों ब्रदर इन लॉ हांगकॉन्ग मनीला, तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, मतलब उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था,
0: जी
1: तो कोई संभावना नहीं थी उसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में, थोड़ी पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी, लिखने वाले के तो, और अट्रैक्शन भी हो ही गया था, और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ है, लेकिन शादी तक की बात, ये उनका साहस था।
0: जी
1: प्रपोज तो नेचुरली मैंने ही किया था, लेकिन हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और विलोम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है,
0: जी
1: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है
0: ओके
1: घर में, तो वहाँ तो राजी होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो मान जाए। तो अच्छा, उस वक्त हमारे इन लॉ, फादर इन लॉ जापान में रह रहे थे, ये हमारी जो सास है मदर इन लॉ जो है वो उनके साथ ये रह रही थी, सब कुछ दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहाँ मौजूद नहीं था, और माँ को भी ये बताने की और इस हालत में वो उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे समाज में शादी करते हैं।
0: अरे बाप रे। हाँ
1: तो आर्य समाज में तय हुआ शादी, अब मेरे को निकट के मित्र 5-7, और उस वक्त भी मतलब मैं क्योंकि अपने कॉलेज के ज़माने से अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था, तो अपने लेक्चरर्स का चहेता बन गया था, मतलब ये था, तो
0: जी
1: वो सब
0: जी
1: आगे आगे करते थे, तो मेरे 2-3 जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए,
0: अरे वाह,
1: आर्य समाज की शादी में,
0: क्या बात है।
1: तो वो उन्होंने संभाला और सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद वो अपने घर चली गई, मैं अपने
0: अरे
1: घर चला आया,
0: जी,
1: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूँ
0: हाँ
1: कि हम मैंने शादी कर ली है,
0: हाँ
1: और तो अब तो
0: कुछ हो नहीं
1: मुमकिन ही
0: सकता
1: होंगी
0: था।
1: नहीं कि सबकी, तो हमारे जो लेक्चरर्स थे तो
0: हाँ
1: नेचुरली वहाँ से रेजिस्टेंस होना था कि नहीं नहीं तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं, वो करते हैं, तो उन्होंने वो दौड़े दौड़े जापान से लौट के आए,
0: हाँ
1: फिर उन्होंने सब बता दिया सब कुछ, तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये मुझे लग नहीं रहा कि मानेंगे, तो
0: हाँ
1: मुझे यहाँ से ले जाओ,
0: अरे बाप रे।
1: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूँ मैं अब, तो
0: हाँ।
1: मुझे ले जाओ यहाँ से। तो मैं अपने 2 लेक्चरर्स के साथ घर गया हूँ उनके, और
0: गजब।
1: हाँ, और हमारे फादर इन लॉ जो मौजूद थे,
0: हाँ
1: तो फिर हाँ, आइए बैठिए, चाय वाय पी सब कुछ कुछ, तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए ना,
0: हाँ
1: हम इसको ढंग से करते हैं, इसको करेंगे
0: हाँ
1: उसको कुछ, लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, बोले नहीं
0: ये नहीं हो रहा
1: ये
0: है।
1: नहीं होने देंगे,
0: हाँ
1: मैं भी चलूंगी,
0: गजब,
1: मैं भी चलूंगी। तो
0: बाप रे।
1: फिर उन्हीं के साथ हम लोग बाहर आ गए और हम लोग निकल आए, और फिर मैंने अपने घर वालों को भी तब बताया
0: जी,
1: जब उनको लेके आया कि मेरी शादी हो गई है,
0: और
1: पता
0: ये
1: नहीं।
0: है।
1: हाँ, तो इस तरह से ये पूरी कहानी हुई, और इसके पीछे मेरी तो जो है सो है,
0: हाँ
1: सारा साहस इनका है,
0: क्या बात है
1: ये उस जमाने में।
0: जी, शानदार शानदार। तो ये अद्भुत कहानी रही है, और ये हमारे सुनने वालों के साथ शेयर हुई, तो ये भी एक दिलचस्प है। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश छूट जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, 2 एपिसोड में उनको समेटना बड़ा मुश्किल था। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी।
1: जरूर।
0: चलते चलते आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
1: मैं 2-3 शेर सुनाता हूँ,
0: जी जरूर इरशाद।
1: ये रोजमर्रा का सच हम सबके साथ। किसी दिन जिंदगानी में
0: किसी दिन
1: करिश्मा
0: जिंदगानी,
1: क्यों नहीं होता,
0: वाह
1: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता,
0: वाह वाह वाह वाह वाह
1: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, زندہ کیوں نہیں ہوتا؟
0: بابا
1: میری ایک زندگی کے کتنے حصے دار ہیں لیکن، میری ایک زندگی کے
0: کتنے
1: حصے دار ہیں لیکن کسی کی زندگی میں میرا حصہ کیوں نہیں ہوتا؟
0: واہ واہ واہ،
1: میری ایک زندگی کے کتنے حصے دار ہیں لیکن کسی کی زندگی میں میرا حصہ کیوں نہیں ہوتا؟ اور دو چھوٹی چھوٹی بہر کے شعر
0: ارشاد،
1: ایک تو یہ شعر کہ ایک آنسو کورے کاغذ پر گرا،
0: واہ،
1: ایک آنسو
0: کورے کاغذ پر گرا
1: اور ادھورا خط مکمل ہو گیا،
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ، کیا بات،
1: ایک آنسو کورے کاغذ پر گرا اور ادھورا خط مکمل ہو گیا،
0: کیا بات ہے،
1: اور یہ شعر آخر میں، غم چھپانا کوئی مذاق نہیں، غم چھپانا کوئی مذاق نہیں، دیر تک مسکرانا پڑتا ہے،
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات،
1: غم چھپانا کوئی مذاق نہیں، دیر تک مسکرانا پڑتا ہے،
0: کیا بات ہے، کیا بات ہے، سر اتنی ساری باتیں ہوئیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی غزل سنائیں جو آپ کے اس پورے رچناتمک سفر کی ریپریزنٹیٹیو ہو، جو آپ کے من کی ہو، جسے آپ ضرور سنانا چاہیں۔
1: یونس، یہ غزل میں اس لیے خاص محسوس کرتا ہوں اپنے کریٹیو سفر کی، کہ رامپور کی ایک بہت مشہور لائبریری ہے، رضا لائبریری،
0: جی جی بالکل،
1: تو اس میں ریسرچ کا نامی گرامی لوگ تو آئے، بہت اچھی محفل تھی، تو اس میں یہ غزل جو میں نے پڑھی،
0: جی،
1: تو اتنا پیار ملا، طرح مشاعرہ تھا جو میرا پہلا انوبھو تھا،
0: جی جی،
1: مطلب کسی لائن
0: ہوتا ہے،
1: لیکن یہ غزل مجھے وہاں دو بار پڑھنی پڑی،
0: کیا بات ہے،
1: اتنا پیار ملا، تو وہ حاصل مشاعرہ ثابت ہو گئی،
0: واہ،
1: تو اس لیے میرے لیے وہ جو ہے بڑی یادگار غزل رہی، تو میں وہ اس کے کچھ شعر پڑھ دیتا ہوں۔
0: ارشاد، ارشاد،

0: अब क्या बताए टूटे हैं कितने कहाँ से हम, खुद को समेटते हैं यहाँ से
1: क्या बात
0: वहाँ
1: है,
0: से
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: हम।

0: और ये शेर में जो खास सुनाना चाह रहा हूँ,
1: इरशाद
0: इसमें एक लफ्ज है, शब्द है शराब।
1: जी,
0: एक होता है शराब और
1: और
0: एक होता
1: ये
0: है
1: होता है
0: सराब, जिसे
1: शराब।
0: मृगमरीचि का
1: जी
0: मिराज जिसे उर्दू इंग्लिश में
1: यस,
0: बोलते हैं, कि रेगिस्तान में पानी जैसा होता है, दिखता है, होता नहीं,
1: होता नहीं,
0: है ना, मरुस्थल में।
1: आग का धोखा है।
0: हाँ, पानी का धोखा, आँख का धोखा, वो सब रहे। तो ये जो इस्तेमाल किया, उस पर पूरी जो महफिल थी उसने प्यार दिया। अब क्या बताएं, टूटे हैं कितने कहाँ से हम, अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास,
1: वाह वाह, अब तो शराब
0: अब
1: से
0: तो
1: ही।

0: कहाँ से हम।
1: क्या बात है,
0: थैंक
1: क्या बात है।
0: यू
1: तो आगे की बातचीत के लिए प्यास बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी बातें की।
0: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, और पूरे विविध भारती परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार, और अपने पूरे परिवार में फिर एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और पुराने श्रोताओं से मिलने के लिए, मिलाने के लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया।
2: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: आज के मेहमान।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और इटली द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इटली के रोम में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी में तकनीक और नवाचार मुख्य केंद्र हैं।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि श्री मेलोनी के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा और ऊर्जा मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की सभ्यता बहुत पुरानी है।
1: रोम को विश्व में इटर्नल सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत में मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी काशी उसको भी अनादि और शाश्वत नगर माना जाता है। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती। इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं।
0: हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तर पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह आत्मनिर्भर भारत की पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। उन्होंने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रणनीतिक उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एक जनहित याचिका का जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्ति में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कश्मीरी लड़ाकों द्वारा सेना के वाहन पर हमले के बाद सैनिकों के मारे जाने की सोशल मीडिया की खबरों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तंत्र जांच इकाई ने बताया कि क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर निर्भर है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में लू की आशंका व्यक्त की है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड में लू चल सकती है, जबकि असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। अब आइए आपको जानकारी देते हैं आज शाम हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

0: कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे पहाड़ी भजनों पर आधारित कार्यक्रम भजन संध्या। युव मंच कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। शाम 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। खेतीबाड़ी कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:30 पर। शाम 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे। 7:05 पर आपको सुनवाएंगे फिल्मी भजन। 7:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रौनका गराइंदियां। 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। इस दौरान 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। विज्ञान जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:00। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चांदनी रातें और देर रात 11:00 आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे। ये थी आज शाम हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।
1: बड़ी बहू
2: ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
2: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम।
1: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
3: दादी आपके नाम।
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
3: क्या
4: RBI कहता है।
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
0: FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 5:07 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं पहाड़ी भजनों पर आधारित कार्यक्रम भजन संध्या। भजन संध्या कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राम राम। कार्यक्रम की शुरुआत आइए करते हैं इस भजन के साथ।

जहाँ भजन की स्वर लहरियाँ गूंजती हैं, वहाँ श्रद्धा, शांति और भक्ति का सुंदर संगम खुद ही बन जाता है। भजन संध्या सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम, आस्था और आत्मिक शांति का उत्सव है। करनैल राणा और साथियों की आवाज़ों में ये भजन आपने सुना। अब आइए सुनते हैं शेर सिंह की आवाज़ में ये भजन।

भजन संध्या कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनते हैं जोगिंदर बल्ला की आवाज़ में माता रानी की ये भेंट।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अभी आप सुन रहे थे पहाड़ी भजनों पर आधारित कार्यक्रम भजन संध्या। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवमंच।

युवमंच कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम में हम हाजिर हैं कुछ जानकारियों के साथ, बात करेंगे आज के विशेष दिन की, फिर आपके करियर से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां आपसे साझा करेंगे और साथ ही साथ मनोरंजन के लिए कुछ फिल्मी गीत भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत आज के विशेष दिन की जानकारी के साथ। आज के विशेष दिन की बात करें तो आज है 20 मई और हर साल 20 मई को मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। जी हाँ, और इस दिन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागकणों के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 दिसंबर सन 2017 में स्लोवेनिया के प्रस्ताव के बाद की गई थी। पहला विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई 2018 को मनाया गया था। 20 मई का दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रदूत एंटोन जानसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चुना गया था, जिनका जन्म 1734 में इसी दिन हुआ था। मधुमक्खियां पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वो परागकण की प्रक्रिया में मदद करती हैं, जो पौधों के प्रजनन और हमारे भोजन के उत्पादन जैसे फल और सब्जियों के लिए बहुत जरूरी है। हर साल विश्व मधुमक्खी दिवस मनाकर हम मधुमक्खियों और अन्य परागकणों की उस महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं जो लोगों और पृथ्वी को स्वस्थ रखने में निभाती हैं, और साथ ही उन चुनौतियों के बारे में भी जो आज उनके सामने हैं। स्लोवेनिया सरकार और एपिमोंडिया के सहयोग से किए गए प्रयासों के फलस्वरूप हम 2018 से इस दिन को मना रहे हैं, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस घोषित किया था। इस आयोजन की तिथि इसलिए चुनी गई थी क्योंकि इसी दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रदूत एंटोन जानशा का जन्म हुआ था। जानशा स्लोवेनिया के मधुमक्खी पालकों के परिवार से थे, जहां मधुमक्खी पालन एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि है जिसकी एक लंबी परंपरा है। आज मधुमक्खियों, परागण करने वाले कीटों और कई अन्य कीटों की संख्या में गिरावट आ रही है, तो ये दिन हम सभी के लिए एक अवसर प्रदान करता है। चाहे हम सरकारों, संगठनों या नागरिक समाज के लिए काम करते हों या जागरूक नागरिक हों, परागण करने वाले कीटों और उनके आवासों की रक्षा और संवर्धन करने, उनकी संख्या और विविधता में सुधार करने और मधुमक्खी पालन के सतत विकास का समर्थन करने वाले कार्यों को बढ़ावा देने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे छोटे से जीव की जिसका आकार भले ही छोटा हो, लेकिन प्रकृति और मानव जीवन में उसका योगदान बहुत ही विशाल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधुमक्खियों की, और इसी महत्व को समझाने के लिए हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अगर मधुमक्खियाँ सुरक्षित रहेंगी तभी हमारी धरती पर हरियाली, जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा बनी रहेगी। मधुमक्खियां सिर्फ शहद देने का काम ही नहीं करती, बल्कि वो फूलों और पौधों में परागण की प्रक्रिया को पूरा करके फसलों की पैदावार बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दुनिया की लगभग एक तिहाई खाद्य फसलें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परागण करने वाले जीवों पर निर्भर करती हैं, जिनमें मधुमक्खियां सबसे प्रमुख हैं। अगर ये ना हो तो फलों, सब्जियों और अनाजों का उत्पादन गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। आज के आधुनिक समय में मधुमक्खियों का अस्तित्व कई चुनौतियों से घिरा हुआ है। बढ़ता प्रदूषण, जंगलों की कटाई, कीटनाशकों का बहुत ज्यादा प्रयोग और जलवायु परिवर्तन इनके जीवन के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। शहरों में फैलते कंक्रीट के जंगलों ने फूलों और पेड़ पौधों की संख्या कम कर दी है, जिससे मधुमक्खियों को भोजन और सुरक्षित आवास नहीं मिल पाता,
और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में मधुमक्खियों और अन्य परागण करने वाले जीवों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। ये सिर्फ पर्यावरण की समस्या ही नहीं बल्कि मानव जीवन और भविष्य से जुड़ा एक गंभीर विषय है, क्योंकि अगर मधुमक्खियां खत्म हो जाएंगी तो प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। मधुमक्खियों से हमें सिर्फ पर्यावरण संरक्षण की ही नहीं बल्कि अनुशासन, परिश्रम और एकता की भी सीख मिलती है। एक छोटा सा छत्ता हजारों मधुमक्खियों के सामूहिक प्रयास से बनता है। हर मधुमक्खी अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करती है। कोई फूलों से रस लाती है, कोई छत्ते की रक्षा करती है, तो कोई नई पीढ़ी की देखभाल करती है। ये हमें सिखाता है कि जब समाज का हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझकर मिलजुल कर काम करता है, तभी विकास और समृद्धि संभव होती है। युवाओं के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि टीमवर्क और मेहनत से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम

भी मिलकर मधुमक्खियों और पर्यावरण की रक्षा के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। अपने घरों और आसपास फूलदार पौधे लगाएं, रासायनिक कीटनाशकों का कम प्रयोग करें और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करें। अगर हम आज जागरूक होंगे तभी आने वाला कल सुरक्षित और सुंदर बन सकेगा। विश्व मधुमक्खी दिवस सिर्फ एक दिवस नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझने का अवसर है। ये हमें बताता है कि धरती पर मौजूद हर छोटा जीव भी जीवन चक्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए आइए हम सब संकल्प लें कि पर्यावरण की रक्षा करेंगे, पेड़ पौधों को बचाएंगे और मधुमक्खियों सहित सभी जीवों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करेंगे। जी, तो ये थी जानकारी विश्व मधुमक्खी दिवस की। और अब इसके साथ ही अब हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। जी हाँ, आज उनकी जयंती है जो कि हर वर्ष 20 मई को मनाई जाती है। उनका जन्म 20 मई 1900 में उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम गुसाई दत्त था। उनके जन्म के कुछ ही घंटों बाद उनकी माँ का निधन हो गया था, जिसके बाद उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया था। उन्हें प्रकृति का चितेरा कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य में छायावाद को स्थापित करने में उनका और उनकी कविताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्हें सन 1961 में पद्म भूषण और उनकी रचना चिदंबरा के लिए 1968 में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं से समृद्ध करने वाले इस महान कवि का निधन 28 दिसंबर सन 1977 में हुआ था। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के महान कवि, प्रकृति प्रेमी और छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती के बारे में। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी कविता के ऐसे उज्ज्वल सितारे थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रकृति, मानवता, प्रेम और सौंदर्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की। उनका जन्म 20 मई सन 1900 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गाँव नामक सुंदर से स्थान में हुआ था। हिमालय की गोद में बसे उस प्राकृतिक वातावरण ने उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था और यही कारण है कि उनकी कविताओं में प्रकृति का अद्भुत चित्रण देखने को मिलता है। सुमित्रा नंदन पंत जी हिंदी साहित्य में छायावाद के चार प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ पंत जी ने हिंदी कविता को नई दिशा दी। उनकी कविताएं सिर्फ शब्दों का ही सुंदर मेल नहीं बल्कि उनमें संवेदनाएं, भावनाएं और प्रकृति के प्रति बहुत गहरा प्रेम झलकता था। उनकी रचनाओं में पहाड़ों की शांति, फूलों की कोमलता, नदियों की मधुर ध्वनि और मानव जीवन की सुंदरता का अत्यंत जीवंत चित्रण मिलता है और यही कारण है कि उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी का बचपन कठिनाइयों से भरा रहा। जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता का निधन हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी संवेदनाओं और अनुभवों को कविता का रूप दिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई और आगे की पढ़ाई के लिए वो प्रयाग गए। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया और अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ दी। ये उनके देश प्रेम और जागरूकता का प्रमाण था। उनकी कविताओं में सिर्फ प्रकृति ही नहीं बल्कि समाज और मानवता के प्रति चिंता भी दिखाई देती है। समय के साथ उनकी रचनाओं में प्रगतिशील विचार आने लगे। उन्होंने समाज में समानता, मानव प्रेम और शांति का संदेश दिया। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में पल्लव, ग्राम्या, युगांत, चिदंबरा और लोकायतन जैसी रचनाएं शामिल हैं। उनकी भाषा बहुत ही मधुर, सरल और भावपूर्ण थी जो सीधे दिल को छू जाती हैं। उनकी कविताएं पढ़ते समय ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद बोल रही हो। युवाओं के लिए सुमित्रा

0: चित्रानंदन पंत जी का जीवन बहुत प्रेरणादायक है। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में संवेदनशीलता, प्रकृति प्रेम और सकारात्मक सोच कितनी महत्वपूर्ण है। आज के आधुनिक और व्यस्त जीवन में जहां लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, वहां पंत जी की कविताएं हमें फिर से प्रकृति के करीब ले जाती हैं। वो हमें ये भी सिखाते हैं कि साहित्य सिर्फ मनोरंजन का ही माध्यम नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने और जीवन को सुंदर बनाने का एक सशक्त साधन है। आज के युवाओं को पंत जी के विचारों और साहित्य से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। हमें अपने जीवन में प्रकृति के प्रति प्रेम, मानवता के प्रति सम्मान और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करनी चाहिए। मोबाइल और इंटरनेट के इस दौर में अगर हम साहित्य और पुस्तकों से जुड़ें तो हमारा व्यक्तित्व और भी समृद्ध बन सकता है। उनकी रचनाएं हमें कल्पनाशील बनाती हैं और जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखने की प्रेरणा देती हैं। सुमित्रानंदन पंत जी को उनके साहित्यिक योगदान के लिए बहुत सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया। ये उनके साहित्य और समाज के प्रति योगदान का सम्मान था। हिंदी साहित्य में उनका स्थान हमेशा अमर रहेगा और आने वाली पीढ़ियां भी उनकी रचनाओं से प्रेरणा लेती रहेंगी। सुमित्रानंदन पंत केवल एक महान कवि ही नहीं थे, बल्कि वो भारतीय संस्कृति और मानवीय मूल्यों के सच्चे उपासक भी थे। उनकी कविताओं में हमें भारतीय सभ्यता की सुंदर झलक दिखाई देती है। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से ये संदेश दिया कि मनुष्य को प्रकृति और समाज के साथ सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। उनकी रचनाएं हमें ये अनुभव कराती हैं कि जीवन का वास्तविक सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि प्रकृति की सुंदरता, सरलता और मानवीय संवेदनाओं में छुपा हुआ है। आज की युवा पीढ़ी तेजी से बदलती दुनिया में आगे बढ़ रही है। तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों के भीतर तनाव, अकेलापन और संवेदनहीनता भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे समय में पंत जी का साहित्य हमें मानसिक शांति और सकारात्मक सोच प्रदान करता है। उनकी कविताएं हमें प्रकृति के करीब ले जाकर ये एहसास कराती हैं कि जीवन की वास्तविक सुंदरता हमारे आसपास ही मौजूद है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है। उन्होंने अपनी कविताओं में युवाओं को जागरूक और संवेदनशील बनने का संदेश दिया। वो मानते थे कि युवा ही समाज और राष्ट्र का भविष्य होते हैं। अगर युवा सकारात्मक सोच, ज्ञान और संस्कारों के साथ आगे बढ़ें तो देश प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे विचारों, साहित्य और संस्कृति को स्थान देना चाहिए। सिर्फ आधुनिकता की ओर बढ़ना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अपनी भाषा, संस्कृति और साहित्य से जुड़े रहना भी उतना ही जरूरी है। उनका जीवन हमें ये भी सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हम अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर सफलता पा सकते हैं। उन्होंने संघर्षों के बावजूद साहित्य की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी लेखनी में जो मधुरता और गहराई थी, वो आज भी लोगों के दिलों को छू लेती है। उनकी कविताएं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम युवाओं को हिंदी साहित्य के महान रचनाकारों से परिचित कराएं। जब युवा साहित्य से जुड़ेंगे तब उनमें संवेदनशीलता, रचनात्मकता और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा। तो क्यों ना सुमित्रानंदन पंत जी की जयंती पर हम सभी ये संकल्प लें कि प्रकृति की रक्षा करेंगे, हिंदी भाषा का सम्मान करेंगे और अपने जीवन में साहित्य और संस्कारों को महत्व देंगे। जी युवा साथियों, अब आज के विशेष दिन की इस जानकारी के बाद कार्यक्रम में अब वक्त है एक ब्रेक का, और इस ब्रेक में हम सुनेंगे एक विज्ञापन और फिर आपको ले चलेंगे संगीत की ओर।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: ক্রেতা টেলিলকে অ্যাপ, ওয়েবসাইট www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
2: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर A.S. ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
1: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
2: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
3: जी युवा साथियों, इस म्यूजिकल कम कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और जानकारियां आपसे साझा करते हैं।

युवा साथियों, हार जीत की परिभाषा बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि हार तब है जब अगली बार विचार ना किया जाए। हार तब है जब हम ऐसे हार गए कि अगली बार उस काम को सही ही मान लिया। अगर ईमानदारी से विरोध किया और उसके बाद भी हार जाओ तो इसको हार मत मान लेना, ये जीत है। हार कब है? जब अगली बार विरोध ही ना करो। हमारा काम है एक हार से दूसरी हार तक की यात्रा करना, और यही जीत है। हार हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हौसला टूटना नहीं चाहिए। हार कब होती है? जब यात्रा रुक जाए। हार तब होती है जब हम हारना ही छोड़ दें। हार के डर से हमारा काम है बार बार मैदान में उतरना हारने के लिए, ये जीत है। हार तब है जब मैदान पर उतरना ही छोड़ दें। हमारे चुनाव की बात होती है कि हम उठ रहे हैं कि नहीं। हम प्रदर्शित करते चलेंगे कि हम उठ तो रहे ही हैं, उस पर हमारा अधिकार है और वही हम कर सकते हैं बस। क्योंकि हार हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हौसला बना रहने चाहिए। चुनौतियां और असफलताएं हमारी यात्रा का हिस्सा हैं, उनसे घबराएं नहीं। हर असफलता हमें अगली सफलता के लिए तैयार करती है, बशर्ते हम सकारात्मक दृष्टिकोण और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। ध्यान ना भटकने दें। उन चीज़ों की सूची बनाएं जिनकी वजह से हमारा ध्यान हमारे करियर से भटकता है, हमारी एकाग्रता टूटती है। ऐसी चुनौतियां हमेशा हमारे सामने आएंगी। इन मुश्किल स्थितियों से निपटकर अपने काम पर फोकस बनाए रखें। हर किसी को खुश करने की कोशिश करके अपने आप को परेशानी में ना डालें। इससे हम अपना समय भी बचा सकते हैं और अपने काम में अच्छा आउटपुट भी दे सकते हैं। हर दिन की योजना बनाएं। हमें कब, क्या और क्यों करना है, हर दिन के बारे में हमारी स्पष्ट योजना होनी चाहिए। सबसे मुश्किल काम को दिन में सबसे पहले निपटाएं। और बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें। अपनी कल्पना शक्ति को सम्मान दें। पूरी सकारात्मक ऊर्जा और कड़ी मेहनत के साथ काम पर ध्यान लगाएं। जो पसंद है उसे करें, बस कर देना है। इस दृष्टिकोण के साथ उस काम को चुनें जिसे करना आपको बहुत पसंद है। अपने फैसले पर अडिग रहें। अगर आपने कोई फैसला कर लिया है तो उसे बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि उस पर टिके रहें। उम्मीद से ज़्यादा करने की कोशिश करें। अपना परिणाम मिल जाने या काम हो जाने के बाद खाली ना बैठें। उम्मीद से ज़्यादा करने की कोशिश करें। कुछ ज़्यादा करना हमेशा ही फायदेमंद रहता है। अपने आप को हमेशा प्रोत्साहित करते रहें। कोई भी आपका उत्साह नहीं बढ़ाएगा, आपको अपना उत्साह खुद ही बढ़ाना है, खुद ही खुद को चार्ज करना है। इसके लिए किसी तरह के पावर बैंक की उम्मीद ना करें और असफलता से ना डरें। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। याद रखें, सबसे सफल लोग भी सफलता पाने से पहले कई बार असफल हुए। तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि हौसला ना टूटे, हौसला नहीं टूटना चाहिए। युवा साथियों, अब इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न करने की लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवमंच, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल को देश भर में छठा स्थान प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इस रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश 7 अंकों की छलांग लगाकर 13वें से 6ठे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए शिक्षा विभाग के सभी अध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं और सभी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू कर दिया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि सरकार द्वारा अध्यापकों को एक्सपोजर विजिट के लिए विदेश भेजा जा रहा है और उत्कृष्ट विद्यार्थियों को भी विदेश भ्रमण करवाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 16 जून से शुरू हो रहा है, जो 15 जुलाई तक चलेगा। जनगणना के सफल कार्यान्वयन को लेकर आज जनगणना कार्य निदेशालय शिमला में एक बैठक हुई, जिसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन, सीबीसी और पत्र सूचना ब्यूरो के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान जनगणना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए रणनीति बनाई गई। जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक दीप शिखा शर्मा ने बताया कि जनगणना 2027 में पहली बार परिवार को स्वगणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा और लोग पहली से 15 जून तक ऑनलाइन माध्यम से वेब पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से जनगणना में सहयोग की अपील की है।
1: हिमाचल प्रदेश में जो जनगणना 2027 उसका प्रथम चरण जो कि मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण है, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर कंडक्ट हो रहा है और इस बार हमारा जो सेंसस है वो डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए जनगणना में स्वगणना का जो प्रावधान है उसे भी रखा गया है। जो हमारे हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं वो स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी 1 जून से 15 जून के भीतर उसको दर्ज कर सकते हैं। प्लीज आप स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करें। जनगणना की जानकारी जो है वो कॉन्फिडेंशियल है। यदि कोई स्वगणना के विकल्प को भी नहीं चुनता है तो भी जो हमारा प्रगणक है वो हर जगह जाएगा, हर कोने में जाएगा, प्रदेश के हर एक घर को जो है वो कवर किया जाएगा।
0: प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। राज्य में 131 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं, जिनमें से सबसे अधिक 42 पंचायतें शिमला जिले की हैं। प्रदेश भर में 176 पंचायत प्रधानों का चुनाव निर्विरोध हुआ है और इनमें से सबसे अधिक 51 पंचायत प्रधान शिमला जिले के हैं। चुनाव से जुड़े अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक इस बार बैलेट बॉक्स पर लगे QR कोड को स्कैन करने के बाद ही पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए रवाना की जाएंगी। नाहन में भी आज मतदान अधिकारियों को दूसरे चरण का प्रशिक्षण दिया गया। खंड विकास अधिकारी अंजलि गर्ग ने बताया कि 23 मई को तीसरे चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा।
2: हमारे जैसे कि पंचायती राज चुनाव है 26, 28 और 30 को तीन फेजेस में, तो उसके लिए हमारी पूरी तैयारियां चल रही हैं नाहन ब्लॉक में। और अभी हमारी जो ट्रेनिंग्स है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की और पोलिंग ऑफिसर्स की चल रही है। हमें जो स्टेट इलेक्शन कमीशन से गाइडलाइंस आई हैं, तो बैलेट बॉक्सेस पे QR कोड है जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स स्कैन करेंगे और फिर उनको जो मूवमेंट जो है ट्रैक होगी। तो उसकी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आज हमने केवल प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बुलाया है और हमारी अगली ट्रेनिंग, थर्ड ट्रेनिंग रहेगी 23 तारीख को, और 24 को हम सारी पोलिंग पार्टीज और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को रवाना कर देंगे।
0: शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आज से 2 दिवसीय शिक्षा व करियर मार्गदर्शन मेला शुरू हुआ। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान विद्यार्थियों व अभिभावकों को उच्च शिक्षा, करियर विकल्पों और विभिन्न व्यावसायिक कोर्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। रोहित ठाकुर ने कहा कि इस तरह के एजुकेशन एक्सपो बच्चों के लिए मददगार साबित होते हैं और उन्हें बेहतर करियर चुनने का मार्गदर्शन मिलता है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने हाल ही में घोषित हुए 10वीं व जमा 2 कक्षा के परिणामों में 85% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले लगभग 150 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बेंगलुरु में आध्यात्मिक गुरु व आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के संस्थापक श्री श्री रविशंकर से भेंट की। उन्होंने आश्रम में कार्यरत हिमाचल के लोगों से भेंट की और गौ सेवा भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्री श्री रविशंकर को प्राकृतिक खेती व बेसहारा गौवंश के संरक्षण के लिए हिमाचल सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने।

सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। नए पुराने गानों के आज के इस सुहाने सफर की आइए करते हैं शुरुआत इस गीत के साथ।

लता मंगेशकर की आवाज़ में गाइड फिल्म से ये गीत आपने सुना। अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में मिस्टर नटवर लाल फिल्म से ये गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम में समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ।

उदित नारायण और हेमा सरदेसाई की आवाज़ों में पुकार फिल्म से ये गीत आपने सुना। संगीत वो सफ़र है जो पुराने गीतों की यादों को नए एहसासों से जोड़ देता है। पुराने नगमों की मिठास और नए गीतों की ताजगी, यही है इस सफ़र की खूबसूरती। तो इस खूबसूरती को यूं ही बरकरार रखते हैं, इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं, आइए ये गीत सुनते हैं।

0: आतिफ असलम और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत आपने सुना किस्मत कनेक्शन फिल्म से। अगला गीत आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

ये थी आज की अंतिम प्रस्तुति और अब इसी के साथ नए पुराने गानों का आज का ये सुहाना सफर अब यहीं संपन्न करने की लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: जो जी ऐसे इड़ी जिया किस्म बाण चाहे नहीं इस अतिरिक्त जी ऐसे जिया बरसा उपहार अर्का अभय अर्का अनामिका परवणी क्रांति ए किस्मा अहां दे इलाके च जी सब ते अच्छी मनिया जांदियां पर दे ना ताई भी टाइम टाइम जी निराई गुड़ाई क्योंकि भिंडिया दे खेत च खरपतवार मुक्त रखने ताई फसला दी बिजाई ते 15 ते 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई जी से अहां जो करी देना चाहिंदे।
1: निराई गुड़ाई तो मैं करी थी ना ताले दे फसल वाई तो खरपतवार दे ऐसा मैं पूरा पटीते भी है पर फसल दी बिजाई ते बाद भी 15 ते 20 दिन बीच पहली निराई गुड़ाई करी थी ही ना
0: हाँ।
1: करना चाहिंदी सुनू तो मैं भी ऐसे मरू
0: हाँ।
1: पर दिख खरपतवार नाशी थी कई बारी भी बोलते ना भी दवाई का स्प्रे कर देना तो सब भी कर सकते भी ये
0: करी सकते पर जी जैविक तरीके ने अहां निदान करना ना ताई तो ज्यादा खरा रहा क्योंकि तीस ते अहां तुहां जो नुकसान भी नहीं होना कने अहां दे जेड़े खेतर दे ए मिट्टी दे पोषक तत्व है ना सब भी बरकरार रहेंदे ना तो क्या होंदा पे एकदम अहां कोई भी रासायनिक खादां दा छिड़काव करिंदे तो पौधा तो हां जो एकदम हो जांदा पर तीस ते फायदा होंदा पे फसल ज्यादा हो जांदी पर अहां दे शरीर जो या अहां दे खेतर जो भी जैसा नुकसान होंदा।
1: कने दिख एक गल और गलाऊं तले दे मैं भिंडी बाई थी ना तो इस बीच दिख मैं बीज उपचार भी जरूर कीते भी 15 ते 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर दी बीज दी आवश्यकता कन्ने ही बीज बाने ते पहले तो इस जो 24 घंटे पानिए बीच डुबोई ने रखना चाहिए कने बीज अंकुरित दे असे खरा हो जाता भैया कने बीज दे असे तले जमीन च भी खरा दे असे मतलब जमी आता कने रोगों से भी बचुआ रहा भी है कई बार ना क्या होंगे भी तीन बीजों जो कई रोग लगे आते तो इस तरह हाँ कारवेंटा जीम कने फफूंद नाशक दे अस उपचारित करी लेना चाहिए तिना बीजों जो
0: हाँ ये तो तुह खरी गल गलाई पे बीज जेड़ा भी बाहना ना जी भिंडिया का बीज अगर बाहना तो राती डुबोई ने रख देना पानी च इसते बाद जल जहाँ बांध दे तो बड़ा छैल लगी आंदा कने इस ते अलावा जी बीज भिंडी दी बिजाई जी अहाँ करनी से अहाँ जो कतारा च करना चाहिए है ना इं नहीं पे जी जी अहाँ छलियाँ दा दिंदे छट्टा तो इं नहीं करना पे हाँ पे छट्टा दित्या कने भिंडियां बाई तियां फिर क्यारू खूनी था तो तिंग नहीं करना एक बड़े अच्छे तरीके ने भिंडिया की बिजाई जी इसे लाइन च बाहना चाहिए कने कतारा की दूरी जी इसे 45 ते 60 सेंटीमीटर होना चाहिए जबकि
1: जी
0: पौद्या की दूरी जी इसे लगभग 15 सेंटीमीटर जी इसे अहाँ जो रखना चाहिए कने इस ते बाद बीज घट उगो तो अहाँ जो दोबारा बिजाई जी से करी देना चाहिए तो तुम बोले ना सही तरीके ने नहीं हुई तो तीस जो इस कने हूँ तो दिखा भी टाइम है इस बार तुम बाई सकते हैं ना गर्मियों की भी बरसाती की भी
1: जी
0: तो इस टाइम तुम तीस खेतर च फिर अगर तुम जो लगा जो पौधे नहीं चला दे तो तिना की जगह और जी से बी लगाई सकते
1: पर इस सिंचाई ताई सिमरो अगर खेतों में नमी रहे ना तो बीज दे से खरे कन्ने अंकुरित हो जाते भी है कि बिजाई तो पहले एक बारी सिंचाई दे से हंजू करी लेना चाहिए या तौंदी लगुई तो इस बीच सिंचाई दे से 5 ते 7 दिनों के अंतराले बीच दे से ठीक ठाक दे से हंजू करी लेना चाहिए भी तीन दे कोई भी ऋतु तीह ऋतु के अनुसार दे हंजू लगता भी खेतर में सिंचाई दे इसे चाहिए तो जरूर करनी कहीं बरखा वाली मतलब बरसात हो तो दे बरखा होनी तो हाली हंजू सिंचाई दे इसे नहीं करना चाहिए।
0: हाँ उताई दिख अंदर कमरे च मैं बीया दिखी आई ना तो हूं भिंडिया की खेती भी हाँ बैठी बैठी करी ली पर दे है पे बी नीण है ना मेथी ते
1: बी तो ले आए पर एड़ा करें ना भाई पूरे मैं तीस झोले दे देंगी पर उपचारित करी लिया कहीं मिंजो भी दे दें भैया मिंजो बोलिया टाइम अज कला दी आ लै पाई चुक बाल्टू है ना सिमरो कन्नै ए माल में बाहर बन्ने ते आ हवा लगती रहनी कि हूँ चली पाउंदी आई उपरा जो घर जो
0: अच्छा तो
1: घा घू पाए
0: बाल्टू आज
1: तो
0: मैं घर जो ले आना भाई दुध दा ना
1: ओ दो एक ही छड़ी ने ले जा भी दिख गाय दो सूदियां मेरियां
0: हाँ सही तो गला दी पे मेहनत करने आने कुछ घाटा नहीं हुंदा तो चला मैं ले चलती है ना तुहां कोवा पैड़।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 7 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम में आज इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया के रक्षा खरीद कार्यक्रम प्रशासन मंत्री ली जोंग चुल से सोल में मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, उत्पादन और निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार तंत्र को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी काइंड एक्स पहल की क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट UG पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का

0: अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा और उत्पादन भागीदारों तथा उद्योग जगत की सराहना की है। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के शिष्टमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि प्रस्तुति में एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदों के बारे में बताया गया। इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया और समिति के सामने अपनी प्रतिक्रियाएं रखीं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में लू की आशंका व्यक्त की है। अगले चार दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू चल सकती है। असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज बारिश हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्मी भजन।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर, और इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी भजन।

मंगल करनी संकट हरनी कृपा कर दे माँ कृपाली राखुल मन की

0: फलक फिल्म से ये भजन आपने सुना। अगला भजन आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी भजन, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 7:25 हुए हैं, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम रौनका गराइंदियां।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रौनकां गराइंदियां, FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है।
1: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
2: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर AS ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
1: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
2: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।

FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 7:43 हुए हैं। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 16 जून से होगा शुरू। पहली से 15 जून तक ऑनलाइन माध्यम से दर्ज की जा सकती है जानकारी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से देश की एकता व अखंडता को मिल रही मजबूती। मुख्यमंत्री ने गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल को देश भर में छठा स्थान मिलने पर जताई प्रसन्नता। अध्यापकों व कर्मचारियों को दी बधाई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे में विफल रहने का लगाया आरोप। कहा, अभी तक एक भी गारंटी नहीं हुई पूरी। और दवा विक्रेताओं की देशव्यापी हड़ताल का प्रदेश में भी दिखा असर। सोलन सहित अन्य जिलों में दवा दुकानें बंद रहने से मरीज परेशान। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 16 जून से शुरू हो रहा है, जो 15 जुलाई तक चलेगा। जनगणना के सफल कार्यान्वयन को लेकर आज जनगणना कार्य निदेशालय शिमला में एक बैठक हुई, जिसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन, सीबीसी और पत्र सूचना ब्यूरो के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान जनगणना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए रणनीति बनाई गई। जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक दीपशिखा शर्मा ने बताया कि जनगणना 2027 में पहली बार परिवार को स्वगणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा और लोग पहली से 15 जून तक ऑनलाइन माध्यम से वेब पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से जनगणना में सहयोग की अपील की है।
3: हिमाचल प्रदेश में जो जनगणना 2027 उसका प्रथम चरण जो कि मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण है, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर कंडक्ट हो रहा है। और इस बार हमारा जो सेंसस है वो डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए जनगणना में स्वगणना का जो प्रावधान है उसे भी रखा गया है। जो हमारे हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं वो स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी 1 जून से 15 जून के भीतर उसको दर्ज कर सकते हैं। प्लीज आप स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करें। जनगणना की जानकारी जो है वो कॉन्फिडेंशियल है। यदि कोई स्वगणना के विकल्प को भी नहीं चुनता है तो भी जो हमारा प्रगणक है वो हर जगह जाएगा, हर कोने में जाएगा, प्रदेश के हर एक घर को जो है वो कवर किया जाएगा।
2: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की महत्वाकांक्षी पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शुरू किए गए युवा संगम कार्यक्रम के तहत हिमाचल और पुडुचेरी के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान की एक अनूठी पहल चलाई जा रही है। इसी सिलसिले में एनआईटी पुडुचेरी के 48 छात्रों और फैकल्टी समन्वयकों का एक दल केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला पहुंचा है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से देश की एकता व अखंडता को मजबूती मिलेगी और इसके माध्यम से युवाओं को देश के सभी राज्यों की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिल रहा है।
4: मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम रहते हैं वो देश की एकता और अखंडता को उसको मजबूत बनाते हैं। पुडुचेरी से जो छात्र आए हैं एनआईटी के माध्यम से, वो इस कार्यक्रम के दौरान पूरे हिमाचल को जानेंगे, यहाँ की सभ्यता संस्कृति, यहाँ का जो देवत्व है उसको अभी जानेंगे। प्रधानमंत्री जी की ये जो पहल है ये निश्चय ही भारत को मजबूत

0: करने में एक नया मील पत्थर साबित है। विविधता में एकता, ये भारत की खूबसूरती है। उसी के आधार पर भारत हजारों वर्षों से दुनिया में एक अलग तरह से है।
1: इस बीच राज्यपाल ने आज कांगड़ा जिले के राजकीय प्राथमिक स्कूल गुजरेड़ा का दौरा कर बच्चों, अध्यापकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। कविंद्र गुप्ता ने बच्चों को समर्पण व आत्मविश्वास के साथ शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल ने बेहतर कक्षाओं, स्वच्छता सुविधाओं, डिजिटल शिक्षा संसाधनों और ग्रामीण विद्यालयों में अनुकूल शैक्षणिक वातावरण की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल को देश भर में छठा स्थान प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इस रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश 7 अंकों की छलांग लगाकर 13वें से 6ठे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए शिक्षा विभाग के सभी अध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं और सभी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू कर दिया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि सरकार द्वारा अध्यापकों को एक्सपोजर विजिट के लिए विदेश भेजा जा रहा है और उत्कृष्ट विद्यार्थियों को भी विदेश भ्रमण करवाया जा रहा है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने आज मंडी जिले में सराज विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर जिला परिषद चुनाव के भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार पिछले वर्ष आपदा के दौरान सड़कों पर गिरे मलबे को हटाने में भी नाकाम रही है और ग्रामीण रूटों पर चलने वाली बसें अभी भी बंद हैं। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत व नगर परिषदों के चुनाव परिणामों से ये स्पष्ट हो गया है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएगी।
2: ये नगर परिषद नगर पंचायत के चुनाव का संदेश बड़ा साफ और स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। और हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा, कांग्रेस का नाम लेने वाला आदमी नहीं होगा। ये आपको तौर में इस तरह की स्थिति है। सारे कामकाज, यहाँ के विकास कार्य सारे वो तो बंद पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद और भी चीजें ऐसी झूठी गारंटियां दे करके सत्ता में आए, अभी वो गारंटियां धरी की धरी पड़ी। इन सारी बातों का जवाब देने का वक्त आ गया है।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की शिमला इकाई ने आज शिमला में भ्रष्टाचार निवारण को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर सीबीआई के पुलिस अधीक्षक राजेश चहल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों और पत्रकारों को सीबीआई की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के मामले से केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि समाज के सभी लोग प्रभावित होते हैं। राजेश चहल ने भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में आम लोगों की भूमिका को अहम बताया और सभी से रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार के मामलों की सूचना तुरंत विभाग को देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि छोटी रकम के लेन देन पर भी सीबीआई मामला दर्ज करेगी और सीबीआई के पास स्टाफ की कोई कमी नहीं है। राजेश चहल ने लोगों से अपील की कि यदि कोई अधिकारी व कर्मचारी दबाव में डालकर रिश्वत की मांग करे तो तुरंत उसकी शिकायत करें। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आज से 2 दिवसीय शिक्षा व करियर मार्गदर्शन मेला शुरू हुआ। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान विद्यार्थियों व अभिभावकों को उच्च शिक्षा, करियर विकल्पों और विभिन्न व्यावसायिक कोर्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। रोहित ठाकुर ने कहा कि इस तरह के एजुकेशन एक्सपो बच्चों के लिए मददगार साबित होते हैं और उन्हें बेहतर करियर चुनने का मार्गदर्शन मिलता है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने हाल ही में घोषित हुए 10वीं व जमा 2 कक्षा के परिणामों में 85% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले लगभग 150 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। ई फार्मेसी के विरोध में दवा विक्रेताओं के राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान का आज प्रदेश में भी असर देखने को मिला। सोलन जिले की लगभग 1500 दवा दुकानें आज पूरी तरह बंद रही। दवा व्यापारियों ने सरकार से ऑनलाइन दवा की खरीद पर रोक लगाने की मांग की है। सोलन

0: सिप्ला केमिस्ट एसोसिएशन के सह सचिव विपुल शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन दवा खरीद से दवा व्यापारियों का व्यापार खत्म हो रहा है और लोगों को नकली दवाएं ही मिल रही हैं।
1: हमारे इस बंद में सभी प्रकार की दवाई की दुकानें, सभी प्रकार की होलसेल की एजेंसियां सभी आज पूर्ण रूप से बंद है। हमारी स्ट्राइक 19 तारीख रात 12 बजे से 20 तारीख रात 12 बजे तक जारी रहेगी। ई फार्मेसी जो है वो ऑनलाइन दवाइयों का जो व्यापार है उसके विरोध में हमने काफी टाइम से सरकार से हमारी बातचीत चल रही थी, मगर वो कोई अभी तक संज्ञान नहीं निकला। और दूसरा हमारा है जो हमारी स्पूरियस मेडिसिन भी ऑनलाइन फार्मेसी से आती है, नकली दवाएं जो ऑनलाइन में मिलती है उसका भी विरोध हम करते हैं।
0: शिमला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया और बैकवर्ड लिंकेज स्थापित कर अलग अलग राज्यों से मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस मुख्यालय शिमला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने आज शिमला में बताया कि उत्तर प्रदेश और पंजाब से दो मुख्य चिट्टा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ शिमला पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 16 जून से होगा शुरू। पहली से 15 जून तक ऑनलाइन माध्यम से दर्ज की जा सकती है जानकारी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से देश की एकता व अखंडता को मिल रही मजबूती। मुख्यमंत्री ने गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल को देश भर में छठा स्थान मिलने पर जताई प्रसन्नता। अध्यापकों व कर्मचारियों को दी बधाई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे में विफल रहने का लगाया आरोप। कहा, अभी तक एक भी गारंटी नहीं हुई पूरी। और दवा विक्रेताओं की देशव्यापी हड़ताल का प्रदेश में भी दिखा असर। सोलन सहित अन्य जिलों में दवा दुकानें बंद रहने से मरीज परेशान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 7:56 हुए हैं।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

ये सुरीला गीत आधारित था राग रागेशी पर। इसी के साथ ही राग अनुराग कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन।

0: आज के कार्यक्रम में सुनिए शोभा रस्तोगी का लिखा प्रहसन खरीदा हुआ दुख।
1: अम्मा अम्मा जल्दी आओ, दाल जल रही है।
2: अम्मा की बच्ची, तू बर्तन भी नहीं उतार सकती?
3: खाने को चाहिए मन भर, लेकिन काम के नाम पर नहीं लगती है। दाल एकदम लग गई, अब खाना नमक से रोटी।
1: तुम्हें तो कहा था कि खाने पीने की चीजें ना छुआ करो, फिर क्यों डांट रही हो?
2: डांटू नहीं तो क्या पूजा करूं?
3: दुनिया भर का मैल लपेटे रहती हाथों में, इसलिए मना किया था। सरसी से बटलोई तो उतार ही सकती थी, लेकिन तुम लोग तो मेरा खून पीने पर उतारू हो। जैसी तू वैसी मुन्नी, जैसा धीरू वैसा बीरू, इसी से कोई सहारा नहीं।
1: सबका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? जब देखो तब डांटती रहती हो।
4: हो गया सवेरे सवेरे महाभारत शुरू। कभी तो बच्चों से मीठे बोल बोल दिया करो शारदा।
2: हाँ हाँ, सारा दोष मेरा ही तो है, अपने बच्चों के लक्षण नहीं देखते।
4: तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बच्चे मेरे ही हैं, तुम्हारे नहीं। लाओ थाली परसो, दफ्तर को देर हो रही है।
2: दाल जल गई, सब्जी है नहीं, नमक से रोटी खाओ तो दे दूं।
4: रोज कोई ना कोई टोटा ही पड़ा रहता है, गृहस्थी चलाने का जरा भी शऊर नहीं।
2: मांग जांच कर जैसे गृहस्थी चलाती हूँ मैं ही जानती हूँ। मेरी जगह कोई और होती तो भूखा रहना पड़ता।
4: ठीक है देवी जी, सवेरे सवेरे मूड ना खराब करो। चुन्नी, स्कूल नहीं गई तुम?
1: नहीं।
4: क्यों, इम्तिहान सर पर है?
2: तुम्हें आज पता चला? 4 दिन से चुन्नी पढ़ने नहीं जा रही है, कहती है टीचर जी डांटती हैं।
4: मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बात है चुन्नी, क्यों डांटती हैं टीचर जी?
1: हमारे पास यूनिफॉर्म जो नहीं है, टीचर जी कहती हैं जो लड़की यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आएगी उसे दिन भर बेंच पर खड़ा रखेंगे। खड़े खड़े हमारे पैर दुख जाते हैं बाबूजी।
4: पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, बस यूनिफॉर्म चाहिए, दर्जनों किताबें चाहिए, कॉपियां चाहिए, तमाशा बना रखा है। ठीक है, फंड से रुपए निकाल कर प्रबंध कर दूंगा। चुन्नी जाओ अपना पाठ याद करो, इम्तिहान तो देना ही है।
1: जाती हूँ, आज कॉपियां भी ले आना बाबूजी।
4: हैं? लगता है कोई स्कूल नहीं गया। मुन्नी धीरू बीरू गली में खेल रहे हैं, तुमने बच्चों को सर पर चढ़ाकर बिगाड़ रखा है। देख लेना, भीख मांगेंगे भीख।
2: मैंने बिगाड़ रखा है? किसी के पास किताब नहीं, किसी के पास कॉपी नहीं, किसी के पास साफ सुथरे कपड़े नहीं, ये मेरी गलती है? बच्चे दिन भर गली में लफंगों की तरह खेलते रहते हैं, ये मेरा दोष है?
4: नहीं जी, तुम्हारा क्यों होगा, सारा दोष मेरा है। शादी क्या की, जंजाल में फंस गया, जितना कमाओ कम है, जब देखो तब कंगाली। ठीक है मैं जा रहा हूँ दफ्तर।
2: टिफिन ही लेते जाओ।
4: कोई जरूरत नहीं है, कैंटीन में खा लूंगा।
2: ये क्यों नहीं कहते, चटपटा खाने का मन है। ठीक है, पूरी तनख्वाह कैंटीन में ही उड़ाओ, बीवी बच्चे भूखे नंगे रहे तुम्हारी बला से।
4: ऐसा कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कैंटीन में पैसे बहाता हूँ, पूरे पैसे तुम्हारे हाथ में रख देता हूँ, तब तो ये हाल है, अगर उड़ाने लगूं तो जीना दुभर कर दो। लाओ टिफिन दो, अगर घर में हो तो प्याज और नमक रख देना, नहीं तो सूखी रोटी ही खा लूंगा।
5: आपका टिफिन तैयार है।
6: थैंक यू शीला डियर, कुछ साग सब्जी भी रखी है, या नमक और प्याज से ही काम चलाना पड़ेगा।
5: लगता है आप भी मिस्टर और मिसेस वर्मा की बातें सुन रहे थे।
6: अरे भाई बहरे तो है नहीं, पड़ोसी की बातें सुनाई पड़ ही जाती हैं। अब ये बात दूसरी है कि हम उनकी कड़वी बातें सुनते हैं और वो लोग हमारी मीठी मीठी बातें हैं। वर्मा जी जरूर अपनी श्रीमती जी से कहते होंगे कि तुम्हारी जुबान हरी मिर्च है और शीला जी की जुबान बंगाली रसगुल्ला।
5: वर्मा जी ना भी कहते हो लेकिन आपने तो कह ही दिया, तभी तो मैं कहती हूँ कि आप डॉक्टर ऑफ फ्लैटरी यानी डॉक्टर ऑफ चापलूसी हैं।
6: इस डिग्री के लिए शुक्रिया मैडम। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जिंदगी में खुशी की कुंजी है घर वाली की चापलूसी।
5: ये आपके बड़े बूढ़े कह गए होंगे। हमारी बड़ी बूढ़ी कह गई है अगर सुखी जीवन चाहती हो तो चापलूस पतियों से सावधान।
6: ये तो वही बात हुई कि फाटक पर जैसे बोर्ड टंगा हो कुत्तों से सावधान, गए शौहर न हुआ दुम हिलाने वाला।
5: इसका फैसला बाद में होगा, पहले दफ्तर जाकर अपने साहब के सामने दुम हिलाइए, अगर देर हो गई तो बेकार ही झूठे बहाने बनाने पड़ेंगे।
6: तुम्हारा मतलब है जब ओवर टाइम करने में मुझे दफ्तर से घर आने में देर हो जाती है तो मैं तुमसे यहाँ आकर झूठे बहाने बनाता हूँ?
5: हाय, जब तुम नाराज होते हो तो कितने अच्छे लगते हो।
6: और तुम इसलिए मुझे जानबूझकर चिढ़ाती हो।
5: चिढ़ाने में मजा आता है ना।
6: वाह रे तुम्हारा मजा, अब अगर मैं भी तुम्हें।
5: अरे, अरे, क्या करते हो, छोड़ो, अगर पिंकू आ गया तो।
6: पिंकू आज स्कूल नहीं गया क्या?
5: तक गया क्यों नहीं?
6: फिर तुमने?
5: डियर, इसी को प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। पिंकू का नाम ना लेती तो तुमसे छुटकारा कैसे मिलता?
6: ठीक है, इस वक्त तो गच्चा खा ही गया। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं शीला?
5: आपकी बात का कभी बुरा माना है जो आज मानूंगी?
6: पिंकू पर जरा कंट्रोल रखो।
5: क्या हुआ? क्या स्कूल से कोई शिकायत आई है?
6: नहीं नहीं, लेकिन अगर वो वर्मा जी के बच्चों के साथ इसी तरह खेलता रहा तो स्कूल से भी शिकायत आने लगेगी। धीरू वीरू गंदी गंदी गालियां भगती हैं। अगर अपने पिंकू ने भी सीख ली तो
5: क्या करूं, आप ही बताइए। कई बार पिंकू को मना कर चुकी हूं, अब स्कूल से आकर घर में बंद होकर तो बैठा नहीं रह सकता है।
6: कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुनो, तुम मिसेस वर्मा से कहो ना कि उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं।
5: आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वे जानती नहीं। कई बार इशारा कर चुकी हूँ, वो कभी वर्मा जी को दोष देती हैं और कभी अपने भाग्य को कोसती हैं। बाबा रे बाबा, उनके साथ जब उनके बच्चे भी यहाँ आ जाते हैं तो यही डर लगा रहता है कि तोड़फोड़ न करने लगे। मैंने आपको बताया नहीं, एक बार धीरू पिंकू की पेंसिल रबरी चुरा कर ले गया था।
6: तुम साफ क्यों नहीं कह देती हो कि बच्चों के यहाँ न लाया करे?
5: कहना ही पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कोई और मकान देखो, कम से कम पड़ोस तो अच्छा मिले।
6: मकान छोड़कर भागना समस्या का हल नहीं है शीला। अच्छा हो हम अपने पड़ोसी यानी मिस्टर वर्मा के परिवार को ही सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें।
7: क्या हो रहा है शीला बहन?
5: पिंकू के लिए शर्ट सिल रही हूँ। आओ बैठो।
7: तुम तो सिलाई कढ़ाई बुनाई हर काम में होशियार हो, तुम्हें फुर्सत भी रहती है, हमें तो दम लेने का भी वक्त नहीं मिलता।
5: ऐसा क्या काम है तुम्हारी गृहस्थी में शारदा बहन?
7: अब एक हो तो बताऊं, हम तो ये जानते हैं कि सुबह से उठकर रात तक कमर सीधी नहीं कर पाते।
5: घर के काम में बच्चे हाथ नहीं बटाते?
7: नहीं जी, उल्टे काम बढ़ाते हैं। अब बहन, इतनी समाई तो है नहीं कि नौकरानी रखें मेहरी रखें।
5: मेहरी बहरी तो हमारे यहाँ भी नहीं है, झाड़ू बुहारू भी खुद ही करती हूँ। पिंकू स्कूल गया, गुप्ता जी दफ्तर गए, बस खा पी कर बर्तन मांजे, चौका धोया और उसके बाद फुर्सत ही फुर्सत।
7: अपने अपने भाग्य की बात है बहन, हमारे भाग्य में आराम है ही नहीं। अब आज ही किलो नास पीटी चुन्नी की मारे दाल जल गई, वर्मा जी भूखे दफ्तर चले गए। अब हमसे तो सूखी रोटी चबाई नहीं जाती, अचार डाला था सो बच्चों ने गंदे हाथों से छू छू कर बर्बाद कर डाला।
5: कोई बात नहीं, अचार हमारे यहाँ है।
7: इसीलिए तो आई हूँ बहन। तुम भी सोचती होगी कि अच्छी पड़ोसी मिली, रोज कुछ न कुछ मांगने आ जाती है, मगर क्या करें बहन, बिना मांगे काम भी तो नहीं चलता।
5: नहीं नहीं बहन, एक दूसरे के सुख दुख में काम ना आए तो पड़ोसी कैसा। अच्छा बताओ, आम का अचार दूं या नींबू का?
7: तुम्हारा मिर्च का अचार तो कभी भूल ही नहीं सकती। शीला बहन, ऐसा करो थोड़ा थोड़ा तीनों तरह का दे दो।
1: तुम यहाँ आकर बैठ गई अम्मा, वहाँ मुन्नी और धीरू लड़ रहे हैं।
7: लड़ रहे हैं तो अम्मा क्या करें, अम्मा का खून पीकर ही चैन आएगा तुम लोगों को।
5: मैं अभी अचार ला रही हूँ, एक मिनट में।
1: अम्मा ये मशीन कितनी अच्छी है, जरा चलाकर देखें।
5: अरे ये क्या कर रही हो चुन्नी, सुई टूट जाएगी। तुमने भी मना नहीं किया शारदा बहन।
7: हम क्या जाने कि मशीन छूने से टूट जाएगी, बच्ची का मन था सो जरा चला ली। चल चुन्नी,
5: प्लेट खाली करके जरा जल्दी ही भिजवा देना।
7: घबराओ नहीं बहन, शाम को जरूर भेज दूंगी।
5: ये भी अच्छी रही, दो तो आफत ना दो तो आफत, कभी आटा मांगेगी कभी दाल, कभी मसाला मांगेंगी कभी घी। समझती है हमारे यहाँ मुफ्त का आता है, अच्छा पड़ोस मिला है। चलो मशीन तो ठीक है।
1: आंटी जी ये प्लेट
5: ले आई? अरे ये तो टूट गई।
1: अम्मा अचार लेकर गई तो मुन्नी धीरू और वीरू छीना झपटी करने लगे सो अचार भी गिर गया और प्लेट भी टूट गई। माने प्लेट भेजी है, थोड़ा अचार और मंगाया है।
5: कह देना अचार अब नहीं है और ये प्लेट भी ले जाओ।
1: अच्छा आंटी, हम इन टुकड़ों से खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे।
8: मैं बहुत शर्मिंदा हूँ गुप्ता जी, आज बच्चों ने आपकी प्लेट तोड़ डाली।
6: वर्मा जी ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? अरे भाई बच्चे हैं, तोड़ फोड़ तो करते ही रहेंगे, और फिर प्लेट थोड़ी है कोई।
8: ये आपकी शालीनता है गुप्ता जी, सच मानिए मैं तो इन बच्चों से तंग आ गया हूँ।
6: शायद बच्चों का इतना दोष नहीं जितना आप समझते हैं।
8: क्या मतलब?
6: मतलब बाद में बताऊंगा, पहले चाय पीजिए। अरे भाई शीला, चाय में क्या देर है?
2: एकदम तैयार है, लीजिए।
8: अरे आप तो चाय के नाम पर पूरा खाना ले आई भाभी जी, बर्फी, समोसे, दाल मोट, पकौड़ी।
5: ऐसा तो कुछ भी नहीं है वर्मा जी, दफ्तर से आने के बाद नाश्ते में कुछ तो होना ही चाहिए।
8: काश हमारी श्रीमती जी भी ये समझ सके। नाश्ते की कौन कहे, हमें तो कभी कभी चाय भी नसीब नहीं होती।
6: लीजिए चाय पीजिए। वर्मा जी, हम लोग बहुत दिनों से आपसे बात करना चाहते थे। देखिए वैसे तो आपका घर है, आपके बच्चे हैं, लेकिन पड़ोसी होने के नाते
8: कहिए कहिए, निसंकोच कहिए गुप्ता जी।
6: आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं।
8: जानता हूं, वो स्कूल नहीं जाते, गली में खेलते रहते हैं, गालियां बकते हैं, चोरी करते हैं। मुझसे कुछ छुपा नहीं है गुप्ता जी, अब मैं क्या क्या देखूं, शारदा बच्चों पर ध्यान ही नहीं देती।
5: सिर्फ शारदा बहन को दोष देना ठीक नहीं, अकेली माँ क्या क्या कर सकती है। अगर पिंकू के भले बुरे पर ये भी निगाह न रखे तो।
6: मैं भी ये कहने वाला था।
8: ये न समझे गुप्ता जी कि मुझे बच्चों की चिंता नहीं है, मगर समझ में नहीं आता क्या करूं। सुबह होते ही घर में कला शुरू हो जाती है, इसका असर बच्चों पर तो पड़ेगा ही।
1: बाबूजी, अम्मा बुला रही है, धीरू ने मुन्नी की कॉपी फाड़ डाली, मुन्नी धीरू को मार रही है।
5: कोई बात नहीं, जरा अम्मा को यही भेज दो, कहना आंटी जी ने बुलाया है। लो चुन्नी, ये दाल मोट लो, सब लोग मिल बांट कर खाना, लड़ना नहीं।
1: आप बहुत अच्छी आंटी जी, अम्मा हमें कभी कोई अच्छी चीज खाने को नहीं देती।
8: देखा आपने, ज्यादा से ज्यादा कमाई करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी बच्चे छोटी छोटी चीज के लिए नदी दे रहते हैं।
6: आपने कभी सोचा है वर्मा जी, ऐसा क्यों?
8: रोज कोई ना कोई बच्चा बीमार ही रहता है, सारा बजट गड़बड़ा जाता है। शारदा को भी ढंग से गृहस्थी चलाने का शऊर नहीं।
2: मेरी बुराई के अलावा और कुछ आता है तुम्हें? शिकायत तो मुझे होनी चाहिए कि माँ बाप ने ऐसे खूंटे से बांध दिया जहाँ ना खाने पीने का सुख है ना पहनने ओढ़ने का।
5: शारदा बहन, दुख तो आप लोगों ने खुद खरीदा है, हम लोगों के आंगन के बीच बस एक छोटी सी दीवार है, इधर और उधर में जमीन आसमान का फर्क क्यों है जानती हैं?
2: इसमें जानने को क्या है, सब पैसे की माया है, आप लोगों की आमदनी ज्यादा है और हम लोगों की कम।
6: ये आपका भ्रम है भाभी जी, मेरा और वर्मा जी का एक ही ग्रेड है। ये जरूर है कि थोड़ा बहुत ओवरटाइम में भी मिल जाता है।
8: ओवरटाइम तो मैं भी करता हूँ गुप्ता जी, फिर भी पूरा नहीं पड़ता, बताइए मैं क्या करूं।
6: बड़े परिवार में खर्च ज्यादा तो होगा ही, समस्याएं रहेंगी ही। अगर हम लोगों की तरह आपका भी परिवार सीमित होता तो ये नौबत क्यों आती?
8: मैंने तो दो बच्चों के बाद ही सोचा था, मगर इनकी जिद।
2: हाँ हाँ, सारी गलती मेरी तो है ही,
5: जो हुआ सो हुआ, अब तो समझिए।
8: अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे भाभी जी।
6: चलिए, सुबह का भोला शाम को घर आ गया।
5: शारदा बहन, अब तुम बचत करना सीखो, तुम तो पढ़ी लिखी हो, छोटे

0: ट्यूशन करके कुछ ना कुछ कमा भी सकती हो। आखिर सिलाई कढ़ाई बुनाई करके मैं कमाती हूँ या नहीं? एक बार गृहस्थी की गाड़ी ढर्रे पर आ जाए तो
1: गाड़ी लाइन पर आने में देर नहीं लगेगी भाभी जी, अब दोनों पहियों में पक्का मेल जो हो गया है।
2: अभी आपने सुना शोभा रस्तोगी का लिखा प्रहसन खरीदा हुआ दुख। निर्देशिका थी दुर्गा मेहरोत्रा। आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की पहली पेशकश जॉलियल बीट टू फिल्म से, आवाजें सुखविंदर सिंह, मुर्तजा मुस्तफ़ा और कादिर मुस्तफ़ा की, संगीत विशाल खुराना का, बोल जुनैद वासी के।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सचिन अ बिलियन ड्रीम्स। अब सुनिए इस फिल्म में AR अमीन और अंजलि गायकवाड़ को इरशाद कामिल ने बोल लिखे हैं और संगीत तैयार किया है AR रहमान ने।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम के शेष गाने इस छोटे से अंतराल के बाद।

सुलोक कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए सुनते हैं शान और अनुष्का मनचंदा को फिल्म गोलमाल में। कुमार का इस गीत को लिखा है कुमार ने और संगीत तैयार किया है प्रीतम ने।

और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश काबिल फिल्म से। आवाज़ जुबिन नौटियाल की, संगीत राजेश रोशन का, बोल मनोज मुंतशिर के।

एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ एट 9, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है, और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा, और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
5: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
4: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-29 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center and noted that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defense sector.
5: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
4: Mr. Modi stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror financing networks.
5: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
4: Speaking on the occasion, Italian Prime Minister Meloni emphasized the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific and strengthening cooperation across key sectors.
6: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our time.

0: अभी आपने SD बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुना। आवाज किशोर कुमार की थी, फिल्म का नाम था आराधना।
1: तुम्हें याद करते करते
2: छाया गीत
1: लग जागने।
2: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
3: तेरे मेरे सपने अब
2: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ जाएं।
3: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
2: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

खामोशी द म्यूजिकल। अभी आपने इस फिल्म में अलका याग्निक और हरिहरन को सुना। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी जतिन ललित ने। और यह है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाय इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका कार्य उन्हें जीते जी अमर कर देता है। फिल्मों में गिरीश कर्नाड को हमने चरित्र अभिनेता के रूप में देखा, निशांत, स्वामी, मंथन, अपने पराए, मेरी जंग, सुर संगम के तो वे नायक थे, परंतु मूलतः गिरीश सच्चे साहित्यकार और रंगकर्मी थे। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल माथेरान में हुआ था, मगर उनकी माँ कृष्णाबाई और पिता डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड कन्नड़िगा थे, अर्थात कर्नाटक के रहने वाले थे। प्राथमिक शिक्षा मराठी में हुई। आगे जब वो परिवार कर्नाटक के सिरसी गांव में रहने लगा, तब गिरीश नाटक मंडलियों के संपर्क में आए। वहां के लोक नाट्य यक्षगान के तो वे जबरदस्त प्रशंसक थे। गिरीश जब 14 बरस के थे, तब उनका परिवार धारवाड़ में आ बसा, जहां उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की और फिर वे इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड के मैगडलिन शहर में रहकर

वेस्टर्न और टाइगर जिंदा है। फिल्म सुरसंगम जो तेलुगु में शंकराभरणम के नाम से बनी थी, इसके नायक पंडित शिवशंकर शास्त्री की भूमिका में थे गिरीश कर्नाड। वो जानदार शानदार अभिनय कैसे भुलाया जा सकता है।

0: 1980 के दशक में कलाकारों के लिए एक और मार्ग प्रशस्त हुआ, दूरदर्शन का। नई नई श्रृंखलाएं बनने लगी। अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार आर के नारायण की कहानियों पर आधारित हिंदी सीरियल बना मालगुड़ी डेज, जिसका नायक था एक नन्हा सा नटखट बालक स्वामी। इस श्रृंखला में स्वामी के पिता की भूमिका की थी गिरीश कर्नाड ने।
1: पिताजी कॉफी, मुझे आपका कमरा चाहिए।
2: किस लिए?
1: मेरा एक दोस्त आ रहा है।
2: तो तुम्हारा अपना कमरा है, वही ले।
1: राजम को वहाँ कैसे ले जाऊं?
2: ये राजम है कौन, इतना बड़ा आदमी?
1: डीएसपी का बेटा है, बहुत बड़ा आदमी है वो।
2: अच्छा ठीक है, तुम ये कमरा ले सकते हो, लेकिन मेज पर रखी हुई चीजों को हिलाना नहीं।
1: बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं।
0: दूरदर्शन के ही एक कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका टर्निंग पॉइंट के सूत्रधार के रूप में भी हमने गिरीश कर्नाड को देखा है।

1971 से लेकर 1990 तक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नागमंडल, अग्निमट्टू माले और तालेदंड, इन नाटकों को अनुवादित रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार सफलता मिली। भाषा साहित्य की सेवा के लिए गिरीश कर्नाड को 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार, 1992 में पद्मभूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया। 1992 में ही उन्हें कन्नड़ साहित्य परिषद का पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया।

1998 में कालिदास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से गिरीश कर्नाड को सम्मानित किया गया। फिल्मों में उनके योगदान को अन्यान्य पुरस्कारों से प्रतिष्ठा मिली। 1971 में बेस्ट डायरेक्टर फिल्म वंश वृक्ष के लिए, 1977 में बेस्ट फीचर फिल्म इन कन्नड़ा तब्बली यू नीनदे मगने के लिए, फिल्म भूमिका की पटकथा के लिए 1978 में बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार उन्होंने साझा किया श्याम बेनेगल और सत्यदेव दुबे के साथ।

चंदनंदु कलदल्ली। कन्नड़ भाषा में बनी इस फिल्म के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का उन्हें पुरस्कार मिला 1978 में। कन्नड़ भाषा के एक संत कवि कनक पुरंदर पर उन्होंने एक वृत्तचित्र का निर्माण किया था। इसके लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार उन्हें दिया गया 1989 में। साथ ही साथ कर्नाटक राज्य सरकार के कई सम्मान उन्हें मिले तथा कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी गिरीश कर्नाड को मिले साहित्य एवं फिल्मों की।

10 जून 2019 भारतीय रंगमंच और सिनेमा तथा कन्नड़ साहित्य जगत के आकाश से एक चमकता सितारा अस्त हुआ।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था लेखक निर्देशक एवं अभिनेता गिरीश कर्नाड पर।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान जगत।

कार्यक्रम विज्ञान जगत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विज्ञान जगत कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो हम सफर शिवाली। और देखिए श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेरों सारी जानकारियाँ, विज्ञान से जुड़ी बातों के साथ आपको करवाते हैं रूबरू और गीतों के साथ करते हैं आपका मनोरंजन। देखिए, और आज हम बात करेंगे कि हमारे देश के अग्रणीय IIT मंडी के वैज्ञानिकों ने एक नया शोध किया है, जिसमें अब वाटरशेड AI करेगा जलवायु जानकारी और जल संसाधनों का स्टीक आकलन। इसमें IIT मंडी ने लॉन्च किया है क्रांतिकारी एक उपकरण। देखिए, वाटरशेड AI जब जलवायु जानकारी और जल संसाधन आकलन को अधिक सुलभ बनाएगा। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संस्थान के वैज्ञानिकों ने भारतीय जलवायु सूचना अन्वेषक मंच पर वाटरशेड AI नामक एक क्रांतिकारी उपकरण को लॉन्च किया है। देखिए, संस्थान की हिमालयी जलवायु प्रभाव अनुसंधान प्रयोगशाला के द्वारा विकसित ये उपकरण मात्र 3 से 8 मिनटों में ही जल विज्ञान मॉडलिंग और बहुभाषी AI का उपयोग कर भारत के किसी भी जल ग्रहण क्षेत्र का व्यापक जलवायु आकलन तैयार करने में सक्षम है। देखिए, इसमें सबसे खास बात ये है कि ये पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध है। 19 भाषाओं में उच्च स्तरीय जल ग्रहण क्षेत्र रिपोर्ट प्रदान करता है, जिससे शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों के लिए जलवायु विज्ञान, जल संबंधी जानकारियों तक पहुंच काफी आसान हो गई है। इसमें सिविल और पर्यावरण अभियंत्रिक विद्यालय के संकाय सदस्य और हिमालयी जलवायु प्रभाव अनुसंधान प्रयोगशाला के प्रमुख ने बताया है कि इस उपकरण के उद्देश्य के बारे में वाटरशेड AI विशेष तौर पर भू आकृतिक विश्लेषण, मिट्टी और भूमि उपयोग की विशेषताओं, प्रेक्षित और अनुमानित जलवायु आंकड़ों, सूखा गतिशील जल उपज मॉडल का एक रूप में प्रस्तुत करता है। देखिए, वाटरशेड AI अपनी रिपोर्ट 19 भाषाओं में उपलब्ध कराता है, जिनमें हिंदी, तमिल, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मराठी, पंजाबी, ओडिया, उर्दू और मलयालम जैसी भारतीय भाषाएं शामिल हैं। साथ ही अंग्रेजी, अरबी, चीनी, जापानी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन और पुर्तगाली जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं भी इसमें सम्मिलित रहेंगी। वहीं हिमालयी जलवायु प्रभाव अनुसंधान प्रयोगशाला के PhD शोधार्थी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि तमिलनाडु का कोई जल वैज्ञानिक हिमाचल प्रदेश का कोई जिला योजना कर और मणिपुर का कोई विद्यार्थी सभी एक ही वैज्ञानिक प्रश्न किसी जल ग्रहण क्षेत्र के बारे में पूछ सकें, अपनी मातृभाषा में उत्तर प्राप्त कर सकें और वहीं जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया को सरल और सहज करने के लिए ये उपकरण बहुत मददगार होगा। देखिए, ये उपकरण सरकारी एजेंसियां, शोधकर्ताओं, शिक्षकों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों के उपयोग के लिए तैयार किया गया है। वाटरशेड AI भारत के विभिन्न जल ग्रहण क्षेत्रों, विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों के लिए एक विश्वसनीय जलवायु और जल संबंधी जानकारी तक आसानी से ये प्रदान करता है। ये तेज, बहुभाषी और विशेष तकनीकी उपकरणों के बिना सुलभ बनाकर ये मंच जल शक्ति, डिजिटल इंडिया और जलवायु अनुकूलन जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को समर्थन प्रदान करता है। जी, और देखिए, अब आगे हम बात करेंगे कि 5 अक्षरों का ये फॉर्मूला क्लाइमेट बचाने की कुंजी साबित हो सकता है, यानी कि 2P। देखिए, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा तो आज हर जगह होती है, लेकिन कार्रवाई अक्सर प्रतीकात्मक कदमों तक ही रह जाती है। ये प्रयास समस्या का केवल छोटा हिस्सा छूते हैं, जबकि असली कारण हमारा रोजमर्रा का आधुनिक जीवन है। हम कैसे ट्रेवल करते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या खाते हैं, कितनी ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं, ये सब कदम जाने अनजाने हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और जलवायु परिवर्तन में योगदान देते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम हर मिनट पर्यावरण को खराब करने का काम करते हैं। मनुष्य चाहते हैं कि हमारे द्वारा फैलाई गई सारी गंदगी को साफ करने का काम पेड़ों को करना चाहिए। बेचारे पेड़ हमारे लिए भला कितना पर्यावरण बचा सकते हैं।
कई लोग कहते हैं कि यदि पेड़ लगाना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, सोलर पैनल लगाने से भी पर्यावरण खराब होने से नहीं बच सकता, तो हमें क्या करना चाहिए? इसीलिए हमने सरल और याद रखने लायक 360 डिग्री को कवर करने वाला एक फॉर्मूला बनाया है। इसे हम टूपी कहते हैं। समझिए कि टूपी एक करैक्टर है जो हमें दैनिक जीवन में याद दिलाता है कि पर्यावरण को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। टूपी का फुल फॉर्म है टी, यानी कि ट्रेवल लेस, यानी कि कम यात्रा। यू का यूज, यानी कि आइटम्स वाइजली, यानी कि सामानों का समझदारी से उपयोग करना। पी यानी कि परचेज, यानी कि सावधानी से खरीदारी। ई यानी कि ईट केयरफुली, यानी कि सजग होकर भोजन। और ई यानी कि एलिमिनेट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट, बिजली की बर्बादी को खत्म करना। ये पांच क्षेत्र हमारे जीवन के लगभग पूरे कार्बन फुटप्रिंट को कवर करते हैं। इनमें से हर क्षेत्र से ग्लोबल लेवल पर लगभग 20-25% कार्बन उत्सर्जन होता है। यानी अगर हम इन पांचों में से सुधार करें तो अपने दैनिक जीवन में काफी हद तक पर्यावरणीय प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। सबसे पहले टी की बात करें तो ये परिवहन वैश्विक उत्सर्जन का बड़ा हिस्सा है। हर अनावश्यक यात्रा ईंधन जलाती है और कार्बन बढ़ाती है। इस बार गर्मी की छुट्टी में लंबी दूरी की यात्रा ना करें। 4-5 लोगों का परिवार यदि लंबी दूरी की यात्रा छुट्टी मनाने के लिए करता है तो लगभग 2-3 पेड़ों को काटने के बराबर कार्बन उत्सर्जन करता है। इसकी गणना ऐसी लाखों यात्राओं के हिसाब से कर लीजिए। और हाँ, छोटी या एक आध किलोमीटर की दूरी के लिए या तो पैदल ही चलें या साइकिल का उपयोग करें। देखिए, दूसरा है यू, यानी कि सिंगल यूज आइटम का उपयोग ना करें। हम चीजें जल्दी बदलते हैं। कपड़े, गैजेट्स, फर्नीचर, इनके निर्माण में ऊर्जा, पानी और संसाधन लगते हैं और हर उत्पाद का अपना कार्बन होता है। अगर हम वस्तुओं का जीवन काल बढ़ाएं तो मरम्मत करके उन्हें पुनः उपयोग कर सकते हैं और व्यापक प्रभाव वाले इस क्षेत्र में कमी ला सकते हैं। तीसरा है पी, जरूरत और इच्छा में फर्क करना। आज सबसे बड़ा जलवायु कदम है। हर नई खरीद उत्पादन, पैकेजिंग और परिवहन की मांग पैदा करती है। जितना हो सके नई खरीदारी से टले 1-2 या 6 महीने तक आगे बढ़ा दें। चौथा है ई, यानी कि आधुनिक मनुष्य का खाना भी खतरनाक हो गया है। केवल हमारे भोजन के कारण विश्व का लगभग 25% कार्बन उत्सर्जन होता है। स्थानीय या मौसमी भोजन ही करें। फ्रिज के सामान का कम से कम उपयोग करें। और पांचवा भी ई, यानी कि बिजली उत्पादन, खासकर कोयले से कार्बन उत्सर्जन का बड़ा स्रोत है। अनावश्यक लाइट और उपकरण बंद करना, एसी की टेम्परेचर सेटिंग 26 डिग्री पर रखना, एनर्जी एफिशिएंट 5-स्टार उपकरण ही अपनाना, चाहे वो थोड़े महंगे क्यों ना हो। ये उसके उपाय हैं, समाधान रोजमर्रा के जीवन में ही है। तो देखिए, अगर हम अपने दैनिक जीवन में टूपी का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने जलवायु परिवर्तन को बदल सकते हैं। देखिए, आगे हम आपको और जानकारियां देंगे, लेकिन यहां पर हो जाए एक म्यूजिकल ब्रेक।

इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम विज्ञान जगत में। और देखिए, एक और नई जानकारी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए, भारत और नॉर्वे के बीच विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में 5 बड़े समझौते हुए हैं। इसमें स्वच्छ ऊर्जा, हरित बदलाव, समुद्री तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। भारत और नॉर्वे ने विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में 5 बड़े रणनीतिक समझौते किए हैं। और इन समझौतों का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच स्वच्छ ऊर्जा, अपतटीय पवन ऊर्जा, समुद्री तकनीक और विकास और शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और वैज्ञानिक और वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के नॉर्वे के प्रमुख संस्थानों के साथ इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। CSIR के महानिदेशक और DSIR के सचिव ने नॉर्वे के विभिन्न अनुसंधान, शैक्षणिक और औद्योगिक संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। इन समझौतों के जरिए दोनों देश अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास में द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करेंगे। साथ ही संस्थागत साझेदारी, स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे और सतत विकास पहलों को प्रोत्साहित करेंगे। DSIR और CSIR नॉर्वे की अनुसंधान परिषद के बीच हुए समझौते का उद्देश्य अनुसंधान, तकनीकी विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। इसमें दोनों देश मिलकर संयुक्त कार्यशालाएं, साझा शोध परियोजनाएं और वैज्ञानिकों के आदान प्रदान कार्यक्रम चलाएंगे। इनका मुख्य फोकस जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, महासागर और स्वास्थ्य सेवा पर होगा। भूविज्ञान के क्षेत्र में CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान ने 5 वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसका मकसद भारत के बड़े बुनियादी ढांचा, इसमें परियोजनाओं जैसे कि टनल, हाईवे, बांध आदि के लिए भूविज्ञान पर आधारित स्मार्ट समाधान खोजना है। पवन और समुद्री ऊर्जा तकनीकी को मिलेगी मजबूती। महासागर और अपतटीय पवन ऊर्जा पर हुए विशेष समझौते का उद्देश्य भारत में पवन और समुद्री ऊर्जा की तकनीक को मजबूत करना है, ताकि ऊर्जा की लागत को कम किया जा सके। इसमें भारत के मुख्य संस्थान जैसे CSIR, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान शामिल हैं। ये नॉर्वे के FME, नॉर्थ विंड और सिंथपे ओशन के साथ मिलकर फ्लोटिंग, तैरते हुए विंड टर्बाइन और स्थिरता मानकों पर रिसर्च करेंगे। प्रौद्योगिकी और नवाचार में भी सहयोग मिलेगा। इसके अतिरिक्त CSIR वैज्ञानिक नवोमेशी अनुसंधान एकेडमी और नॉर्वेजियन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने हरित बदलाव के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग शीर्षक से एक संयुक्त आशय घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत भारतीय और नॉर्वेजियन छात्रों फैकल्टी को एक दूसरे के देश में पढ़ने, पढ़ाने और रिसर्च करने का मौका मिलेगा। मंत्रालय ने बताया है कि घोषणा का उद्देश्य सतत विकास, चक्रीय अर्थव्यवस्था, महासागर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, नागरिक और अवसंरचना अभियांत्रिक प्रौद्योगिकों पर ध्यान केंद्रित करना है। देखिए, स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री तकनीक का मेल जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये न केवल पर्यावरण को संरक्षित करना है, बल्कि हमारे आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और नए रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। स्वच्छ ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नवीकरणीय स्रोतों जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से उत्पन्न होती है और उपयोग के दौरान शून्य या नगण्य ग्रीनहाउस गैस को उत्सर्जन करती है। ये जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला, तेल पर हमारी निर्भरता को कम करके जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को धीमा करती है। हरित हाइड्रोजन मिशन भारत की राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जैसे पहले स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिसका लक्ष्य 2030 तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। समुद्री क्षेत्र वैश्विक व्यापार का लगभग 95% संभालता है, लेकिन ये भारी मात्रा में प्रदूषण भी करता है। समुद्री तकनीकों को उन्नत और हरित बनाकर इस प्रभाव को कम किया जा रहा है।
जहाजों को कार्बन गहन ईंधन से हटाकर हरित ईंधन जैसे कि ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल की ओर स्थानांतरित किया जा रहा है। बंदरगाहों पर बिजली के उपयोग और सौर पवन ऊर्जा के एकीकरण से कार्बन फुटप्रिंट को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और महासागरीय तरंगों जैसे की तकनीकों का उपयोग करके जहाजों और तटीय क्षेत्रों के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उन्नत प्रयास किए जा रहे हैं। समुद्री परिवहन के डीकार्बोनाइजेशन के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा बदलाव बहुत आवश्यक है। बड़े बंदरगाहों को भविष्य में हरित ईंधन के उत्पादन, भंडारण और बकरिंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत भारत अपने तटीय क्षेत्रों में समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करने और हरित भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री तकनीक का समन्वय भारत जैसे देशों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता और जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति में मील का पत्थर साबित हो रहा है। देखिए आगे हम आपको और जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ पर हो जाए एक म्यूजिकल ब्रेक।

इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम विज्ञान जगत में। और देखिए, हम बात कर रहे हैं कि स्वच्छ ऊर्जा क्या है। देखिए, स्वच्छ ऊर्जा शब्द उन ऊर्जा स्रोतों को संदर्भित करता है जो उत्पादन के दौरान ग्रीन हाउस गैसों या अन्य प्रदूषकों का उत्सर्जन नहीं करते। इसके विपरीत हरित ऊर्जा पूरी तरह से प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है। हालांकि स्वच्छ ऊर्जा में नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय दोनों स्रोत शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, परमाणु ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा माना जाता है क्योंकि बिजली उत्पादन के दौरान ये प्रदूषणकारी उत्सर्जन नहीं करती है। हालांकि ये नवीकरणीय नहीं है क्योंकि ये यूरेनियम पर निर्भर करती है जो कि एक सीमित संसाधन है। नवीकरणीय ऊर्जा उन स्रोतों से प्राप्त होती है जो निरंतर पुनः पूर्ति योग्य होते हैं, जैसे सूर्य या पवन। स्वच्छ ऊर्जा और हरित ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के बीच अगर अंतर की बात करें तो कोयला और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन को स्वच्छ ऊर्जा स्रोत नहीं माना जाता क्योंकि दहन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैसों की बड़ी मात्रा उत्सर्जित होती है। इसीलिए स्वच्छ ऊर्जा का सर्वोत्तम मिश्रण वह है जो सौर और पवन ऊर्जा जैसे हरित और नवीकरणीय स्रोतों को एकत्रित करता है, जिससे अधिक टिकाऊ ऊर्जा भविष्य सुनिश्चित होता है। स्वच्छ ऊर्जा याद रखने का एक अच्छा तरीका है कि किस प्रकार की ऊर्जा को स्वच्छ माना जाता है। स्वच्छ हवा के बारे में सोचना, स्वच्छ ऊर्जा उन स्रोतों से आती है जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड सहित प्रदूषक नहीं छोड़ते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा इस प्रकार की ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो वास्तव में अनंत है और जो थोड़े समय में ही पुनः पूर्ति हो जाती है। हरित ऊर्जा कहलाने के लिए ये पूरी तरह से प्राकृतिक स्रोत से आनी चाहिए, जैसे कि हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, और इसका पर्यावरण पर निरंतर प्रभाव ना के बराबर या नगण्य होता है। तो ये तो था हमारा आज का विज्ञान जगत कार्यक्रम। अब इन्हीं जानकारियों के साथ अपनी रेडियो हमसफर शिवाली को दे इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम।

चांदनी रातें कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस प्यार भरे सफर की आइए करते हैं शुरुआत।

तेरा साथ ऐसा सुकून देता है जैसे लंबे सफ़र के बाद कोई अपना घर मिल जाए। तेरा साथ मिले तो हर पल खास लगता है, वरना ये दुनिया भी कितनी उदास लगती है।

कुछ एहसास शब्दों में नहीं ढलते, बस किसी की मुस्कान में बयां हो जाते हैं। कभी नज़रों से, कभी बातों से, कुछ रिश्ते धीरे धीरे दिल में उतर जाते हैं।

इसी के साथ चांदनी रातें कार्यक्रम का आज का ये सफर अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।